0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के अश्वनी मास की पहली तिथि के तदनुसार 23 सितंबर सन 2026 इस समय सुबह के 5:53 और 44 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आपकी वाणी आकाशवाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 7:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग।

8 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 8:02 पर जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। ठीक 9 बजे आप एक बार फिर से सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

9:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। ठीक 10 बजे का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। 10:02 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक। ग्यारह बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 11:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। बारह बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 12:02 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक। ये थी जानकारी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 5:59 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने के बजाय मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। भारत ने अफगानिस्तान के कुन्नार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना भी की। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। कहा, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। औषधि नियंत्रण विभाग ने दिल्ली के भागीरथ पैलेस स्थित एक फर्म से करीब 2 लाख रुपए मूल्य की 481 यूनिट नकली रेबीज वैक्सीन जब्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक में सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्वी जापान के कांटो क्षेत्र में आए बड़े तूफान से हुई भारी वर्षा के कारण बाढ़ के बाद मंगलवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई, जबकि 6 अन्य अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। और रोजाना सुबह तो आती है, लेकिन हम लेकर आते हैं काफी कुछ आपके लिए। बिकॉज हरकत से लेकर कसरत तक का यह सफर है, और सफर खूबसूरत है। तो रोजाना तैयार हो जाइए आप भी एक बार फिर से।

जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा, और खींच धनुष की डोर और साध निशाना मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, निशाना बड़ा कैंट है।

कहा जाता है कि राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई। कितनी खूबसूरत मुलाकात है, सुप्रभात। जी हाँ, आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे गौतम आपकी खिदमत में हाजिर है और एक कहानी सुनाना चाहूंगा। हमने राह की बात की है, हमने सफर की बात की है, हमने रास्ते की बात की, लेकिन बात कई बार ऐसी हो जाती है कि काफी मुश्किलें जो है आपको फेस करनी पड़ती है लाइफ में। एक लड़का हर सुबह दौड़ने जाता था, वो तेज नहीं था, हमसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि भागोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे। एक दिन किसी ने पूछा कि जब तुम्हें पता है कि तुम जीतने वाले नहीं हो, फिर रोज रोज ऐसी शिरकत क्यों करते हो। कई बार ऐसा लगता है ना, काफी सारे लोग डाउट करते हैं आप पे, उन्हें रोज दे दिया जाए, गुलाब दे दिया जाए। वो मुस्कुराया और बोला, मैं दूसरों को हराने के लिए नहीं दौड़ता, मैं उस इंसान को हराने के लिए दौड़ता हूं जो कल हार मानने वाला था। शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है ना। हम अक्सर अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की कामयाबी से करते हैं कि दूसरे की थाली में लड्डू कितना बड़ा है, हमें उनकी मंजिल दिखाई देती है, लेकिन वहां तक पहुंचने का उनका संघर्ष। इसीलिए अगर आपकी रफ्तार थोड़ी धीमी है तो परेशान मत, धीरे चलना भी आगे बढ़ना ही है। और बस इतना याद रखिए कि मंजिल मिले या ना मिले, सफर जारी रहे, गिरकर भी उठने का हुनर जारी रख, और आज जो मुश्किल है कल वही कहानी होगी। दिल से दिल तक।

मिलकर जोर लगाना, जोर नहीं शोर जरूर होता है। अक्सर दिल में जब आप कुछ सीखना चाहें तो देखिए, अब नेचर से काफी कुछ हम सीख सकते हैं। सूरज सिखाता है हर रात के बाद उगना जरूरी है, नदी सिखाती है रास्ते बदल सकते हैं मंजिल नहीं, है ना। पेड़ सिखाते हैं ऊंचा उठो और जड़ों को मत भूलो। फूल सिखाते हैं टूटकर भी खुशबू छोड़ी नहीं जा सकती। और जिंदगी कहती है सीखने के लिए किताब नहीं नजर चाहिए, क्योंकि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं और दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। डायरेक्शन आपकी लाइफ में भी काफी है।

और फिर एक मौका ऐसा भी आता है जब आपको खुद को चुनना पड़ता है, और फिर मैंने चुना रास्ता अकेले चलने का। परंतु

मेरे साथ चले, यादें वादे पछतावे और बीती बातें, कुछ अधूरे प्रश्न भी थे जो अब तक उत्तर मांगते हैं, कुछ चेहरे थे जो स्मृति में आज भी धीमे धीमे सांस लेते हैं। अकेला कहां था, मेरे भीतर था पूरा एक बीता हुआ समय जो मेरे साथ चल रहा था। और समय किसी के लिए रुकता नहीं है, चलता ही जाता है जनाब, जो करे अपेक्षा इसकी रोता और पछताता है। समय हो गया 6:23 और स्टूडियो में है आपका होस्ट, आपका दोस्त।

कि नाज करेगी मेरी किस्मत मुझ पर एक दिन, कि था एक घायल परिंदा जो संघर्ष की जमीन को रेंगते रेंगते पार कर गया। कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है, दिखला दे तो जिंदा है, और जिंदा है तो प्याला पूरा भरे। जी हाँ, भाग मिल्खा भाग का एक डायलॉग है कि आसमान में ऊंचे उड़ने वाले जो परिंदे होते हैं वो पेड़ों से दिल नहीं लगाते, लेकिन ये दिल है, इसका क्या करोगे जनाब, जहां जहां जाओगे वहीं

रास्ते कठिन हो तो कदम बढ़ाते रहो, अंधेरा कितना भी हो दीप जलाते रहो, मंजिल खुद करीब आ जाएगी एक दिन, बस अपने हौसले को जगाते रहो। जिस तरीके से आप जाग जाते हैं और हम तो यही कहेंगे कि यूं ही चला चल रहा ही, कितनी प्यारी है ये दुनिया, आंखें खोल के

लाइफ में चलते रहना है, हड़ताल नहीं होनी चाहिए चलने में ना। बिकॉज जो अगली स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कुछ ऐसी है। दरअसल हुआ क्या, एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए। लेकिन एक किसान, एक व्यक्ति ही काफी होता है बदलाव के लिए। अपने नियम अनुसार हल चला रहा था, कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों, आखिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसीलिए चला रहा हूं कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊं। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाए, तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था वो हाथ मलते रह गए। तो दोस्तों, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते, मंजिल भी उनका साथ नहीं छोड़ती, और एकदम तितली की तरह उड़ के आ जाती है मंजिल।

0: जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

वंस अगेन आपका होस्ट आपका दोस्त आजय गौतम खिदमत में हाजिर है, लेकिन दिखाने के लिए एक नए शो के साथ एक नई दिशा आ चुकी है स्टूडियो में निशा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर, यानी मुझे जाना पड़ेगा। मुझे बताया जब भी मैं जाता हूँ आप कहते हैं तो जा रहे हो।

आकाशवाणी रेनबो पर अब समय है मुख्य समाचारों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यमी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने के बजाय मजबूत, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार अपने कर्मचारियों को जीवन रक्षक कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरार अपराधी को गिरफ्तार किया है जो मादक पदार्थों को एक पुराने मामले में वांछित था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के लंका पहाड़ी गांव के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की ओर से जमीन के अंदर छुपाकर रखे गए हथियार और गोला बारूद बरामद किया। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। भारत ने अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार पर पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान के हमले की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूर्वी जापान के कोंटो क्षेत्र में आए बड़े तूफान से हुई मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन और बाढ़ के बाद मंगलवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जबकि 6 अन्य अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी शेषबिना देवी से भारत को और अधिक पदक मिलने की उम्मीद। ये थी एफएम रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी पर फिलहाल ये वाणी है मेरी, मेरा नाम है निशा और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए आपसे बस यही कहूंगी कि लाइफ में हर रोज हमसे कुछ ना कुछ छोटी मोटी सी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन और बड़ी आसानी से हम उन गलतियों का को थोप देते हैं अपने बचपन पर। मतलब कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत से लोगों का रहा ही होता है, लेकिन आप ये बात सोचिए कि दो लोग अगर हमारे सामने हैं, दोनों ही सेम काइंड ऑफ एनवायरमेंट में बचपन से लेकर बड़े हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल दो अलग अलग इंसान की तरह हो सकते हैं ना। एक तो वो हर्ट जो उसको बचपन से मिला है वो स्प्रेड करना चूज करता है कि अपने लाइफ में वो उसी जहर को दूसरों तक फैलाएगा, और दूसरा इंसान उस काइंडनेस को स्प्रेड करना चूज कर सकता है जो कि उसको जीवन में कभी मिली ही नहीं। अब यहां पर बस मैं यही कहना चाह रही हूं कि हो सकता है आपका पास्ट जो है वो आपको शेप करता हो, आपको वो बनाता हो जो आप है, लेकिन ये आपको कंट्रोल नहीं करता। हर दिन आपको कैसा इंसान बनना है ये हम चूज करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम थ्रू योर वर्ड्स योर एक्शंस और जिस तरह से हम दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं ना, यही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, यही हमें चूज करने का मौका देता है। तो चाइल्डहुड हो सकता है कि उसने आपकी लाइफ का पहला चैप्टर लिखा हो, लेकिन रेस्ट ऑफ द पेजेस आर स्टिल योर्स टू राइट। सोचिए और सुनते रहिए।

आज का ये दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज है 23 सितंबर, बुधवार का शुभ दिन है। सूर्य देवता जो है 6:50 से आकाश में छा गए थे और अब हल्की हल्की सी लाल रोशनी बाहर बिखेर रहे हैं और आप 102.6 पर सुन रहे हैं FM रेनबो। वेरी गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं निशा रहने वाली हूँ आपके साथ। फिलहाल बाहर का तापमान 27 बना हुआ है जो कि मैक्सिमम 35 तक टच करने वाला है। लोगों को थोड़ी थोड़ी सी अब गर्मी फील होने लगी है फिर से कि भाई लग रहा है कि ठंडा मौसम हुआ था जब लगातार दिल्ली में बारिश हुई, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है, आने वाले समय में भी नहीं होने वाली है। तो बस अब आप फिलहाल जैसा भी वेदर है उसे एंजॉय करते रहिए। आज दिल्ली NCR से जुड़ी बातें और साथ ही साथ हमारे हिस्ट्री में 23 तारीख का सितंबर जो है वो क्या कहता है ये जानेंगे आफ्टर दिस सॉन्ग। कीप लिसनिंग, मैं निशा आपके साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 मैं निशा हूं आपके साथ में। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। कल 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए और उस सेरेमनी को जब मैं देख रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सारे स्टार्स वहां पर मौजूद थे, इतनी टैलेंटेड पर्सनालिटी, उनके चेहरे की खुशी, उनका अपने ऊपर गर्व करना, हर चीज देखकर अच्छा लगता है। लेकिन इस अवार्ड सेरेमनी को देखते हुए स्टेज पर मैंने एक चीज और नोटिस की कि वहां पर एक सज्जन खड़े थे जो अपने हाथों से एक भाषा कर रहे थे जिसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। और आज का 23 सितंबर का दिन इसी भाषा को समर्पित है। वैसे कैलेंडर पर तो एक बड़ा नॉर्मल सा दिन लगता है, लेकिन आज का दिन बहुत खास है क्योंकि पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। सोचिए, हम हर रोज कितनी बातें करते हैं ना, कितना बोलते हैं, हमारी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सुन या फिर बोल नहीं सकते उनकी दुनिया कैसी होती है? क्या वो बिल्कुल खामोश रहते हैं या बिल्कुल भी नहीं खामोश नहीं रहते हैं? उनकी भी अपनी एक खूबसूरत भाषा है जिसे सांकेतिक भाषा या फिर साइन लैंग्वेज कहा जाता है, जो बिना बोले ही दिल की हर बात कह जाती है। तो आज का तो ये दिन ही समर्पित है इसी खूबसूरत भाषा को और हमारे उन दोस्तों को जो हाथों और चेहरों के हाव भाव से दुनिया में खुशियों के रंग भरते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर 2018 को पहली बार इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाने की शुरुआत की थी और इसके पीछे एक बड़ा कारण था क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ जो है वो आज ही के दिन से 1951 में उसकी शुरुआत हुई थी। आज के समय की अगर बात करें तो पूरे दुनिया भर में 72 मिलियन

आई थिंक लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं वो बधिर हैं और जिनको ये जो सांकेतिक भाषा है वो सपोर्ट करती है। अब ये कोई ऐसी वैसी आम भाषा नहीं है दोस्तों, इसका अपना एक पूरा व्याकरण है, इसके अपने नियम है। बस फर्क इतना है कि इसे कागज पर लिखा नहीं जाता, इसे हवा में उंगलियों और मुस्कान के साथ में बुना जाता है। तो क्यों नहीं आज हम भी अपना एक छोटा सा कदम उठाएं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी सेल्फीज और फोटोज पोस्ट करने में मजा आता है ना, तो आज आप भी ऐसा कीजिए कि इस साइन लैंग्वेज में ये सीखिए कि नमस्ते, थैंक यू या आई लव यू कैसे कहते हैं। देखना, जब आप इन लोगों को या सभी को इस तरह से एक अलग अंदाज में विश करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान होगी ना, वो आपका दिन बना देगी। आकाशवाणी रेनबो, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

शबाना की बातचीत तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हुए जिन्होंने हमारी जिंदगी में अपनी बातों से, अपने गानों से, अपने गीतों से, अपने बोलों से रंग भरने का बहुत ही सुंदर काम किया है। और एक ऐसी ही खास पर्सनालिटी की आज बर्थ एनिवर्सरी है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पंक्तियां सुनी है ना? एक समय में लोगों की रगों में खून दौड़ा देने के लिए इस पंक्ति को याद किया जाता था। और आज 23 सितंबर है, आज उन दिनकर जी का जन्मदिन है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिसने शब्दों की आग से गुलाम भारत की चेतना को झकझोर दिया था एक समय पर। भारतीय साहित्य के एक ऐसे सूर्य हैं ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की आज जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, शत शत नमन कर रहे हैं। साल 1908 में बिहार के बेगूसराय के एक गाँव में इनका जन्म हुआ था। आगे चलकर ये बहुत वीर रस को एक नया आसमान इन्होंने दिया, ऐसा कह सकते हैं। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बदलते हुए भारत की एक बुलंद आवाज थे। जहां एक तरफ उनकी लिखी रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र ने क्रांति और न्याय का बिगुल बजा दिया था, वहीं दूसरी तरफ उर्वशी जैसी कालजयी रचनाओं ने उन्हें देश के सबसे बड़े ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करवाया। दिनकर जी की कलम में वो ताकत थी जो सत्ता के गलियारों को हिला देती थी। आज भी जब देश में अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है ना, तो उनकी कविताएं हमारा बड़ा संबल बनती हैं। आज इस बेहद खास मौके पर उनकी सबसे बड़ी, सबसे प्रसिद्ध जो रश्मि रथी है, उसके कुछ हिस्से मैं लेकर आई हूं, जिसमें भगवान कृष्ण जो है दुर्योधन को चेतावनी दे रहे थे कि देखो पांडव वापस आ गए हैं हस्तिनापुर, अब उन्हें उनका हिस्सा दे दें। लेकिन दुर्योधन उनकी बात नहीं मानता। तब हरि क्या कहते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तुले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इन पंक्तियों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। अब बस यही जादू था राष्ट्रकवि दिनकर जी का। उनके विचार, उनकी कविताएं आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने की सदियों पहले हुआ करते थे। तो हम बस इसी तरह से उन्हें याद करते रहें, अपने हृदय में रखें और अपनी विरासत पर लगातार गर्व करते रहें। वीर रस से हमारे हृदय को भरने वाले राष्ट्रकवि दिनकर जी।

अपने देश को इसी तरह अपनी जान से प्यारा समझने वाले, देश का स्वाभिमान, साहस और वीरता का प्रतीक, आज 1857 के महासंग्राम के महानायक राव तुलाराम मार की पुण्यतिथि है और आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के अहिरवाल में इनका जन्म हुआ था। जब 1857 में देश की आजादी का पहला बिगुल बजा तो राव तुलाराम ने अपने छोटे से राज्य से निकलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया था। नसीबपुर का वो ऐतिहासिक मैदान ना आज भी इस बात का गवाह है, जहां राव तुला की सेना ने मुट्ठी भर संसाधनों के बावजूद फिरंगियों के छक्के छुड़ा दिए थे। सोचिए, एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजों की फौज थी और दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने का एक जज्बा अपने दिल में लिए राव तुलाराम उनके सामने थे। उन्होंने न केवल रेवाड़ी बल्कि बोहरा, शाहजहांपुर जैसी जगहों से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था और जब नसीबपुर की जंग में संसाधनों की कमी होने लगी तो उन्होंने हार नहीं मानी। वो मदद जुटाने के लिए, भारत को आजाद कराने की रणनीति के लिए ईरान और अफगानिस्तान तक का सफर उन्होंने तय किया। काबुल की धरती पर रहते हुए देश की माटी को आजाद देखने का सपना सीने में लिए 23 सितंबर 1863 को इस महान सपूत ने अपनी अंतिम सांस ली थी। लेकिन उनकी शहादत ने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में आजादी की जो अलख जगाई ना, आई थिंक उसी का नतीजा था कि आखिरकार भारत माँ के पैरों से गुलामी की बेड़ियां जो थी वो कट गई थी। शहीद राव तुलाराम की वीरता, त्याग और राष्ट्रभक्ति को नमन करने के लिए आज 23 दिसंबर के दिन ही हांसी में एक बड़ा ही भव्य शहीदी दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा और इस समारोह में एक राव तुलाराम चौक का उद्घाटन किया जा रहा है। विशाल तिरंगा भी वहां पर फहराया जाएगा और साथ ही राव तुलाराम की विशाल प्रतिमा का अनावरण भी वहां पर किया जाएगा और यही तरीका है हमारे इस वीर सपूत को सेलिब्रेट करने का। आज इनकी पुण्यतिथि पर हम इन्हें नमन करते हैं।

देश दुनिया और देशभक्तों की बात कर लेने के बाद अब हम हमारे खिलाड़ियों को भी याद कर लेते हैं एंड लेट्स सी हाउ इंडिया इज डूइंग एट एशियन गेम्स 2026। वैसे एशियन गेम्स में भारत के लिए तीसरा दिन यानी कि 22 सितंबर का जो दिन था वो कई बड़ी कामयाबी लेकर आया। अब तक आप जान ही गए हैं कि हमारी महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता है, जबकि पुरुष बैडमिंटन टीम ने मेजबान जापान को 3-0 से हराकर ये मेडल जो है वो पक्का कर लिया। और शेषी बिना देवी ने भी वुशु में लगातार तीसरा एशियन गेम पदक जीतकर ये मतलब अपना सुनिश्चित कर लिया है। तो अब अगर टोटल पदकों की बात करें तो भारत के पास 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज सहित कुल 7 पदक हो चुके हैं। आज 23 सितंबर का दिन है तो आज के जो मुख्य कार्यक्रम रहने वाले हैं उसमें वेटलिफ्टिंग मीराबाई चानू 49 किलोग्राम कैटेगरी में फाइनल में उतरेंगी, शूटिंग में मनु भाकर मेडल के लिए निशाना साधेंगी और साथ ही बैडमिंटन में हमारी पुरुष टीम जो है वो सेमीफाइनल्स में चीन से भिड़ेगी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6। गुड मॉर्निंग, मैं निशा आपके साथ।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अच्छा। कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

हाँ जी हाँ जी, रॉक एंड रोल हो या फिर बातें हो, ये सब सिलसिला यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाला है। गौतम आ गए हैं स्टूडियो में और आपके लिए अगला बेहतरीन चंक लेकर आएंगे जीएमडी एनसीआर का। आप बने रहिए 102.6 एफएम रेनबो पर। मैं आपको मिलती हूँ ठीक 9 बजे दिल की तरह गाने रहे पुराने में। कीप लिसनिंग।

नमस्कार। अब समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विश्व के विकासशील, अल्प विकसित, अपविकसित और गरीब देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने के बजाय मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में बेहतर कल के लिए आयुर्वेद थीम पर 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत और विश्व भर में आयुर्वेद संस्थान और इससे जुड़े समारोह में भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने ईरानी चौकियों से ऊर्जा को दूर करने की आवश्यकताओं पर भी बल दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर रही है और दोनों देश दिसंबर के मध्य में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार पर पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के हमले की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशू की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और अधिक पदक मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, कि कुछ इस तरीके से मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, और उसे मैंने माफी मांग ली और खुद को मैंने माफ कर दिया। माफ लेकिन दिल हो सबसे ज्यादा साफ, दिल से दिल तक। 102.6 FM, दिल से दिल तक।

पता है लाइफ में ना कितना कुछ ट्राई कर लो लेकिन कुछ ना कुछ तो रह जाता है। जब कोई तुम्हें अपनी जिंदगी में शायद की लिस्ट में रखे ना भाई, तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर सीधे कभी नहीं वाले डिब्बे में रख दो, यानी कि डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक। और आरजे गौतम आप है लाखों में एक। मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल।

सब मुंह माया है, ये जो लोग कहते हैं ना वो भी ऑफिस जाने के लिए एकदम तैयार बैठे होते हैं, बिकॉज बाहर कितनी भी हो ग्लोरी लेकिन ऑफिस जाकर आपको बोलना पड़ता है सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। ख्वाबों में भी आ जाए ना आपके बॉस का चेहरा तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों के सामने लग जाता है वो पहरा, है ना, ऐसा होता है ना लाइफ में। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, बिकॉज ख्वाब वही है जिन्हें सच करने के लिए आप थोड़ा सा, थोड़ा नहीं यार, बहुत सोना त्यागना पड़ता है। कहते ना कि अक्सर इश्क में लोगों की नींद उड़ जाती है। अरे भैया कोई हमसे भी तो इश्क करे, बिकॉज नींद बहुत आती है। बाबू का ही तो खेल है।

वेल, हर किसी को साथ लेकर चलना पड़ता है और ऐसे में एक मुहिम जो सामने आई है वो सबसे बढ़िया ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए सेवा संकल्प अभियान के तहत दिल्ली सरकार ने श्रमिकों और कामगारों तक सरकारी सेवाएं सीधे पहुंचाने की पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा केंद्र वैन को हरी झंडी दिखा दी है।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
10: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
11: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
12: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
11: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
12: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
11: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
12: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
13: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
14: इस बुधवार 23 सितंबर को शाम 5:45 से 6 बजे तक।

0: और जानिए SOL के स्किल कोर्सेज के बारे में।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वेल नाव से लेके घाव तक और मनमर्जी से लेके दूसरों के हाव भाव तक कितना बदल गए ना हम। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं और विविधताओं से बना एक खूबसूरत परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। हमारी यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी भावना को मजबूत करने की एक सुंदर पहल है, जहां हम एक दूसरे की संस्कृति को समझें, अपनाएं और सम्मान करें। और जब इस भावना के साथ जुड़ता है सेवा संकल्प, तो बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रहती बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने के संकल्प में बदल जाती है। क्योंकि किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है, करके देखिए अच्छा लगेगा। तो आइए आज हम सब एक छोटा सा संकल्प लें, अपने आसपास के लोगों की मदद करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, प्रकृति की रक्षा करें और देश की एकता और भाईचारे को मजबूत करने में अपना योगदान दें।

डिश क्या हूँ, ये दिल्ली का वेदर भी कहता है कई बार, है ना, गर्मी से लेकर नरमी तक, मैं जानता हूँ। और आज के टेम्परेचर की बात करें, यानी कि आज आज जो है 23 सितंबर को तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास। लेकिन एक चीज है,

थी, लेकिन अच्छी खबर ये है कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन से लेकर प्रयागराज तक विशेष ट्रेन एक चला रही है और 20 अक्टूबर से शुरू होकर 2nd ऑफ दिसंबर तक ये ट्रेन सेवा में होगी और जिससे त्योहार में घर जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। तो फेस्टिवल सीजन है।

दलाइल गलत बात कुछ नहीं है, सब जायज है। कहते हैं कि अब किसी का भी डर नहीं, तेरे जी में आए तो कर वही, जीना तेरे बिना जचे मुझे ऐसे जैसे बिना चीज के बर्गर नहीं। ये साथ तो रहेगा इसी तरीके से बरकरार, बिकॉज अब स्टूडियो में आ गई है निशा, तो यानी मुझे जाना पड़ेगा। जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेम्बर।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीवराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने के बजाय मजबूत, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया है। आयुष मंत्रालय आज भारत के नागपुर में बेहतर कल के लिए आयुर्वेद थीम पर 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और विश्वभर में आयुर्वेद संस्थान और इससे जुड़े लोग इससे जुड़े समारोहों में भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति कर रही है और दोनों देश दिसंबर के मध्य में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। भारत ने वायरल हेपेटाइटिस से निपटने और वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस बी और सी को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबिना देवी से भारत को और अधिक पदक मिलने की उम्मीद है। ये थी एफएम रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपने ट्यून इन कर ही लिया है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो कई बार मैं बोलती हूँ या कई बार जब जिंदगी अपनी हर दिन की शुरुआत करती है ना तो ऐसा लगता है कि ऑटो पायलट मोड पर ना हम चले जा रहे हैं। जो दिन की ज्यादातर चॉइसेस होती हैं वो कॉन्शियसली नहीं होती, उनके बारे में हम सोचते ही नहीं है क्योंकि हैबिट्स जो हैं हमारे दिन की शुरुआत करते हैं, फिर वही रिपीटेड रूटीन हमारे आगे आ जाता है और हमारा दिन वही सेम पैटर्न पर बिना किसी कॉन्शियस डायरेक्शन के शुरू हो जाता है। ऐसे में ना चेंज लाने के लिए बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, एक छोटा सा पॉज आपको लेना पड़ेगा और चूज करना पड़ेगा, डेलिबरेटली डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने दिन को कैसे शुरू करना है या फिर एक कुछ नया या अलग हटके कोई और चीज से अपने दिन की शुरुआत करनी है तो फिर देखना कैसे एक डायरेक्शन मिल जाती है जिंदगी को। आकाशवाणी रेनबो 102.6 दिल के तराने कहानी नए पुराने लेकर आई हूँ आपके लिए, बने रहिए मेरे साथ में। आज कौन से तीन खास रेट्रो गाने होंगे और साथ में ढेर सारा नॉन स्टॉप म्यूजिक, एंजॉय करते रहिए।

वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो 102.6। मैं निशा हूं आपके साथ में दिल की तराने गाने नए पुराने में। अब इससे पहले कि मैं आपको इस आवर का पहला रेट्रो गीत सुनवाऊं, तो दो

खास पर्सनालिटीज के बर्थडे के बारे में बात कर लेती हूँ। आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है हमारी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तनुजा जी। यस, ये 23 सितंबर के दिन ही पैदा हुई थी 1943 में, आज पूरे 82 साल की हो गई हैं। और जिन्होंने बंगाली, मराठी, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में इन्होंने फिल्में की, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, मतलब देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। तो आज इन्हीं की फिल्मों को सेलिब्रेट करेंगे और इनकी फिल्मों के गाने भी सुनवाएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैंने दो पर्सनैलिटीज कहा, तो तनुजा के साथ ही कई बारी फिल्मों में नजर भी आए हैं ये एक्टर, जिन्होंने ज्यादातर सिनेमा पर खलनायक की भूमिका में हमें नजर आए हैं। ये हैं प्रेम चोपड़ा साहब, 23 सितंबर 1935 में पैदा हुए थे और आज अपना 51वां बर्थडे, 91वे, यस नाउ आई एम राइट, तो 91वां बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। लाहौर पंजाब में इनका जन्म हुआ था और ये जो शोमैन राज कपूर की फिल्म थी ना बॉबी, इसमें एक छोटा सा मवाली गुंडे का कैरेक्टर करने के लिए ही इन्हें इतना अच्छा रिकॉग्निशन मिला था, तो बस उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, ये डायलॉग सबको याद रहता है। बट आज हम अपने बॉलीवुड, अपने सिनेमा के इन दो एक्टर्स को सेलिब्रेट करें, तो इसीलिए सबसे पहले जो गाना लेकर आई हूं वो है फ्रॉम द मूवी हाथी मेरे साथी। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, हमारे राजेश खन्ना साहब के साथ में तनुजा थे, मदन पुरी थे फिल्म में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, M.A. तिरुमुर्गन ने ये फिल्म बनाई थी। एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत गाने को हमारे किशोर कुमार और लता जी की आवाज में, राइट हियर ऑन 102.6 FM रेनबो।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाला और मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं शाहिद जी और हम दोनों आपके लिए लेकर आने वाले हैं द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स हैपनिंग इन आईची नगोया जापान। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों जो आज दिन की आ रही है वो है सॉफ्ट टेनिस की दुनिया से, क्योंकि जय मीना ने भारत को पहली बार सॉफ्ट टेनिस में एक मेडल अश्योर करवा दिया है एशियन गेम्स में। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट, इंडिया स्टैंड्स टू बी अश्योर्ड ऑफ अ मेडल फिनिश एंड ऑल्सो ऑफ अ मेडल इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्ट टेनिस in Asian Games. A sensational comeback from Jay Meena to deny Sherwin Nugent the semi-final spot. और हमने ये देखा कि पहले वो 3-3 के साथ गेम में, फाइनल गेम में अटल एक साथ टाइड अप थे, लेकिन Jay Meena was trailing 3-5 in the final game before clawing back to win the next 4 points and eventually taking the quarter final 4-3. आपको बता दूं फाइनल स्कोर लाइन रही 0-4, 4-2, 2-4, 4-2, 5-3, 2-4, 7-5 and obviously India's Jay Meena came out successful at the end of that game to move ahead for assuring India for the first medal in soft tennis. Jay Meena ka jo ab mukabla hai, which is in the second men's single semi-final, wo hoga aaj dopahar 12 baje. शाहिद
3: जी बिल्कुल, शूटिंग से बढ़िया खबर आ रही है। हालांकि अभी तक जो उम्मीद की जा रही वैसा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन शूटिंग के स्कीट वर्ग से, महिला वर्ग से एक अच्छी खबर है। भारतीय जो तिकड़ी है, परिणाम धारीवाल, महेश्वरी चौहान, इसके अलावा रायजा ढिल्लोन की जो महिला टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है, परिणाम धारीवाल और रायजा ढिल्लोन ने 125 में से 111 अंक जुटाए, जबकि महेश्वरी चौहान ने 109 अंक हासिल किए, कुल 331 अंक जुटाए और भारत ने यहां पर कांस्य पदक जीत लिया। इस वर्ग में चीन ने 357 अंकों के साथ गोल्ड, जबकि कजाकिस्तान ने 336 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता। यानी काफी ज्यादा फासला रहा गोल्ड और कांस्य पदक का, जो देखा जाए अंक देखा जाए तो। वो उधर महिला वर्ग के स्कीट स्पर्धा में भारतीय महिला निशानेबाज राजा ढिल्लोन और परिणाज धालीवाल दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। उम्मीद है यहां से भी अच्छी खबर आएगी। चलते चलते एक और शूटिंग की खबर देते। हालांकि मनु भाकर भी फाइनल मुकाबला खेल रही है, लेकिन इससे पहले बताएं दिन की जो शुरुआत हुई थी बेहद निराशाजनक रही थी। साक्षी, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल मिस पर जो मुकाबला था वहां मनु भाकर ने 579 के स्कोर के साथ व्यक्तिगत फाइनल में पहुंच गई। हालांकि एकलौती खिलाड़ी रही, वहीं ईशा सिंह जिनसे काफी उम्मीदें थी, सुरुचि जो बेहद जबरदस्त खिलाड़ी है, दोनों कुछ खास नहीं कर पाई, दोनों फाइनल के लिए चूक गई। बताएं ईशा सिंह ने 572 अंक जुटाए, वहीं सुरुचि 568 अंक ही जुटा पाई। हालांकि अभी मनु भाकर फाइनल मुकाबला खेल रही है।
2: राइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू सेपक तकरो, जहां पर भारत ने आज फिलीपींस को पहले मैच में 2-0 से हरा दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें, दिस वॉज फ्रॉम द टीम रेगु प्रिलिमिनरी ग्रुप वी क्लैश, इसके बाद भारत ने फिलीपींस को दूसरे मैच में भी 2-0 से लीड बना ली। सो इट लुक्स लाइक इंडिया आर क्लोजिंग इन ऑन अ क्लीन स्वीप ओवर फिलीपींस, क्योंकि अब तीसरा और फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। वहीं अगर रोइंग की भी बात कर ले तो सतनाम सिंह और सलमान खान ऑफ इंडिया दोनों दे फिनिश सेकेंड इन द मेन्स डबल स्कल्स with 6 minutes 15.63 timing ko clock karke and they have qualified for the finals, final A. Wahi Balraj Panwar finished third in the men's single sculls and has advanced to final A. Mahilao ki agar rowing mein baat karte hain to the India finished third in the rowing women's four heats and they will now take part in the final A. शाहिद
3: जी बिल्कुल, टेबल टेनिस से खबर आ रही, मिश्रित युगल के दूसरे दौर में भारत के हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े ने मालदीव के मोहम्मद इस्माइल और फातमित अली के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला है। वहीं मानुष शाह और दिया चितले ने श्रीलंका के चानुल कुलपाडू और भिवांडी को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है।
2: राइट, कनू स्पिरिट में थोड़ी सी अच्छी खबर आपको मैं देने वाली हूँ, क्योंकि भारत के जो मेंस कयाक है फॉर 4-500 टीम फिनिश थर्ड इन द हीट्स एंड क्वालिफाई फॉर द फाइनल ए। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कनू स्प्रिंट में जो है वो है ओनम अरुण सिंह, हर्षवर्धन सिंह, शक्तवत वरिंदर सिंह और नावचा सिंह, लाइट जाम कंबाइंड फॉर अ टाइमिंग ऑफ 1 आवर 29.447 सेकंड्स इन द हीट्स। मेघा प्रदीप फिनिश्ड फिफ्थ इन

0: Women's canoe single 200 meters heats with the timing of 46.675 and qualified for the semi-final. These are all the updates that we have been bringing to you. And a very quick, आपको ये भी बता दे कि medal tally में इस समय भारत कहाँ पर फिलहाल stand कर रहा है दोस्तों. Well, not a lot of good news on that front क्योंकि अभी भारत को आज भी मेडल का इंतजार है. तो स्टैंडिंग तो वही है भारत की, यानी आठवें स्थान पर, जिसमें एक गोल्ड जो कल हमारी विमेंस क्रिकेट टीम लेकर आई थी. और उसके साथ साथ हम बात करते हैं तो उसके साथ साथ हम बात करें तो दो ब्रॉन्ज भी हमारे पास है, एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद दैट तीन ब्रॉन्ज सॉरी एंड चार सिल्वर, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 8. दैट इज ऑल द अपडेट्स दैट वी ब्रॉट टू यू इन दिस मॉर्निंग अपडेट एट 9:30 AM. फॉर द मोमेंट इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड शाहिद आजमी सेइंग गुड बाय. स्टे ट्यून्ड, वी विल कम बैक एट 10:30.
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
2: आकाशवाणी रेनबो पर अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 की अपडेट. और दिल के तराने गाने नए पुराने में अब इस आवर का दूसरा रेट्रो गीत आपके लिए लेकर आई हूँ. इंजॉय द सॉन्ग राइट हियर ऑन 102.6.

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो 102.6। मैं निशा हूँ आपके साथ में दिल के तराने गाने नए पुराने में। इस आवर का तीसरा और आखिरी रेट्रो गीत आपके लिए लेकर आई हूँ। यस, आज तनुजा जी और प्रिंस चोपड़ा के बारे में बातें की थी कि उनके गाने सुनवाऊंगी, तो फिर एक बार फिर से दो चोर फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें तनुजा थी और धर्मेंद्र इनके साथ में लीड रोल्स में थे। और तनुजा बहुत जानी मानी एक्ट्रेस रही है, 60 से 70 के दशक की जो शुरुआत थी ना उसमें बहुत ज्यादा फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी और बड़े बड़े एक्ट्रेस के परिवार में ही जन्मी थी। शोभना समर्थ इनके माता जी का नाम था, कुमार सेन समर्थ इनके पिताजी थे और शोमू मुखर्जी से इन्होंने शादी की थी। बाकी तो आप आगे जानती हैं, काजोल और तनिषा जो है वो इनकी बेटियां हैं, वो भी फिल्म्स में हैं। तो आज इस एक्टर को हम याद कर रहे हैं और साथ ही प्रेम चोपड़ा जी को भी। तो फिलहाल मैं दो चोर फिल्म का गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, आप इंजॉय कीजिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: चोरी।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी रेनबो 102.6। देखिए छोरी तो एक और आने वाली है यहाँ पर, नाम है ईशा गोयल माथुर और आपके लिए लेकर आएंगी मैचलेस म्यूजिक आवर। परेशान बिल्कुल नहीं करेंगी, बहुत सारा अच्छा म्यूजिक आपके लिए लेकर आई है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा ये आखिरी गीत मैं प्ले करके जा रही हूँ। आकाशवाणी रेनबो पर बने रहिए, मेरे यहाँ से जाने का टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ट्यून्ड इन टू द 102.6 मेगाहर्ट्ज़। दिस इज आकाशवाणी रेनबो एंड राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू द मैचलेस म्यूजिक आवर। इट इज फ्यू मिनट्स पास्ट 10 एंड आफ्टर द न्यूज अपडेट इट्स टाइम टू टर्न टू म्यूजिक। You are with your host Isha Goyal Mathur playing the first song of the show, a song that literally promises us a sunshine day from OCB sir.
2: 1, 2, sunshine.

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। NACO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: Welcome back to the Matchless Music Hour on Akashvani Rainbow 102.6 MHz. Today we celebrate the birth anniversary of the legendary Ray Charles, whose music just brought together blues, gospel, jazz in ways that helped shape the soul of music. And we also celebrate another birthday of a very famous singer, Bruce Springsteen, known around the world as the Boss, who was born in 1949. Now, Springsteen became famous for turning everyday life into stories through his music, dreams, relationships, struggles, hopes, and the search for something better. And one of his most celebrated songs comes from his 1975 album, Born to Run. Here's for you.

0: शाहिद आजमी, मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे शूटिंग की, क्योंकि शूटिंग से खबरें ज्यादा हैं, शूटिंग से मेडल ज्यादा भारत को मिल रहे हैं, क्योंकि भारत ने अब तक जो 9 मेडल जीते उसमें से 7 शूटिंग से। स्कीट में एक और अच्छी खबर आई है, भारत को दूसरा पदक मिल गया है। पुरुषों के टीम वर्ग में भवगीत सिंह गिल, अनंजीत सिंह नरुका और मेराज अहमद खान ने फाइनल में 346 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और भारत के खाते में ब्रॉन्ज मेडल जोड़ दिया। इस वर्ग का गोल्ड मेडल कतर ने 553 अंकों के साथ जीता, जबकि सिल्वर मेडल कुवैत ने 548 अंकों के साथ अपने नाम किया। इससे पहले आज सुबह परिणाम धालीवाल, महेश्वरी चौहान और राजदान ढिल्लों ने महिलाओं की स्कीट टीम स्पर्धा में 331 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया। वहीं महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में एकलौती फाइनलिस्ट मनु भाकर 181.1 स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही और इस वर्ग का गोल्ड मेडल दक्षिण कोरिया ने और सिल्वर मेडल चीन ने जीत लिया। एक बड़ा सेटबैक भारत को मिला है यहाँ पर 10 मीटर में, जहां पर कोई पदक इंडिविजुअल में भारत के खाते में नहीं आया।
1: जी, थैंक यू सो मच शाहिद। एंड द नेक्स्ट अपडेट दैट यू ब्रिंग टू इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी, वेयर देयर इज अ गुड न्यूज कमिंग इन बिकॉज इंडिया बीट ईरान 37-23 इन द कबड्डी वुमेन्स टीम ग्रुप ए। बोथ द टीम्स आर नाउ लॉक्ड ऑन 4 पॉइंट्स इन द ग्रुप एंड हैव इंश्योर्ड देयर सेमीफाइनल स्पॉट्स। और मेंस टीम कबड्डी की अगर हम बात करें तो यह मुकाबला इस वक्त चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जहां फर्स्ट हाफ में भारत ने बांग्लादेश को कंफर्टेबली 29-9 से हरा दिया था। अब इस समय सेकेंड हाफ ऑन हो चुका है और लेटेस्ट अपडेट यह है कि सेकेंड हाफ में भारत के पास 1 पॉइंट की फिलहाल बढ़त बनी हुई है, यानी 2-1, जिसमें 2 अंक भारत ने अपने पास रखे हैं, जीते हैं, कमाए हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अभी तक सिर्फ 1 ही अंक कमाया है। द टोटल स्टैंडिंग एट 31 पॉइंट्स फॉर इंडिया एज ऑफ नाउ, व्हाइल बांग्लादेश लीडिंग, शुड आई नॉट से लीडिंग बट रादर बांग्लादेश लैगिंग बिहाइंड विद जस्ट 10 पॉइंट्स ऑन बोर्ड।
0: जी बिल्कुल, शूटिंग की जैसे मैंने पहले बात की थी, एक और खबर हमारे पास आ गई शूटिंग से। अनंजीत सिंह नरुका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, 8वें स्थान से हालांकि फिनिश किया क्वालिफिकेशन में, लेकिन जब क्वालिफिकेशन के बाद जब फाइनल मुकाबला आता है तो बहुत ऊपर नीचे मुकाबला पहुंचता है, लेकिन एक मेडल की उम्मीद भारत की एक और है। बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है भारत बनाम चीन पुरुषों का जो बैडमिंटन मुकाबला है। भारत की अगर लाइनअप की बात करें यहाँ पर तो लक्ष्य सेन शी यूची से भिड़ेंगे, बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। वहीं पर मेन डबल्स की सबकी निगाहें होगी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से, वहां पर लियांग वेई केंग और वांग चांग से भिड़ेंगे, ये भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा। वहीं मेन डबल्स में आयुष शेट्टी का सामना होगा ली शी फेंग से। वहीं मेन डबल्स का जो दूसरा मुकाबला होगा, हरिहरन अमक अरुण और एम आर अर्जुन भिड़ेंगे हेजी टिंग ल्यू यी से, जबकि मेन सिंगल्स का तीसरा बेहद अहम मुकाबला होगा, निगाहें होंगे किदांबी श्रीकांत पर जो भिड़ेंगे हो यांग से।
1: राइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग, वहां से भी आपके लिए कुछ अपडेट्स लेकर आ रहे हैं आज के दिन में कि फेंसिंग की दुनिया से मेरे पास आपके पास दोस्तों कुछ खास खबर देने के लिए अच्छी है नहीं, बिकॉज बोथ द इंडियंस फेस डिफीट्स इन द वुमेन्स फॉइल इवेंट। जी हाँ, मीना देवी नावरम लॉस्ट टू जापान यूका ओइनो 1-5, वाइल जॉयस अश्विता स्टैनली राज लॉस्ट टू मकाउ ह्यू लांगकू 0-5। वहीं अगर हम बात करते हैं कि वुमेन्स फॉइल इंडिविजुअल इवेंट के अंदर भी फेंसिंग में, तो मीना देवी नावरम वहां से भी she has gone out of contention in the women's foil individual event after suffering a heavy defeat to South Korea's Park Ji-hee in the round of 32. Well, also to tell you, South Korea's Park Ji-hee completely dominated this contest from the outset, securing a convincing 15-3 victory to advance to the next round.
0: जी बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग पे भी निगाहें होंगी, हालांकि मुकाबला अभी चल रहा है, बताना अभी बहुत जल्दी होगा कौन जीतेगा, लेकिन सभी की निगाहें भारत की धाकड़ जो वेट लिफ्टर है मनु भाकर पर सबकी निगाहें होंगी, मीराबाई चानू पे, वो क्या कमाल करती हैं, जैसे ही नतीजा आएगा आपको अपडेट में बताएंगे फिलहाल। लेकिन जिस तरह से भारत ने अब तक 9 पदक जीते हैं, उम्मीद है कि आज जब शाम ढलेगी तब भारत के पदकों की संख्या बढ़ेगी, जिनमें शूटिंग का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है।
1: राइट, एंड अनदर क्विक अपडेट कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड स्विमिंग ऑल्सो फॉर ऑल आर लिसनर्स, की साजन प्रकाश मिस द स्विमिंग मेंस 100 मीटर बटरफ्लाई हीट्स, मीनवाइल इज कंपैट्रियट बेनेडिक्ट इन बेनिस्टन हैड फिनिश्ड फोर्थ इन द हीट्स विद 53.08 सेकंड्स टाइमिंग। वही अनीश सुनील और वेदांत माधवन की भी अगर बात करें तो वो चौथे और छठे स्थान पर उन्होंने फिनिश किया मेंस 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स के अंदर। अनीश क्लॉक्ड 1:22.65 अहेड ऑफ माधवन 1:23.67 सेकंड्स। सो नॉट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्विमिंग ऑल्सो कमिंग इन, एंड अ वेरी क्विक अपडेट कमिंग इन ऑल्सो वुड बी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग, जहां आज जैसे हमें शाहिद ने बताया अभी कुछ खास खुशखबरी नहीं है। अंक तालिका पे भारत का स्थान अभी कुल मिलाकर 9 मेडल्स के साथ बना हुआ है, जिसमें 1 गोल्ड है हमारे पास, एंड ऑफकोर्स 7 कुल मिला के जो मेडल्स हमारे पास आए हैं वो रहे हैं सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स भी।

0: सो 9 मेडल्स, उम्मीद करते हैं शायद यहाँ से और बढ़त मिलेगी हमें। फिलहाल के लिए शाहिद और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत। हम आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 11:30 बजे एक बार फिर से।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: You were listening to the Asian Games 2026 update. Let's take a short break. Stay with us. We'll be right back.
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: Welcome back to the Matchless Music Hour here on Akashwani Rainbow 102.6 MHz with your host Isha Goyal Mathur. With timeless melodies, let's go back all the way to 1950s with a short, energetic, full of that early rock and roll spirit with Eddie Cochran singing Summertime Blues.

0: Stay tuned and we'll be back after this short break.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक कार ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज विद योर होस्ट ईशा गोयल माथुर। लेट्स एंजॉय बॉब सेगर्स अगेंस्ट द विंड टुगेदर ओनली ऑन

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने के बजाय मजबूत, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर जोर देने का आह्वान किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने देश भर में लाखों लोगों के लिए

स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बल दिया है को बदल दिया है माफ कीजिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। त्रिनिदाद के प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर ने भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ अपनी बैठक के दौरान भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। भारत ने वायरल हेपेटाइटिस से निपटने और वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस बी और सी को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिका चीन वार्ता में प्रगति की उम्मीदों के चलते भारतीय शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुले। एशियाई खेलों में महाश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने आईची नागोया में महिलाओं की टीम स्कीट शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और इसके अलावा अनंतजीत सिंह नरूखा, मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल ने पुरुष टीम स्कीट शूटिंग प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए।

ना ना ना ना ना ना ना ना, हम आपको यहाँ पर दर्द देने नहीं आते हैं, हम तो आपका दर्द जो है वो कम करने आते हैं अपनी बातों से और अपनी खास खास खबरों से। कहाँ पर? यहाँ यानी कि आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं क्या जी सोने मकड़ो की हाल चाल है। पुरानी फिल्मों में ना जो हीरोइन के पिता होते थे वो इतने भोले होते थे मैगा जी, कि उनको ना उनके अपने घर में अपने ही पियानो पर उनके अपनी ही बेटी के लिए हीरो जो है वो गाना बजाकर और गाकर चला जाता था और उनको पता ही नहीं चलता था, है ना। कितने स्वीट होते थे वो। लेकिन कुछ भी कहिए, पुरानी फिल्मों का जो स्वैग है ना वो बिल्कुल आज भी बरकरार है। जब भी आप आज भी देखने बैठ जाते हैं ना तो आपको मजा ही आ जाता है। जो सादगी, जो सिंप्लिसिटी उसमें होती थी ना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और इसीलिए यहाँ बॉलीवुड ट्रेल्स में हम बात करते हैं बॉलीवुड की उन्हीं सारी खबरों की, चाहे वो नई हो या पुरानी, आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको खबर बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि बॉलीवुड में न सिर्फ हम खबरें बताते हैं जो कि हमारे पुराने लिसनर्स हैं वो तो ये जानते होंगे, लेकिन अगर कोई नए लिसनर्स हमारे साथ जुड़े तो वो भी जान लें कि इसमें हम खबरों के साथ साथ आपके साथ खेलते हैं एक क्विज जिसे कहते हैं बॉलीवुड सरताज। और उसमें हम आपसे पूछते हैं एक सवाल जिसका देना होता है आपको जवाब, और वो जो सवाल है ना वो छुपा होता है हमारी बातों में। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को ताकि वो सवाल जो है वो मिस ना हो जाए, उसका जवाब आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। ठीक है ना, थोड़े से मिनी जबन कभी कभी फिसल जाती है, इंसानी तो हूँ मैं भी। तो 9868107070 है नंबर, इसे नोट कर लीजिए। और फिलहाल मैं आपके लिए गाना बजाऊं, उससे पहले बता दूं कि कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस किसके लिए। ये है एक्टर यामी गौतम और कार्तिक आर्यन और मम्मूटी के लिए, क्योंकि जो एकता नगर केवड़िया गुजरात में 72वां जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ है ना उसमें यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, कार्तिक आर्यन को जो है वो चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और एक्टर मम्मूटी को ब्रह्म युगम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो मैं क्या जी मुबारक मुबारक। इसी खुशी में गाना बजा लेते हैं, फिर आते हैं वापस। हाँ, स्टे ट्यून्ड।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
4: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
5: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
4: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
5: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
4: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

ठंडक ने जो है वो दस्तक दे दी है। मौसम थोड़ा सा थोड़ा सुबह शाम हल्का हल्का ठंडा हो चुका। और ऐसे में मेरे साथ एक वाकया हुआ, वो ये हुआ कि मैंने अलमारी खोली कपड़े निकालने के लिए और मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना सम्मान मुझे बरसों से नहीं मिला था। कुछ कपड़े अचानक ही मेरे पैरों में गिर गए। बताइए, मेरा तो दिल ही भर आया। खैर, फिलहाल जो है ये सेंटी बातें छोड़कर मैं

आपको पते की बात बता देती हूँ, मूवी रिव्यू की बात कर लेते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी, और शो चल रहा है क्या, बॉलीवुड ट्रेल्स। बिल्कुल सही पहचाना है आपने, और अगर आप नहीं पहचानते ना तो मैं क्लास लगा देती हूँ आपकी। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, मैं तो मजाक कर रही थी, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं। 18 सितंबर को कुणाल खेमू की जो फिल्म है वाइब, वो रिलीज हुई थी, और उसका जो फीडबैक है वो थोड़ा सा ले लेते हैं। वो ये है कि फर्स्ट हाफ में जो है वो कुछ मजेदार पंचेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो सेकंड हाफ है ना वो थोड़ा सा कुछ एवे ही सा है, तो आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से थोड़ा बहुत आपको एंटरटेनमेंट मिल ही जाएगा, है कि नहीं। और दूसरी फिल्म की अगर बात करें जो कि 18 सितंबर को रिलीज हुई थी, वो है दायरा, जिसमें करीना कपूर खान और जो है वो डीसीपी अजूनी कोहली और पृथ्वीराज सुकुमारन जो हैं वो डीसीपी रमन कुमार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। दोनों ही जो है वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, और एक गंभीर मामले की जांच के दौरान जो है उनकी जो केमिस्ट्री है ना वो मैच नहीं खाती है, तो फिर उसमें जो वहां पर जो चेंजेस होती हैं सीन में, ठीक है, तो उसको एंजॉय करने के लिए आप जो है इस मूवी को देख सकते हैं। बाकी ये तो रहा मेरा फीडबैक, ये मेरा फीडबैक नहीं, ये जो मूवी रिव्यू आ रहा है ना वो मैंने आपको बताया, मेरी पर्सनल बात नहीं है। तो आप जाकर ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। अगली फिल्म जो है वो है हनुमान अंश, उसको जो है हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाई करने वाली फिल्म माना जा रहा है। नीम करोली बाबा के जीवन पर ये फिल्म आधारित है, और इसकी शुरुआत जो है वो 10 लाख के कलेक्शन के साथ हुई थी, लेकिन अब कुल कलेक्शन जो है वो लगभग जो है 275 करोड़ के भी पार पहुंच गया है, तो इसे कृपा ही माना जा रहा है। फिल्म ने जो है वो 4 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था अभी जल्द में ही, और वीकडेज में भी जो है वो 250 कमाई कर रही है। ये वीकेंड्स में भी तो कमाई कर ही रही है, वीकडेज में भी काफी कमाई हो रही है इसकी, तो आप भी देखने जा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर में आपको जो है वो बॉलीवुड सर ताज बनने के लिए सवाल आपको मैं बता दूंगी, तो आप जो है वो अपने फोन नंबर्स के साथ, मैं फोन नंबर दूंगी, आप अपने फोन के साथ तैयार रहिए, मतलब अगर कुछ गलत निकल जाए करें तो समझ जाए करिए। 9868107070 है नंबर हमारा, और बातों में छिपा है आज का सवाल, तो तैयार रहिएगा, स्टे ट्यून्ड।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मैं क्या जी, एक बारी फिर स्वागत है तुम्हारा साढ़े शो में, जिसका नाम है आकाशवाणी रेनबो चैनल का नाम है और शो का नाम है बॉलीवुड ट्रेस। देखा, मैं ऐसी पलटी मार लेती हूँ। तो आप, मैं आपको बता दूं कि मुझे कहते हैं शालिनी और हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड ट्रेस में बॉलीवुड की खबरों की। तो बॉलीवुड की जो अगली खबर है वो रिव्यू को लेकर ही है और वो ये है कि फिल्म जो है अमरन, ये भारतीय सेना के शहीद

मेजर मुकुन वरदराजन की जिंदगी वीरता और शहादत की सच्ची कहानी पर आधारित है। इसमें शिव कार्तिकेयन ने मेजर मुकुन का किरदार निभाया है और साई पल्लवी जो है उनकी पत्नी इंदु रेबिका वर्गीज के रोल में नजर आई हैं। दोनों कलाकारों ने अपनी दमदार अदाकारी से कहानी को बेहद ही भावुक बना दिया। तो अगर आप भावुक इंसान है तो इसे देखने जा सकते हैं, जो कि काफी रिव्यूज अच्छे मिले हैं इसके, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है 2023 में एक फिल्म आई थी चिट्टा, ये ऐसी फिल्म थी जिसने ऑडियंस पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी थी, और अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं तो आप इसे देखने जा सकते हैं। ये जो है वो चाचा भतीजी के खूबसूरत रिश्ते पर बेस्ड है और इसमें एक्टर सिद्धार्थ ने जो है वो दमदार परफॉर्मेंस दी है। इसको IMDB पर शानदार 8.2 की रेटिंग मिली है, तो आप देख सकते हैं इसको। और फिलहाल अब मैं कर लेती हूं आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल आपसे। आज का सवाल ये है कि हमने आपको बताया था कि 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 3 एक्टर्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, वो कौन है ये आपको हमें बताना है। तो 9868107070 वो नंबर है, फटाफट से हमें जवाब भेजिए। ये म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं।

0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 लाइव अपडेट्स जो हर घंटे हम आपके लिए आकाशवाणी के माध्यम से दोस्तों लेकर आ रहे हैं। मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त है शाहिद आसमी। और सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं वेट लिफ्टिंग की दुनिया से, जहां सारी नजरें आज बनी हुई है मीराबाई चानू पर, क्योंकि उनसे उम्मीद करी जा रही है कि वो देश के लिए एक पदक जरूर लेकर आएंगी। आपको बता दें कि सबसे पहले जो शुरू हुआ था हमारा मीराबाई चानू का, उसमें उन्होंने जो उनका बेस्ट लिफ्ट रहा था वो था 87 किलोग्राम का, जी हां 27 किलो का जो उनका जो फाइनल अटेम्प्ट में गया था वो उनका बेस्ट स्नैच अटेम्प्ट था। अब इसके बाद क्लीन एंड जर्क राउंड्स भी शुरू हो रहे हैं। आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें

0: कि रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन री सॉन्ग गम रेजेस द बार बाय कंप्लीटिंग अ स्नैच विद अ कमांडिंग 94 किलोग्राम, व्हिच मींस दैट जो मीराबाई का बेस्ट अटेम्प्ट था 87 किलो का था, वही उनकी जो कंपैट्रियट है इन्होंने स्नैच अटेम्प्ट में 94 किलोग्राम्स का बेस्ट अटेम्प्ट दिया था क्लीन एंड जर्क के साथ। अभी वो मुकाबले अब शुरू होने जा रहे हैं और उसके साथ ही साथ मीराबाई चानू ने देश के लिए एक मेडल तो कंफर्म कर ही दिया है। अब शायद ये देखना होगा कि उस मेडल का रंग कौन सा हमारे लिए होने वाला है।
1: जी बिल्कुल, मेडल कंफर्म हो गया। लेकिन एक और मेडल की बात करेंगे सॉफ्ट टेनिस से। भारत के खाते में ऐतिहासिक पदक आया है। जय मीना ने पुरुष एकल में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने जापान के ताकू कुएसाका के हाथों 2-4 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वो सेमीफाइनल पहुंचे थे तभी ये कांस्य पदक पक्का हो गया था। हार के बावजूद जय मीना ने भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, जिन्होंने सॉफ्ट टेनिस में भारत के लिए एशियन गेम्स का पहला पदक जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। और श्रोताओं, एक दिलचस्प बात बता दूं, जय मीना की कहानी एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि वो शुरुआत में क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन आज वो सॉफ्ट बॉलर जो सॉफ्ट टेनिस के स्टार बन गए हैं।
0: जी ऑफकोर्स, देखिए कहां से कहां जिंदगी का सफर लेके चला जाता है। बट मूविंग ऑन टू द क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस, हरमीत देसाई एंड यशस्वनी घोरपड़े बुक देयर प्लेस इन द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स विद अ 3-1 विक्ट्री ओवर हांगकांग्स यू क्वान टो एंड विंग लैम। इसके साथ ही साथ हम मिक्स डबल्स पेयर में अगर बात करते हैं तो मानु शाह और दिया चटाले ने भी मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है विद अ डोमिनेंट स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री ओवर द मालदीव्स पेयर ऑफ अहमद मूसा और नजीम असीहत। तो यहां पर भी अब भारत की उम्मीदें थोड़ी बढ़ती हुई, बिकॉज बोथ द मिक्स डबल पेयर्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया हैव नाउ मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड व्हिच इज ऑफ कोर्स द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स। शाहिद
1: जी, कबड्डी की बात कर लेते हैं। कहा था भारत की कबड्डी सबसे मजबूत है। जी हां, पुरुष वर्ग में भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हरा दिया। पहले हाफ में 29-9 की भारी भरकम भारत ने लीड ले रखी थी और जो दूसरे हाफ में 19-16 तक पहुंची। हालांकि 19-16 बांग्लादेश ने यहां पर कहीं ना कहीं वापसी की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जब अंत में मुकाबला खत्म हुआ तो भारत 48-25 से जीत चुका था। वो इससे पहले आज ही भारतीय महिलाओं ने ईरान को 37-23 से शिकस्त दी है।
0: Very well said. And now moving on to boxing, Ankush Pangal advanced to the round of 16 with a convincing 5-0 unanimous decision victory over Hamsa Vogel. The Indian boxer remained more effective in the final round as Vogel struggled to mount a challenge. Yeh haan, Ankush Pangal ko saamne wale apne opponent se koi bhi mukabla nahi mila aur unko unanimous decision 5-0 5-0 se unke haq mein ye faisla diya gaya. And now he has moved on towards the round of 16.
1: Jee, paani ki baat karte, paani में नौ चलने की बात करते हैं। कैनो स्प्रिंट में पार्वती गीता और फेब्रम सोनिया देवी ने महिलाओं के कैक युगल 500 मीटर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यहां से कुछ अच्छी खबर साक्षी आ रही है।
0: हाँ जी, और उसके साथ साथ आपने मुझसे अच्छी खबर की उम्मीद रखी है शायद, लेकिन मैं इससे ज्यादा अच्छी खबर अपने श्रोताओं को नहीं दे पाऊंगी क्योंकि अगला अपडेट में एक ऐसे स्पोर्ट से देने जा रही हूं जहां पे भारत फिलहाल एग्जिट कर चुका है, वो है फेंसिंग की दुनिया में। हम बात करें यहां पे स्ट्रांग स्टार्ट फ्रॉम गीशो निधि कुमार सेरन सीज इन रेस टू saw him race to a 4-1 lead early on, lekin jo ki opponent the Sarkisia, he hit back immediately to level the score. Or finally humne kya dekha ki the Kazakh then edged ahead 8-7 at the end of the first period and stayed in control, finally defeating the Indian Nidhi Kumaresan 15-11, thereby ending India's saber campaign. Shahid
1: ji bilkul, kabhi kabhi jeet bhi lakshya tak pahuncha nahi sakti, jeet haar mein badal jati hai. Aisa hi kuch dekhne ko mila sepak takraw mein. Bharat ne Philippines ko 2-1 से हराया लेकिन क्वालिफाई करने से चूक गई। पुरुष टीम रेगु के ग्रुप बी मुकाबले में भारतीय टीम ने फिलीपींस को 2-1 से मात दी। हालांकि इस जीत के बावजूद भारतीय टीम अगले दौर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई क्योंकि यहां पर जो लक्ष्य था वो हासिल नहीं हुआ।
0: राइट, एंड एज वी कम टू एन एंड ऑफ दिस अपडेट, क्विकली टेलिंग ऑल आवर लिसनर्स ऑफ द प्रेजेंट मेडल टेबल स्टैंडिंग की भारत कहां पर है इस समय। भारत 9वें स्थान पर है। कुल भारत के पास अभी 10 मेडल्स हैं, एक गोल्ड जो क्रिकेट की दुनिया से आया भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने हमें दिलवाया कल, 4 सिल्वर शूटिंग से आए हैं, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जिसमें से 4 शूटिंग में है, 1 एमएमए में है, एमएमए में है और 1 सॉफ्ट टेनिस में। सो इसके साथ ही फिलहाल आपसे मैं साक्षी और शाहिद लेते हैं इजाजत। दोस्तों, आपके साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ जुड़ेंगे दोपहर 12:30 बजे। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, केम जम, मजा मां, मैं गया जी शालिनी कहते हैं मुझे, और आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन से तीन एक्टर्स हैं जिन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, लेकिन क्या है ना, आधे अधूरे जवाब भी भेज रहे हैं कुछ लोग, तो ऐसे थोड़ी चलेगा तीन एक्टर के नाम बताने हैं आपको, तो तीनों बताइए, एक दो ऐसे थोड़ी चलता है। किसी ने दो सही बोले हैं तो किसी ने एक गलत बोला, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको सही जवाब तीनों देने होंगे, तभी जाकर आपको जो है वो बॉलीवुड सरताज बनाया जाएगा। तो तीन एक्टर्स के नाम हमें आपको भेजने हैं 9868107070। एक बार मैं सवाल फिर से दोहरा देती हूं कि वो कौन से तीन एक्टर्स हैं जिन्हें 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसमें एक्टर और एक्ट्रेस दोनों शामिल है, टोटल तीन हैं, तो तीन एक्टर्स के आपको जवाब भेजने हैं, ठीक है जी। सो स्टे ट्यून्ड, फिलहाल ये गाना सुनिए, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

बसंती को ज्यादा परेशान मत करिए वरना बसंती कहेगी हमारा नाम नहीं पूछेंगे, हमें कहते हैं बसंती। तो इसीलिए ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं बसंती को। मैगा जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 शालिनी के साथ और शो चल रहा है बॉलीवुड ट्रेस, जिसमें हम आपके साथ एक क्विज खेलते हैं जिसे कहते हैं बॉलीवुड सरताज। और उसका सवाल हमने आपसे पूछा था, लेकिन उससे पहले आपको एक खबर बता देती हूं मैं कि टीवीएफ का एक नया सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट जो है वो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रहा है। फिल्म की जो पटकथा है वो बहुत ज्यादा मॉडर्न सोच और सदियों पुरानी जो लोक परंपराएं हैं उनके टकराव पर टिकी हुई है। इसमें जो मुख्य किरदार है वो ऋषि यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा निभाएंगे और ममता जो है वो तमन्ना भाटिया इसका किरदार निभाएंगी। ममता का कहानी जो है वो वन देवी की आराधना, आस्था, पुनर्जन्म और बुराई पर अच्छाई की जंग की है। तो ये फिल्म जो है वो 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और जो इसका बजट है वो 80 से 90 करोड़ का बताया जा रहा है। तो आप लोग बताइए आपको पैसे से क्या लेना देना है, जो दादा तले आपने उंगली दबा ली ना वो आपकी जेब से पैसे सिर्फ उतने ही जाएंगे जितने टिकट के हैं, और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप तो इंजॉय करिए बस। फिलहाल मैं जो है वो थोड़ी देर में आपको बॉलीवुड सरताज से मिलवाने जा रही हूँ आज के, लेकिन उससे पहले आप ये ट्रैक एंजॉय कीजिए, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, जिन्होंने सही जवाब दिया ना उनका नाम भी बताऊंगी।

0: सो आपका एक बार फिर से स्वागत है आकाश मॉर्निंग रेनबो 102.6 पर, और यहाँ पर शो चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और मैं हूँ आपके साथ शालिनी। और शालिनी के साथ साथ जो है आपको खबरें तो बता ही रही हूँ मैं बॉलीवुड ट्रेल्स की, और आज के बॉलीवुड सरताज हमें मिल गए। अगली आवाज आप उन्हीं की सुनेंगे, तो सुनिए सुनिए सुनिए। हेलो
1: हेलो
0: जी, आज के हमारे बॉलीवुड सरताज को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगी, वो खुद बताएंगे अपना नाम और जगह का नाम। जी बताएं।
1: मैम मेरा नाम जयनंद त्यागी, मोदी नगर।
0: जी जयनंद त्यागी जी हैं मोदी नगर से, और आज के बॉलीवुड सरताज बन गए हैं, तो कैसा लग रहा है? ये तो हम जानते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा,
1: बहुत
0: लेकिन
1: अच्छा।
0: क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो
1: हेलो
0: जी, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आकाशवाणी रेनबो पर? आप जी बोलिए।
1: मैं तो मैम रेनबो ही सुनता हूँ सुबह से शाम तक।
0: सुबह से शाम तक सुनते हैं आप, तो बाकी काम कैसे करते हैं आप?
1: बस चलता रहता है, काम भी करता रहता है मैम।
0: अरे वाह, क्या काम करते हैं आप?
1: मैं मैम बुक सेलर का काम है।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, आप
1: रेडियो
0: ज्ञान बांटने का काम करते हैं आप? जी
1: सुबह सुबह छह से नौ तक घर पे, और उसके बाद पूरे दिन चलता रहता है रात को 9 बजे तक।
0: जी बहुत ही बेहतरीन, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बॉलीवुड सरताज बनने के लिए ढेरों सारियां बधाइयां। ठीक है, आप इसी तरह से जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैम।
0: तो ये थे आज के हमारे बॉलीवुड सरताज जयनंद त्यागी जी मोदी नगर से, और हमारे पास और भी बहुत सारे जवाब पहुंचे हैं जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। ठीक है जी, तो एंजॉय करिए अगला ट्रैक, मैं आती हूँ बस अगले नामों के साथ।

माफी चाहूंगी मैं आपसे, सही जवाब आपको बताना हम भूल गए। सही जवाब है कार्तिक आर्यन, यामी गौतम और एक्टर ममूटी।

जो है वो जवाब आया है कि इनका ये है पूजा और कोमल और आयुष हरिनगर नई दिल्ली से, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूटी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नितिका पेरिकर है पुणे से, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अगला मैसेज हमारे पास है राजकुमार के संतानिया कोला महाराष्ट्र से, इन्होंने भी कार्तिक आर्यन यामी गौतम बिल्कुल सही जवाब दिया है। और नेक्स्ट है हमारे पास जुल्फिकार आलम बिहार से, इन्होंने भी सही जवाब नहीं दिया है, दो नाम सही बताए हैं और तीसरा नाम जो है वो गलत बताया है, तो माफी चाहूंगी मैं आपसे, लेकिन देखिए मैंने आपका नाम बोल दिया है, आप ऐसे ही मेरे से शिकायतें मत करिएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास मैसेज है कंचन का सोनिया विहार दिल्ली से, इन्होंने भी बिल्कुल जो है वो सही बताया है, हालांकि थोड़ा सा नाम में मिस्टेक कर दिया स्पेलिंग में, वो चलता है ठीक है, लेकिन इनके भाव हम तक पहुंच गए हैं। अगला मैसेज हमारे पास है राजकुमार जायसवाल माधेपुरा बिहार से, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट हमारे पास मैसेज आया है अफरोज शेख नेमुआ सुपौल बिहार से, इन्होंने भी गलत जवाब दिया है, दो जवाब सही दिए एक जवाब गलत दिया है। गुड मॉर्निंग भेजा है, गुड मॉर्निंग के साथ साथ एकदम गलत जवाब भेजा है, तो मैं इनका नाम नहीं बता सकती हूँ, चलिए बता देते हैं, मोहम्मद इम्तियाज है जवाहर कैम कीर्तिनगर नई दिल्ली से, इन्होंने गलत जवाब भेजा है लेकिन। और इसके अलावा जो है वो सुकाल बाला फलाकटा वेस्ट बंगाल से, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने गलत बोला हो, जगह का नाम तो थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पर इन्होंने भी बिल्कुल गलत जवाब भेजा है। तो आपको गलत जवाब भेजने पर भी मैं आपका नाम ले रही हूँ, इसके लिए आप शुक्रिया भले ही ना करें, लेकिन जो इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। सुहानी वर्मा का शेरकोट बिजनौर से आंसर है बिल्कुल ठीक, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और इसके अलावा डॉली का हमारे पास मैसेज आया है, इन्होंने जगह का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ये हमारी जो है वो रेगुलर लिसनर है, तो मैंने आपको बता दिया कि इनका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। सलीम फैज शिव विहार दिल्ली से, और इन्होंने सिर्फ नाम भेजा है, ऐसा नहीं करना होता है, मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब देना होता है, ऐसे थोड़ी चलता है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि कौन किसका है हमारे पास, शिव का मेरठ से आया है, इन्होंने जवाब सही भेजा है, दो बार में भेजा है भले ही, पर भेज दिया है आखिरकार। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम मैं पढ़ूं, हालांकि बहुत सारे मैसेजेस हैं, सारे नाम मैं नहीं बोल पाऊंगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो नाम मैं और बोल लेती हूँ, महेंद्र प्रताप सिंह राजपुर औरंगाबाद बिहार से, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास हरप्रीत रंगीला भूचो भटिंडा से, मेगा जी मुबारक, आपने भी सही जवाब दिया है। और इसके अलावा मेरठ से जो है वो हमारे पास हैं खान आबिद, इन्होंने भी गलत जवाब दिया है, ठीक है, सही बोलते बोलते सही निकल रहा है मुझे, ऐसा नहीं है, गलत जवाब भी भेजा हमारे पास लोगों ने बहुत सारे। नेक्स्ट हमारे पास है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, हमारी रेगुलर लिसनर है शांतिनगर सोनीपत से, इन्होंने क्वेश्चन लिखे आगे एक ही आंसर लिखा है, बता रही हूँ मैं, पूरा आंसर देना था, तीन जो है आपको वो एक्ट्रेस के नाम बताने थे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आधा अधूरा जवाब नहीं देना, तभी तो आपको जो है बॉलीवुड से ताज नहीं बताया मैंने, ऐसे थोड़ी चलता है। शिशु कटारिया, पवन कटारिया, गिद्दड़ बह पंजाब, तू मैनु मैसेज कर दिया, ये कह रही ने कि कार्तिक आर्यन और ममूटी, बस मैनु इतना ही पता है, हुण ना छड्ड उपरा, मैनु बनाओ या ना बनाओ, मैं तो जवाब दे दिता। चलो अगला जो मैसेज हमारे पास है वो ख्याला एस, उमेश कुमार ख्याला एस, इन्होंने लिखा है, और इनका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी रेनबो 102.6 से जुड़ने के लिए, मैं हूं आपके साथ चालनी, और आप सुन रहे थे बॉलीवुड ट्रेल, सुन रहे थे क्योंकि मैं जा रही हूं ना, जाने का टाइम हो गया, तो अब मैं आपको छोड़ी जाती हूँ इस बेहतरीन से गाने के साथ, इंजॉय कीजिएगा, ठीक है जी, चालनी सेज टाटा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

are always wherever you are. 102.6 आपके लिए. यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही. रेनबो पर रात 9 बजे.

0: Sometimes we make happiness far more complicated than it needs to be. Just a little sunshine is needed. Well, before we move on further, it's time for the Asian Games 2026 update.
1: Asian Games 2026, Aichi, Nagoya.
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं शाहिद आजमी एंड वी ब्रिंगिंग यू द लेटेस्ट अपडेट्स एट घड़ी में बज गए हैं 12:30 और आपको हम देने वाले हैं कि एशियन गेम्स 2026 की पिछले एक घंटे में क्या क्या इवेंट्स में क्या क्या घटित हुआ है. तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको ये देते हैं वेट लिफ्टिंग की दुनिया में, जहां मीराबाई चानू ने कमाल कर दिया. जी हाँ, शी हैज ब्रॉट इंडिया द कोवेटेड सिल्वर. उम्मीद तो उनसे गोल्ड की रखी गई थी, लेकिन सिल्वर पदक यानी सिल्वर मेडल भारत के लिए वो लेकर आ गई. इस वक्त शी वॉज एबल टू पुट इट ऑन अ टोटल ऑफ 198 केजीज, विच वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर बेस्ट लिफ्ट फ्रॉम स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क. 198 किलो उठाने के बाद उनको आज यहां पर हमने देखा सिल्वर मेडल से नवाजा गया. आपको ये भी बता दें कि वेट लिफ्टिंग मेडल भारत के नाम 28 साल बाद आया, इसलिए एक हिस्टोरिक मेडल है. और उसके साथ ही साथ मीराबाई चानू के लिए ये उनका पहला मेडल है किसी भी रूप में एशियन गेम्स के अंदर. शाहिद
3: जी बिल्कुल, इसी मेडल से उनकी झोली खाली थी. मेरा भाई चानू कर्णम मलेश्वरी के बाद दूसरी भारतीय वेटलिफ्टर बन गई जिन्होंने ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, सभी इन तमाम बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीता है. आज वेटलिफ्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है. जी हाँ, चीन की सॉन्ग गुम ने क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 215 किलोग्राम के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है.
2: राइट, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू कबड्डी, जहां पर हमने देखा कि भारतीय महिलाओं ने ईरान को 37-23 से हरा दिया कबड्डी वुमेन्स टीम ग्रुप ए में. और इसके बाद उन्होंने अपनी जगह, मतलब दोनों ही टीमों ने, क्योंकि ये 4-4 अंकों पे इस ग्रुप में आके एक साथ टाइड हो गए, तो दोनों ही टीमों ने अपनी जगह सेमीफाइनल बना ली है. वहीं मेंस कबड्डी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने बांग्लादेश के ऊपर पूरी तरीके से दबदबा जारी रखा और 48-25 से बांग्लादेश को भी हरा दिया. अब नेक्स्ट भारतीय मेंस कबड्डी टीम इज गोइंग टू बी अप अगेंस्ट चाइनीज तेपाय इन इट्स फाइनल ग्रुप स्टेज गेम.
3: जी साक्षी, एक और शूटिंग से खबर दे देते हैं, जहां थोड़ा सा उम्मीद थी वो उम्मीद मध्यम पड़ गई. महिलाओं के स्कीट इवेंट में राजा ढिल्लो के बाहर होने के साथ ही भारत की पदक की उम्मीदें समाप्त हो गई. राजा चौथे स्थान पर रही थी. इस वर्ग का गोल्ड चीन की जियांग इतिंग ने जीता. वहीं रजत पदक थाईलैंड और कांस्य पदक कजाकिस्तान की शूटर ने अपने नाम किया है.
2: राइट, एंड अ क्विक अपडेट टू बी कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ हॉकी ऑल्सो, वेयर वी कैरी ऑन टू सी इंडियाज डोमिनेशन ऑन थाईलैंड. इंडिया प्रेजेंटली लीडिंग विद 13 गोल्स, वेयर इज थाईलैंड हैज नॉट even been able to open their account in this game in the name of gold. Bharat ki taraf se Deepika, Lal Rem Siami, Sakshi Rana, Pisal Rutuja aur Navneet Kaur kuch aise naam rahe jinhone Bharat ko aaj goals karke is match mein diya hai. Aur jis tarah se ye match ja raha hai, ummeed bhi yehi karenge ki Bharat ko isko bahut comfortably in a dominating manner jeet lena chahiye.
3: Ji bilkul, vishwas ki baat ki to vishwas ki baat karte hain Asian Game 2026 mein bharatiya squash ki. Ji haan, अभय सिंह ने पुरुष एकल में शानदार आगाज किया. उन्होंने थाईलैंड के अरकादेत को लगातार 3 गेमों में 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली. अभय सिंह अब राउंड ऑफ 16 में कल श्रीलंका के रविंदु के खिलाफ खेलेंगे. खास बात यह भी बता दें कि एशियन गेम्स से एले 28 यानी 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए स्क्वैश के लिए कोटा स्थान भी जुड़ा हुआ है. उधर तन्वी खन्ना ने दक्षिण कोरिया की डामी किम को सीधे गेमों में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है.
2: राइट, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द वन ऑफ द बेस्ट न्यूज जो आज हमें दिन की शुरुआत में मिली थी. जय मीना सेन सॉफ्ट टेनिस, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन सॉफ्ट टेनिस एट द एशियन गेम्स. यस, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करवाया. वो हार गए थे ताकुया कुरोसाका से 2-4 इन द सेमीफाइनल, लेकिन फिर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है, क्योंकि भारत को आज से पहले कभी भी सॉफ्ट टेनिस में कोई भी मेडल नहीं मिला है. और वो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए भारत के लिए जिन्होंने सॉफ्ट टेनिस में एशियन गेम्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया.
3: जी बिल्कुल, इधर रोइंग की तरफ चलते हैं. लाइटवेट पुरुष डबल स्कल्स हीट में उज्जवल कुमार सिंह और रोहित चौथे स्थान पर है और फाइनल ए के लिए क्वालिफाई कर लिया है. लाइटवेट पुरुष सिंगल्स स्कल्स हीट में अजय त्यागी चौथे स्थान पर है. अब वो फाइनल में बी यानी फाइनल बी में हिस्सा लेंगे.
2: Right, and a quick update from the world of boxing also, ki Ankush Pangal has advanced to the round of 16 with a convincing 5-0 unanimous decision victory over Hamsa Vogel. Aapko bata de ki Ankush was able to completely dominate and command his opponent in this game. Ji.
3: चलते थे आपको बता दें टेबल टेनिस से खबर, हरमीत देसाई शशनी घोरपड़े ने मिक्स डबल्स के राउंड अप टू में मालदीव के मोहम्मद इस्माइल और फातिमित अली को 3-2 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है।
2: राइट, एंड अ वेरी क्विक अपडेट बिफोर वी लीव फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट के साथ आप लोगों के साथ बता दें कि मेडल टैली में भारत की पोजीशन अभी 9वें स्थान पर है। कुल मिला के भारत के अब मेडल्स हो चुके हैं 11, जिसमें से एक गोल्ड है जो हमें क्रिकेट की दुनिया से आया, 5 सिल्वर है, 4 शूटिंग में से और 1 वेट लिफ्टिंग में जो आज मीरज भाई चानू लेकर आई, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं जो इसमें से 4 शूटिंग में आए हैं, 1 मिक्स मार्शल आर्ट से आया है और तीसरा जो कहते हैं ना ब्रॉन्ज वो सॉफ्ट टेनिस की दुनिया से आया है, मेकिंग इट टोटल ऑफ राइट नाउ 5 ब्रॉन्ज मेडल्स फॉर इंडिया, सो दैट पुट्स आवर टोटल टैली एट 11 मेडल्स एंड वी आर ऑन द 9th पोजीशन। उम्मीद करते हैं कि भारत यहां से और धीमे धीमे करके ऊपर चढ़ेगा और मेडल्स आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी साक्षी मांडवाल और शाहिद को दीजिए इजाजत, आपसे जुड़ेंगे दोस्तों 1 घंटे बाद एक बार फिर से आकाशवाणी के माध्यम से ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स। थैंक यू।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
0: यू वर लिसनिंग टू द एशियन गेम्स 2026 अपडेट। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड बी राइट बैक विद यू विद मोर ऑन प्लेट कूल।
4: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
5: प्रिया, ये सब नमो भारत

0: ट्रेन का कमाल है, 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
7: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
8: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
9: आज की रात मजा,
8: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
7: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
10: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
7: म्यूजिक मस्ती।
11: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
12: Back to the Played Cool program on Akashwani Rainbow 102.6 megahertz. Well, when was the last time you did something just because it made you happy? Like doing something different, trying a new class, calling someone you've been meaning to call, wear that outfit you have been saving. Sometimes we just need to step outside our routine and dare ourselves a little. Waiting for your messages on 9868107070. What dares you? So let's go to the next track, which is I Dare You by Rascal Flatts and the Jonas Brothers.

0: Now, before we take a quick break, just informing that the Western Music program will continue in the evening from 7 to 8 p.m. and the presenter will be Akanksha Mishra, who will be playing Northeast Hues program from 7 to 8 p.m. and she will be meeting you again with Rainbow Classics from 10 to 11 p.m. So, I hope you look forward to the entire program of the Western Music section. Just waiting for your WhatsApp messages on 9868107070. A quick break.
1: Mangal Bhavan Mangal Hari Dravahu Sudarshan.
2: Shri Ram Katha Marmagya Dr. Kumar Vishwas Ji ke saath Shri Ram Charitmanas ki bhav Ras Sangeet Yatra Sampurna Shri Ram Charitmanas सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: Welcome back to Play Cool on Akashvani Rainbow 102.6 MHz with your host Isha Goyal Mathur. And I just received a message that RJ Isha Goyal Mathur, EGM, means every time good music. I hope I spelled your name correctly. Well, sir, thank you so much for listening to the show. It starts with I, so it's good music, and we at the Western Music section make sure that each presenter and for the listeners, for you all, present beautiful music, good music, and you all enjoy it. So as we arrive at the final song of today's Play It Cool, here's one simple thought to leave you with. Life is not going to give us a perfect day every day, and we can get better at noticing the things that make the imperfect ones a little easier. So you

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से नई तकनीक, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा के उचित उपयोग का आह्वान किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने के बजाय मजबूत, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर जोर देने का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का पुरजोर समर्थन किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत के जय मीणा ने पुरुष सॉफ्ट टेनिस में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। एशियाई खेलों में सॉफ्ट टेनिस में यह भारत का पहला पदक है। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। आज ही महिला और पुरुष दोनों टीमों ने स्कीट निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए।

0: खैरियत पूछो। बिल्कुल खैरियत पूछने आ गए हैं आपकी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। शालिनी आपके साथ और शो शुरू हो चुका है रेनबो हेल्पलाइन। मेघा जी स्वागत, खैर मकदम है आपका। अलमारी में से जब नेफ्थलीन की गोलियों की खुशबू आनी शुरू हो जाए कपड़े निकालते वक्त, और आपको आसपास जो है वो खांसी जुकाम बुखार की जो है वो खबरें मिलनी शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि मौसम बदल चुका है। और इसी बदलते हुए मौसम में आपको इन बीमारियों की जो है वो लहर ना पकड़ पाए, इसीलिए आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि किस तरह से आपको इन बीमारियों से अपने आप को बचाना है। और उस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक यादव, जो कि MBBS MD हैं जनरल मेडिसिन, और इसके अलावा वो फेलोशिप इन डायबिटीज मैनेजमेंट है इनके पास, और फेलोशिप इन इन्फेक्शियस डिजीज भी है, और साथ ही साथ ये कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और इनके पास जो है वो 8 सालों से ज्यादा का अनुभव है। तो बेहतर यही होगा कि अब मैं इनकी तरफ रुख कर लेती हूँ। आपका बहुत स्वागत है रेनबो के स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। तो शुरुआत कर लेते हैं, सबसे पहले मौसम बदल रहा है, और बदलते मौसम में जो है बहुत सारी बीमारियां, जैसे मैंने कहा कि खांसी जुकाम बुखारी तो होता ही है, बहुत सारी और भी बीमारियां होती हैं, तो क्या रीजन है कि बदलते मौसम के साथ

0: ऐसा क्या बदल जाता है हमें जो हम बीमार पड़ने लगते हैं?
1: देखिए, बदलते मौसम में हमारा जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो टेम्परली कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है. जैसे अभी विंटर शुरू होने वाला है, तो जैसे ही विंटर शुरू होगा तो जो कोल्ड टेम्परेचर है वो साथ में ड्राई एयर वो हमारे थ्रोट को नोज़ को इरिटेट करने लगती है, जिस वजह से हमें सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं. तो ये मैकेनिज़्म थोड़ा टेम्परेली इफ़ेक्ट होता है ड्यू टू दी वेदर चेंजेस.
0: ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आगे आपसे सवाल करूं, मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन में डॉक्टर अभिषेक से कि बदलते मौसम में किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे आप ताकि आपको बीमारियां ना छू पाएं. और अगर इस विषय से जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके हैं, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं. कोड है 011, नंबर है, फोन नंबर है 2342 1080. इसके अलावा दूसरा नंबर है 2342 1084. इन दोनों ही नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, 9868107070 इज द नंबर. सो प्लीज कॉल करिए और अपना प्रश्न हमसे पूछिए. और मैं अब डॉक्टर अभिषेक से जानना चाहूंगी कि क्या वो अर्ली साइंस होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जो हमारे सीजनल चेंज की वजह से जो है वो हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या बीमारियां घेर लेती हैं?
1: देखिए, ऐसा कोई एक साइन या सिम्टम नहीं होता है जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक हो गया है. इनफैक्ट बहुत सारे साइन सिम्टम्स होते हैं. जैसे जैसे वेदर चेंज होता है तो हमें खांसी, जुखाम, बलगम, रनिंग नोज, ब्लॉक नोज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि हमारा इम्यूनिटी वीक हो गया है.
0: ठीक है
1: जी.
0: तो इसके अलावा आप ये बताइए कि कितने तरह की बीमारियां, क्योंकि अलग अलग तरह की बीमारियां बहुत सारी होती है. खांसी, जुकाम, बुखार तो बहुत आम है, जो होता ही है. इसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, वो कौन कौन सी हैं?
1: देखिए, वेदर चेंज होने के बाद काफी सारी बीमारियां हो सकती है. सबसे पहले तो हम रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करेंगे, है ना. एलर्जी हो सकता है हमें, इन्फ्लुएंजा हो सकता है हमें, जो सीजनल फ्लूज होते हैं वो हो सकते हैं हमें. जिन पेशेंट को पहले से ही रेस्पिरेटरी डिजीज है, जैसे कि एस्मा है, COPD है, एलर्जिक राइनाइटिस है, वो भी मौसम चेंज की वजह से एग्रवेट हो सकता है. इसके अलावा जैसे मॉस्किटो बाइट की जो डिजीज होती है, डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया, जो हमें मॉनसून सीजन में देखने को मिलती है, वो भी हो सकता है. कुछ हमें एब्डोमिनल डिजीज भी हो सकती है, जैसे हमें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, जिसमें पेशेंट को लूज स्टूल्स होने लगते हैं, डिहाइड्रेशन होने लगता है, फीवर आता है, बॉडी एक्स होते हैं
0: जी.
1: इसके अलावा हमें स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे हमारा डर्मेटाइटिस एग्रवेट हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हमें हो सकता है.
0: ठीक है,
1: ये कुछ चीजें हैं जो मौसम चेंज होने की वजह से हो सकती है हमें डिजीज
0: जी. और ये बहुत कॉमन जो है वो प्रॉब्लम होती है जानने और समझने में लोगों को कि जनरली क्या होता है, मौसम बदला है तो जुकाम खांसी हो रही है, तो सबको लगता है कि एक ही तरह का है, क्योंकि सब में लगभग जो सिम्टम्स हैं वो एक ही तरह के होते हैं कुल मिलाकर. तो ऐसे में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा जो है वो कॉमन कोल्ड है, या ये सीजनल एलर्जी है, या फिर ये फ्लू है? और इसके अलावा जैसे बहुत तरह के बुखार होते हैं तो उनमें भी लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट इसमें कर पाएंगे?
1: देखिए, एलर्जी, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स जो हैं वो एक दूसरे के मिमिक करते हैं, लेकिन कुछ क्लूज हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये एलर्जी है या कॉमन कोल्ड है या फिर इन्फ्लुएंजा है. जैसे एलर्जी में आपको फीवर मोस्ट कॉमनली नहीं आता है, आपको एक्सेसिव स्नीजिंग हो सकता है, आपको खांसी हो सकता है हल्का, आपको जुखाम हो सकता है, आपका रनिंग नोज, ब्लॉक नोज हो सकता है आपको, लेकिन बॉडी एक नहीं होगा एलर्जी में
0: जी.
1: कॉमन कोल्ड में आपको फीवर, हल्का फुल्का फीवर आ सकता है, माइल्ड ग्रेड का फीवर हो सकता है, साथ में एक्सेसिव आपको स्नीजिंग हो सकती है, आपको माइल्ड बॉडी पेन हो सकता है, आपको खांसी, जुखाम ये भी हो सकता है. लेकिन इन्फ्लुएंजा में आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, आपको यूजुअली बॉडी एक्स होंगे, आपको हेडेक होगा, साथ में खांसी, जुखाम, बलगम ये हो सकता है, आपको थ्रोट में पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है
0: जी.
1: तो ये कुछ क्ल्यूज है इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए
0: जी. बिल्कुल. और ऐसा होता है ना कि जैसे मौसम बदलता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो

0: घर के बुजुर्गों पर पड़ता है या बच्चों पर पड़ता है। तो ऐसे में अपने घर के इन फैमिली मेंबर्स को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं?
1: देखिए, बच्चे जो होते हैं उनका इम्यूनिटी थोड़ा वीक होता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, और जो बुजुर्ग होते हैं उनका इम्यूनिटी भी वीक हो जाता है क्योंकि ड्यू टू एज, ड्यू टू सम कोमॉर्बिडिटीज, उनके साथ किसी को शुगर हो सकता है, किसी को बीपी हो सकता है, किसी को थायराइड हो सकता है, किसी को और डिजीज हो सकती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करती है। तो बच्चों को और बुजुर्गों को बचाने के लिए हमें कुछ ध्यान रखने चाहिए चीज़ें, जैसे कि जैसे मौसम चेंज होता है तो हमें लेयरिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए, है ना। ज़्यादा वार्म कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इंस्टेड हमें लेयर्स वाले कपड़े पहनने चाहिए ताकि जैसे टेम्परेचर राइज हो तो हम उन कपड़ों को निकाल सकें ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे।
0: और
1: एक बैलेंस डाइट रखना चाहिए, ठीक है। और जो भी दवाइयाँ बुजुर्ग की चल रही हैं पहले से, उन दवाइयों को चलने दीजिए, उनमें से कुछ भी बंद नहीं करना चाहिए।
0: जी ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप जो हैं वो आपका फेलोशिप है आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट में, तो इस समय पर क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए डायबिटिक लोगों को, और किस तरह की जो वो इसके अलावा जो क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं वो उसमें किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं इस समय, इसके अलावा डायबिटीज के अलावा?
1: देखिए, डायबिटीज़ किसी पेशेंट को अगर है और मौसम चेंज होने की वजह से उन्हें कोई डिजीज़ हो रही है, तो सबसे पहली बात है कि उनको अपनी दवाइयाँ कुछ भी बंद नहीं करनी है। जैसे उनके डायबिटोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया हुआ है उसी तरीके से दवाइयाँ चलने दीजिए। बस ये है कि अपना ब्लड शुगर मॉनिटरिंग रेगुलरली करते रहिए ताकि हमें एक आइडिया रहे कि आपके शुगर लेवल्स कैसे चल रहे हैं। जब भी कोई डिजीज, कोई इलनेस होती है तो डेफिनेटली पेशेंट का ओरल इनटेक कम हो जाता है, उसका फूड इनटेक कम हो जाता है, उसका वाटर इनटेक कम हो जाता है, जो हमारे शुगर लेवल्स को फ्लक्चुएट करता है। और पेशेंट का शुगर लेवल्स जो है वो कम भी हो सकता है या फिर ड्यू टू इन्फेक्शन वो और ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो उसके लिए हमें ब्लड शुगर अपना चेक करना है रेगुलरली ताकि हम दवाइयां जो है उसके अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन उनका डोज कर सके।
0: जी, इन्फेक्शंस की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और अपने लिसनर्स को भी बता देते हैं कि यदि आपके भी बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, कैसे बीमारियों से बचें, इस विषय पर कोई भी प्रश्न है आपका तो आप हमें भेज सकते हैं। 011 कोड लगाइएगा, 2342-1080 ये नंबर है। इसके अलावा है 2342-1084, इन दोनों नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070। जल्दी से आप हमें अपने सवाल भेजिए और फिलहाल ये गाना सुनिए, उसके बाद लौट कर आते हैं जल्दी ही। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप, शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन।

0: दांत दुख हो रहे हैं जेरा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमें बता सकते हैं यहाँ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वेदर चेंज हेल्थ चेक, यानी कि कैसे आप इसमें इस बदलते मौसम में अपने आप को जो है वो हेल्दी रख सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। उसके लिए हमें गाइड करने के लिए यहाँ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अभिषेक यादव, MBBS MD जनरल मेडिसिन, फेलोशिप इन डायबिटीज मैनेजमेंट और फेलोशिप इन इन्फेक्शियस डिजीज है। इसके साथ साथ ये कंसल्टेंट फिजिशियन भी हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं 8 सालों के अनुभव के साथ साथ। डॉक्टर अभिषेक, हमने बात करी अभी तक की डायबिटिक पेशेंट की भी बात करी हमने, लेकिन अभी किस तरह की बीमारियां हैं वो तो हमने जान ली है, अब उन बीमारियों से बचने के लिए तरह तरह के जो चीज़ें हमें करनी होती हैं उसमें एक डाइट भी बहुत जरूरी चीज होती है। तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह के सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम खा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए इस वक्त।
1: देखिए, ऐसा कोई इम्यूनिटी बूस्टर फूड नहीं होता है जिससे हम इम्यूनिटी एकदम से बूस्टअप कर लें। हाँ, लेकिन जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं, वो सब हम खा सकते हैं। जैसे अभी सर्दियां शुरू होंगी तो आंवला, गुआवा, टमाटोज, स्पिनिच, ये सारी चीज़ें कंटेन करती है एंटीऑक्सीडेंट्स, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ए प्रिकर्सर्स, और ये सारे ही आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं। तो आप इन सबको कंज्यूम कर सकते हैं टू हैव अ गुड बैलेंस्ड डाइट एंड हैव अ गुड इम्यूनिटी।
0: ठीक है, और इसके अलावा जब बात आती है विटामिंस की, जो कि हमें सब्जियों से और फलों से भी मिलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स की अगर बात करें तो वो कहाँ तक सेफ हैं? विटामिन डी, सी या अदर न्यूट्रिएंट्स अगर हम लेना चाहें तो क्या वो फूड से काफ़ी मिल जाते हैं, या आज के बदलते दौर में जब हमारे हवा में पोल्यूशन है, कहीं पानी में पोल्यूशन, तो क्या उनकी ज़रूरत है अलग से या खाना पर्याप्त है?
1: देखिए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो भी वो खा रहे हैं उनसे जो भी हमें विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। लेकिन इन केस अगर कोई पेशेंट, कोई एल्डर पेशेंट है, कोई बच्चे हैं और कोई ऐसे पेशेंट है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हम सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं। अब जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट, तो उसको लेने के लिए हम विटामिन सी की दवाई ले सकते हैं। प्लस विटामिन डी, जो आजकल सब लोगों का डेफिशिएंट होता ही है ऑलमोस्ट, तो विटामिन डी के लिए सबसे बेहतर होता है अगर हम

0: थोड़ी देर के लिए सूरज में बैठें, क्योंकि सूरज की रोशनी अल्ट्रा वायलेट बी रेज जो होती हैं वो हमारे स्किन में वाइटामिन डी प्रोडक्शन को हेल्प करती है।
1: जी
0: प्लस हम वाइटामिन डी के अलग से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं ताकि हमारा वाइटामिन डी ठीक रहे। और वाइटामिन डी, वाइटामिन सी, वाइटामिन ए, ये सारी चीज़ें मिलके आपको एक अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है,
1: ठीक
0: आपको
1: है।
0: डिजीज से, इलनेस से लड़ने के लिए शक्ति भी देती है।
1: और इन सप्लीमेंट्स की क्या डोज होनी चाहिए, और एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप के लिए भी अलग अलग डोज होगी, तो
0: जी
1: उसका कैसे ध्यान रखें?
0: देखिए, इसके लिए विटामिन सी तो आपको सिट्रस फ्रूट से मिल ही जाता है एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में, तो आप ज़्यादा रिलाई करिए कि सिट्रस फ्रूट्स आप जितने हो सकें ले, ताकि विटामिन सी आपको एक अच्छी क्वांटिटी में मिल जाए। बाकी विटामिन डी के लिए डिपेंड करता है कि आपका विटामिन डी कितना डेफिशिएंट है। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है तो आप विटामिन डी के इंजेक्शन के शॉट के लिए भी जा सकते हैं,
1: जी
0: या फिर ओरल आजकल मार्केट में कैप्सूल भी अवेलेबल है विटामिन डी के, नैनो शॉट्स भी अवेलेबल है विटामिन डी
1: जी
0: के, जो आप हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं जब तक आपका विटामिन डी एक सफिशियंट अमाउंट में नहीं पहुंच जाता है बॉडी का।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे सवाल अभी हमारे पास हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हाजिर होंगे। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, यानी कि 102.6 पर आप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप हमें सुन रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और इसके अलावा आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे वेव्स OTT प्लेटफॉर्म से, तो आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि वहां पर एंटरटेनमेंट बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और अभी फिलहाल मैं अपने लिसनर से कहना चाहूंगी कि यदि आपके कोई भी सवाल है आज के विषय से जुड़े हुए, जो कि है वेदर चेंज हेल्थ चेक, यानी कि स्टेइंग हेल्दी थ्रू चेंजिंग सीजन्स, बदलते मौसम में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, इस बारे में आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके जवाब देंगे डॉक्टर अभिषेक यादव, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो नंबर है हमारा 011, कोड लगाइएगा, उसके बाद 2342-1080, और दूसरा नंबर है 2342-1084। मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9868107070। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में, अभी थोड़ी देर में हाजिर होते हैं।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
5: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
4: इम्पॉसिबल
5: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
7: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
8: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
7: फॉर्म 7, गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
8: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
7: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
8: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

0: वेलकम बैक, आप हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर और मैं हूं आपके साथ शालिनी और शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम की। बदलते मौसम के साथ साथ हवा में जो है वो बहुत सारी जो है वो खुशनुमा जो है वो खुशबुएं भी होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी जो है बीमारियां भी होती हैं और उन बीमारियों से आपको निजात दिलाने के लिए, साथ ही साथ आप कैसे बच सकते हैं उनसे, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आज के हमारे मेहमान, जिनका नाम है डॉक्टर अभिषेक यादव, MBBS MD। ये इनकी फेलोशिप है इन डायबिटीज मैनेजमेंट, साथ ही फेलोशिप इन इन्फेक्शियस डिजीज। ये कंसल्टेंट फिजिशियन है और साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट हैं, 8 साल के अनुभव के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच मैम
0: जी। तो हमने बात करी अब तक कि किस तरह के विटामिंस, किस तरह की जो है उसकी डोज लेनी चाहिए, हमने बात करी। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह की हाइजीन प्रैक्टिसेस जो है वो जरूरी होती हैं ताकि बीमारियां पास भटके ही नहीं।
1: देखिए, सबसे पहली जो ज़रूरी काम है वो आपको बार बार अपने हाथ धोना अच्छे से साबुन से, साथ में आप अपनी आईज़ को, अपने माउथ को, अपने नोज़ को बार बार टच मत करिए। कोई अगर बच्चा है और आपको अगर कोई भी सर्दी खांसी जुखाम

0: हैं तो आप बच्चे से थोड़ा सा कांटेक्ट बनाने से दूर रहिएगा। कोई आपके घर में बुज़ुर्ग है तो उनसे भी थोड़ा सा दूर रहिए ताकि वो इन्फेक्शन उनको ना फैल जाए, क्योंकि बच्चे और बुज़ुर्ग जो होते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थोड़े से होते हैं, तो उनको बीमारी फैलने का ज़्यादा डर होता है। साथ में एक आप बैलेंस डाइट अच्छे से लीजिए और पानी पीते रहिए, ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहूँगी। एक लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो
2: हेलो।
1: जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो,
2: हाँ सुन रहे हैं मैडम, सुन रहे हैं।
1: आपकी हमें आवाज़ बहुत कम आ रही है। आ रही है आपको आवाज़?
0: जी हाँ,
1: जी, अपना सवाल बताएं और नाम बताएं साथ में।
2: मेरा नाम शंकर कुमार मल्लिक है, हम रजनी मुरलीगंज मधेपुरा बिहार से बोल रहे हैं।
1: जी बताएं, अपना सवाल बताएं जल्दी से। आप रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, प्लीज़ इसका ध्यान रखें। जी दोहराएं सवाल को दोबारा से, फोन के थोड़ा सा करीब आकर बात करें। हम माफी चाहेंगे आपसे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करिए और रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, रेडियो सेट को बंद कर दीजिए। चलिए दोबारा से हम आपसे जी हेलो, माफ कीजिएगा, हम तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, आप दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें। यह है आकाशवाणी रेनबो 102.6 और शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज बदलते मौसम में कैसे रखें अपना ख्याल। और इस विषय पर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी सवाल है आपका, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 0111 2342 1080 है नंबर, इसके अलावा 2342 1084 है नंबर, और मैसेज भी कर सकते हैं आप 9868107070 पर। तो जल्दी हमसे जुड़िए और यहां पर सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत तरह के ड्रिंक्स और बहुत तरह के कोल्ड ड्रिंक्स या फूड्स अवेलेबल हैं इस समय, तो किस तरह के फूड जो है वो अवॉइड करने चाहिए बदलते मौसम में, खास तौर पर जो कि आप जैसे ही टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। और घर पर भी किन बातों का ध्यान रखें, जैसे एसी या कूलर में कितना रहना चाहिए, समय कितना नहीं रहना चाहिए, वो थोड़ा सा बताएं हमें।
0: देखिए, जैसे मौसम बदलता है, मौसम चेंज होता है, तो हमारी बॉडी भी ससेप्टेबल हो जाती है टुवर्ड्स एक्सट्रीम कंडीशंस। जैसे ही सर्दी शुरू होगी तो हमारा बॉडी ससेप्टेबल हो जाएगा टू गेट कोल्ड। तो
1: ठीक
0: हमें अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली ही हमें अपने रूम के टेम्परेचर भी सेट करने हैं ऑफ एसीज एंड कूलर्स। अगर आपको एसी में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप एसी को बंद करके सिर्फ फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोल्ड कुछ पीने का मन करे तो ठीक है, अदरवाइज अवॉइड करिए, क्योंकि हमारा थ्रोट जो है ससेप्टेबल होता है कोल्ड वेदर से, कोल्ड ड्रिंक से, और हमारे जो इरिटेशन होती है आफ्टर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा गर्म गुनगुना पानी पियेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। खाने में जो भी घर का बना हुआ खाना है, दाल रोटी सब्जी, वो आप अच्छे से खा सकते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी सीजनल अवेलेबल हैं वो सब आप खा सकते हैं।
1: जी
0: बस बाहर का खाना थोड़ा सा फ्राइड
1: अवॉइड करें।
0: चीज़ें, ये चीज़ें अवॉइड करनी
1: जी,
0: चाहिए,
1: बाहर का खाना खाएं तो थोड़ा सा हेल्दी चूज करें।
0: हेल्दी चूज
1: जी,
0: करें।
1: बिल्कुल, यहाँ पर हम रुकेंगे थोड़ा सा और अपने एक लिसनर को लेंगे जिनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं हमसे। हेलो
2: हेलो मैडम।
1: जी, बताएं आपका नाम बताएं।
2: मेरा नाम शंकर कुमार मल्लिक मल्लिक है।
1: शंकर कुमार जी,
2: और
1: जी सवाल बताइए।
2: जी शंकर मल्लिक, हम रजनी मुरलीगंज मधेपुरा बिहार।
1: जी, अपना सवाल बताइए शंकर जी, अपना सवाल बताइए प्लीज।
2: मौसम के
1: आप शंकर जी, थोड़ा सा मुझे लगता है आपके यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, आप थोड़ा बाहर आकर बात करेंगे तो बेहतर आवाज आएगी।
2: जी, बदलते मौसम के कारण अपने सेहत का कैसे ख्याल रखें?
1: जी हम वही बात कर रहे हैं, आप अपना सवाल बताएं, क्या किस बारे में जानकारी चाहते हैं आप?
2: हम सर जानकारी चाहते हैं बदलते मौसम के कारण अपने सेहत का ख्याल कैसे रखें, यही जानकारी चाहते हैं।
1: जी,
0: देखिए, बदलते मौसम के साथ हमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं, उनसे बचाव के लिए कुछ उपाय अपनाने चाहिए। जैसे आप अपना बैलेंस डाइट अच्छे से लें, पानी पीते रहें, जो भी सीजनल फूड, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी अवेलेबल हैं उनको खाएं, अच्छे से व्यायाम करें, अपना अगर ठंड जैसे शुरू हो रही है तो अपने कपड़े अच्छे से पहन के रखें, लेयरिंग वाले

0: कपड़े पहन के रखें ताकि अगर दिन में टेम्परेचर ज़्यादा भी होता है।
1: जी, मैं आपको यहाँ पर माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी। हम यहाँ पर फिलहाल जो है वो एशियन गेम्स से जुड़ी हुई जो है हमारे पास खबर है, हम आपको ले चल रहे हैं। अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त हैं शाहिद आजमी जी। एंड द बिग न्यूज दैट वी ब्रिंगिंग फॉर ऑल आर लिसनर्स राइट नाउ इज दैट भारत ने चाइना को मेंस टीम सेमीफाइनल्स के दूसरे मैच में, जी हां, हरा दिया है। सात्विक साई रेड्डी एंड चिराग शेट्टी मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट अगेंस्ट चाइनाज लियांग वेकिंग एंड वैंग चैंग, डिफीटिंग देम इन स्ट्रेट सेट्स 2-0। वेल, आपको यह भी बता दें कि इसी मेंस टीम सेमीफाइनल्स का जो पहला मुकाबला हुआ था उसमें लक्ष्य सेन का सामना हुआ था शी यूक्वी से, जहां पर लक्ष्य सेन उनसे सीधे से सेट्स में यानी 21-16, 21-18 हार गए थे। लेकिन उसके बाद हमारे भारत के सात्विक साई रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो कमबैक किया है, इट हैज हेल्प्ड इंडिया टाई द स्कोर्स फॉर नाउ, और शुड आई से लेवल द स्कोर्स विद चाइना फॉर नाउ 1-1।
4: बिल्कुल साक्षी, मुकाबला रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुंच गया। बैडमिंटन है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन शानदार वापसी की है। जैसा आपने बताया, स्क्वैश की बात कर लेते हैं। स्क्वैश में भारत की शानदार शुरुआत देखने को मिली है। स्क्वैश के सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। वीर चौटरानी ने पुरुष सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में श्रीलंका के वकील को 3-0 से हराया। उन्होंने मुकाबला 11-8, 11-3, 11-3 से अपने नाम किया। वहीं तन्वी खन्ना ने भी महिला सिंगल्स राउंड ऑफ 32 में दक्षिण कोरिया की किम दामी को सीधे गेमों में 3-0 से मात दी। स्कोर रहा 11-5, 11-7, 11-5। वहीं अभय सिंह ने पहले ही शुरुआती मुकाबला जीतकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है।
3: राइट, एंड द अदर बिग न्यूज दैट वी कम टू यू विद इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ हॉकी, जहां भारत ने थाईलैंड को एक बहुत ही डोमिनेटिंग और कमांडिंग तरीके से 20-1 से हरा दिया इन द वुमेन्स पूल बी क्लैश एट द गिफो प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम। भारत की तरफ से दीपिका लीड स्कोरर रही, और उसके बाद ऋतुराज पिसल और नवनीत कौर ने भी 3-3 गोल भारत के नाम दागे। अगर हम बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड की तरफ से जो इकलौता गोल उनके खाते में आ जाया, वो आया सुपानसा समानसो की तरफ से, हु वॉज एबल to convert a penalty corner. Well, for all our listeners, आपको ये भी बता दें कि अब इसके बाद भारत का मुकाबला होगा रविवार को सिंगापुर से, where they will be playing their final pool B match basically against Singapore on Sunday शायद।
4: साक्षी, एक और उम्मीद की बात करता हूँ। उम्मीद बनी, टूट गई। एशियन गेम 2026 के पुरुष स्कीट फाइनल में रणजीत सिंह नरूका ने 25 का स्कोर किया और चौथे स्थान पर है। मामूली अंतर से वो पदक की जो दौड़ थी वहां से, यानी पोडियम फिनिश करने से चूक गए। इस वर्ग का गोल्ड मेडल कतर ने जीता, जबकि सिल्वर चीन और ब्रॉन्ज मेडल चीनी ताइपे के नाम रहा। वहीं अनंजीत सिंह, जिन्होंने पिछले एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था, इस बार पदक से जरूर चूक गए। हालांकि उनके पास वापसी का शानदार मौका अभी बचा हुआ। अनंजीत सिंह नरूका कल मिश्रित टीम स्पर्धा में एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे।
3: राइट, एंड अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड इन द डे ऑन दिस टुडे, कहना चाहिए एशियन गेम्स 2026 में, तो मेरा भाई चानू वेट लिफ्टिंग के अंदर हमारे लिए लेकर आई आज सिल्वर मेडल बाय लिफ्टिंग अ टोटल ऑफ 198 kgs, विच वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर बेस्ट लिफ्ट इन स्नैच एंड देन क्लीन एंड जर्क कैटेगरी। उसके साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर जो हमने आपको दी है, वो है सॉफ्ट टेनिस की दुनिया से, जहां जय मीना क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन सॉफ्ट टेनिस एट द एशियन गेम्स। ही वन द ब्रॉन्ज मेडल बाय लूजिंग ऑफ कोर्स टू टाकुया खारुसा कटुपोर इन द सेमीफाइनल, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी जीत थी शाहिद, टू गेट द फर्स्ट मेडल एवर फॉर इंडिया इन एशियन गेम्स इन सॉफ्ट टेनिस।
4: बिल्कुल बड़ी खबर थी। रोइंग में भी भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है, जहां पर पुरुषों के क्वार्टरबल स्कल्स में अरविंद कुलपिंदर, नवदीप और जकार की चौकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने हीट्स में 6:18.62 का समय निकालते हुए फाइनल में जगह बनाई।
3: राइट, अब आपको खबर देते हैं कबड्डी की दुनिया से, जहां पर इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने आज बांग्लादेश को 48-25 से हरा कर अपने लिए और अपने स्थान को और ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। बिकॉज अब भारत का अगला मुकाबला होने वाला है चाइनीज तैपेई के खिलाफ इन इट्स फाइनल ग्रुप स्टेज गेम, जो कि होगा कल। लेकिन सबसे खूबसूरत और अच्छी आती रही है कि भारतीय मेन कबड्डी टीम का ये तीसरी स्ट्रेट विक्ट्री थी इस कैंपेन में और कल उनका होगा आखिरी मुकाबला चाइनीज तैपे के खिलाफ। वहीं भारत की महिला कबड्डी टीम ने भी आज ईरान को 37

0: ईस्ट से वुमेन्स टीम ग्रुप ए के मैच में हरा दिया, क्योंकि ये दोनों ही टीम्स के अंक चार चार पॉइंट्स पर अब एक साथ आकर लॉक हो गए हैं इस ग्रुप में, तो दे बोथ हैव एंश्योर्ड देयर सेमीफाइनल स्पॉट्स नाउ।
1: जी बिल्कुल, खबरें जारी रहेंगी इस जो अपडेट है इसमें अब इतना ही, लेकिन हाँ ये बता दें कि बैडमिंटन का रोमांच बना हुआ है अगले घंटे, हालांकि 2:30 पर हम नहीं मिलेंगे, 3:30 पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: वेलकम बैक. आप हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर. शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन. मैं हूं आपके साथ शालिनी और हमारे साथ हैं आज के मेहमान डॉक्टर अभिषेक यादव, MBBS, MD, जनरल मेडिसिन. फेलोशिप इन डायबिटीज मैनेजमेंट है इनकी और फेलोशिप इन इन्फेक्शस डिजीज भी है. कंसल्टेंट फिजिशियन है ये और डायबिटोलॉजिस्ट है 8 सालों के अनुभव के साथ. आज हम बात कर रहे हैं कि बदलते मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, और इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर जो अपना सवाल लेकर हम तक पहुंचे हैं. जी हेलो. हेलो जी जी हेलो, आपको आवाज आ रही है?
1: हाँ जी, आवाज आ रही है
0: जी. बताएं अपना सवाल बताएं और अपना नाम बताएं.
1: मैं मोहम्मद इम्तियाज बोल रहा हूँ.
0: मोहम्मद इम्तियाज दिल्ली से.
1: दिल्ली
0: जी. अपना प्रश्न पूछिए फटाफट से.
1: मैम ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ना ये लगभग 15 दिनों से ज्वाइंट पेन हो रहा है, जैसे हाथों पे, उंगलियों में, पैरों पे. डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने दर्द की गोली दे दिया, गैस की गोली दे दिया, बोले की ठीक है अब जाओ. अब उससे कुछ आराम नहीं मिलता
0: जी.
1: क्या कारण हो सकता है बता सकते हैं?
0: लगभग बिल्कुल
1: 20-22 दिन से हो रहा है
0: जी. बिल्कुल
2: जी.
1: और वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है
0: जी. बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर साहब, ध्यान से सुनिए
2: जी. मोहम्मद इम्तियाज जी, अच्छा आपको बुखार भी आ रहा है?
1: नहीं, बुखार तो नहीं आ रहा सर, कुछ भी नहीं.
2: बुखार नहीं आ रहा है. देखिए, अगर आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है और बुखार नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको ऐसा दर्द हो सकता है. तो एक बार आप अपना टेस्ट करा के देख सकते हैं विटामिन डी के लिए. अगर विटामिन डी की वैल्यू कम आती है तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए. और अगर आपका विटामिन डी अगर ठीक आता है तो आपको फिर कुछ और टेस्ट भी करा के देखना चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसा बन रहा है. हालांकि इन बीमारियों में बुखार भी ज़रूरी है, आता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट में देखा गया है कि बुखार जो है उन्हें फील नहीं होता है, लेकिन डेंगी मलेरिया जैसी बीमारी पाई जाती है. तो पहले तो आप विटामिन डी एक बार टेस्ट करा के देखिए कितना वैल्यू आता है, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं.
1: सर ये सब जगह हर हॉस्पिटल में चेक हो जाएगा?
2: हाँ हाँ, ये कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में
1: सर करते नहीं है. जैसे मैं दिल्ली अचार बिच्छू में जाता हूँ.
0: जी जी, माफ कीजिएगा मोहम्मद इम्तियाज जी, मैं आपको यहाँ पर टोकना चाहूंगी. हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, तो आपके सवाल का जवाब आपको हमने दिया है. और भी लिसनर्स जो हैं वो हमें कॉल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं जी. हमसे फिर से आप जुड़िएगा, और बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, धन्यवाद. तो ये थे मोहम्मद इम्तियाज, इनका सवाल का जवाब हमने दिया. इसी तरह से यदि आपके भी कोई सवाल हमारे तक आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो पहुंचा सकते हैं. 011 कोड लगाइए, 2342-1080 है नंबर. इसके अलावा 2342-1084 भी नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं. और मैसेज करने के लिए नंबर 9868107070. तो आप अपने सवाल पहुंचा दीजिए. हमारे साथ आज बात कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक यादव. डॉक्टर अभिषेक, ये बताइए कि इस समय जब मौसम बदलता है तो पानी पीने की इच्छा थोड़ी सी कम होती है, तो क्या और कितना पानी पीना चाहिए, और इसके साथ साथ जो फूड हैबिट्स हैं वो किस तरह से, मान लीजिए जो हेल्दी डाइट ले रहे हैं, इसके अलावा अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एकदम से जो डाइटरी चेंजेस वो कौन से हैं जो तुरंत इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें?
2: देखिए, पानी चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पानी एक आपने एक क्वांटिटी में पीना चाहिए. अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 लीटर 24 आवर्स में पानी आपको पीना चाहिए. लेकिन हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जैसे हार्ट फेलियर या किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, जिसमें हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्लूइड इनटेक का, वाटर इनटेक का. ऐसी कोई फूड नहीं है जिससे हम इम्यूनिटी अपनी बूस्ट कर सकते हैं एकदम से. हाँ, जो भी हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, अगर हम उन्हें कंसिस्टेंटली लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो फिर हमारा इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रहेगा.
0: और इसके अलावा स्लीप पैटर्न की अगर बात करें तो वो कैसा होना चाहिए, कितने घंटे की नींद जरूरी है?
2: देखिए, एक एडल्ट के लिए एक 7-8 आवर्स की एक अच्छी स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है. 7-8 आवर्स हर एक एडल्ट को अच्छे से स्लीप अपना लेना चाहिए.
0: जी बिल्कुल, हम फिर से सवाल आपसे करेंगे, जुड़ेंगे एक बार फिर से, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे एक बार फिर से. आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन आकाशवाणी 102.6 पर.
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। शालिनी कहते हैं मुझे और यहाँ शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। आज रेनबो हेल्पलाइन में हमारा विषय है कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का कैसे रखें ख्याल, और इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अभिषेक यादव, MBBS MD जनरल मेडिसिन। इनकी फेलोशिप है इन डायबिटीज मैनेजमेंट, फेलोशिप इन इन्फेक्शियस डिजीज, और इसके अलावा कंसल्टेंट फिजिशियन है ये और डायबिटोलॉजिस्ट है, और 8 साल का इस फील्ड में इन्हें अनुभव है। तो रुख करते हैं डॉक्टर अभिषेक की तरफ और जानते हैं कि किस तरह की क्लोथिंग, जैसे कि हमने अभी बात भी करी थी कि बहुत ज्यादा जो है वो एकदम से कपड़े कम ना पहने या बहुत ज्यादा भी ना पहन लें, तो बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए क्या उनको कुछ गर्म कपड़े पहन सकते हैं वो इस वक्त?
1: देखिए, अभी गर्म कपड़े पहनना थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी, उनको अनइजीनेस फील हो सकता है। तो डिस्पाइट ऑफ वेयरिंग वार्म क्लोथ्स, हम लेयर्ड क्लोथ्स पहनना ज़्यादा सही रहेगा। आप क्लोथ्स की 3-4 लेयरिंग वाले क्लोथ्स पहनिए। जब मौसम ठंडा होता है, जैसे सुबह और शाम में थोड़ा सा ठंडा होता है, तो आप क्लोथिंग अपने 3-4 कपड़े पहनिए। जैसे जैसे दिन में टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है, तो उस टाइम आप अपने लेयर्स को कम कर सकते हैं। तो इससे आपका टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहेगा और आपको अनइजीनेस भी नहीं होगा।
0: जी बिल्कुल। और कई तरह की जो इस समय घरेलू नुस्खे भी लोग ट्राई करते हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? जैसे काढ़ा हुआ या अदरक का काढ़ा बनाया हुआ या फिर शहद का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या वाकई काम करता है या फिर सिर्फ मिथ है?
1: देखिए, आयुर्वेदिक चीज़ें खाना वैसे तो खा सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने से हमें कुछ नुकसान भी मिल सकते हैं। जैसे शहद अच्छा होता है, अगर हम किसी को कफ है, खांसी है, तो उसमें शहद अच्छा होता है देना, थोड़ा खांसी सबसाइड हो जाता है। लेकिन अगर किसी 12 महीने के कम से बच्चे को शहद दिया जाएगा, तो वो उसे दिक्कत कर सकता है। इसी तरीके से तुलसी हो गया, जिंजर हो गया, ये भी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन वो हमारे सिम्टम्स को थोड़े से कम कर सकते हैं, उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये आयुर्वेदिक वाली चीज़ें लेनी है, आप ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। और ये मत सोचिएगा कि इनको लेने से आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन आपके सिम्टम ज़रूर थोड़े से सबसाइड हो सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। और ऐसे में जो है वो गर्भवती महिलाएं यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, उनको किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए वो भी हमें बताएं आप।
1: देखिए, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनको अपना डाइट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि उन्हें अपना भी डाइट चाहिए, प्लस जो बच्चा है उनके अंदर, उसके लिए भी आपको डाइट चाहिए अच्छे से। तो डाइट पे, हाइड्रेशन पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा अच्छा फोकस करना है, और जितना हो सकता है आयुर्वेदिक चीज़ों से थोड़ा सा बचें। प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं प्रेगनेंसी में जिनको कुछ बुखार होता है या खांसी बलगम जुकाम होता है, तो मुझसे पूछते हैं कि ये आयुर्वेदिक दवाई ले लें, ये आयुर्वेदिक दवाई ले लें, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर होगा, आपके लिए भी और होने वाले बच्चे के लिए।
0: सेल्फ हेल्प इस समय ना करने की कोशिश करें, नुकसान कर सकता है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो है, जब एक्सरसाइज की बात आती है, हालांकि एक्सरसाइज हमेशा अच्छी होती है, लेकिन बदलते मौसम में कई बार क्या होता है, लोग रिगरस एक्सरसाइज भी करते हैं, तो उसमें वो किस तरह से, इसको कौन सी एक्सरसाइज आप जो है वो सजेस्ट करेंगे इस समय?
1: देखिए, एक्सरसाइज, अगर कोई भी इंसान कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो अपने एक्सरसाइज को उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। हाँ, कोई इंसान जो अभी एकदम से शुरुआत करना चाह रहा है एक्सरसाइज का, तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कोल्ड टेम्परेचर से ज़्यादा एक्सपोज ना हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि उन्हें फिर कॉमन कोल्ड और एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है।
0: जी बिल्कुल। और भी सवाल है हमारे पास, लेकिन उससे पहले यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हाजिर होंगे। आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन और आज हमारा विषय है कि कैसे बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अभिषेक यादव। आप हमसे जुड़ सकते हैं 011 कोड लगाकर, 2342 1080 ये नंबर है, 2342 1084 ये दूसरा नंबर है, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। तो सुनते रहिए रेनबो हेल्पलाइन 102.6 पर।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक। ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे

0: ये और फेलोशिप इन इन्फेक्शियस डिजीज भी है इनके पास, और इसके अलावा कंसल्टेंट फिजिशियन है ये और डायबिटोलॉजिस्ट है। 8 सालों का इन्हें अनुभव है इस क्षेत्र में। तो हमारे साथ जो है इस विषय पर अपना सवाल लेकर जो है वो जुड़ चुके हैं कॉलर हमारे, आइए अगली आवाज उनकी सुन लेते हैं। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है मैडम
0: जी। बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे पास समय कम है, जल्दी से अपना नाम और अपना सवाल बता दें।
1: मैं राजेंद्र आर्य बोल रहा हूँ, रोहिणी सेक्टर 18 से
0: जी।
1: ठीक, और मेरे दोनों शोल्डर में लगभग 1-2 महीने से पेन है।
0: ठीक है,
1: और हल्का पेन है, सोते वक्त थोड़ा हो जाता है, जैसे इधर उधर करवट लेते हैं
0: जी,
1: उसी के बारे में डॉक्टर साहब से जानना चाहता
0: हूँ। जी बिल्कुल
2: जी। राजेंद्र जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको डायबिटीज तो नहीं है?
1: नहीं सर, डायबिटीज नहीं है, मेरी 40 साल उम्र है।
2: अच्छा, आपने हाल फिलहाल में डायबिटीज का कोई टेस्ट कराया, चेक कराया है?
1: पिछले साल हुआ था दिसंबर में, तब तो नहीं था हमारा जो
2: जी जी। अच्छा देखिए, आपके शोल्डर में जो पेन हो रहा है वो हो सकता है कि कभी कभी हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, मसल स्पाज्म होने लगता है, जिस वजह से वो हल्का सा पेन करता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको विटामिन डी की भी कमी हो सकती है, जिस वजह से वो पेन कर रहा हो। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार आप अपना विटामिन डी ज़रूर चेक करवाएं, और अगर विटामिन डी कम आता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। साथ में थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई भी आती हैं जो मसल स्पाज्म को कम करती हैं और आपको पेन में रिलीफ करेंगी, तो आप उनका भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन अपने किसी डॉक्टर से मिलके उनसे सलाह लेके।
0: जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आकाशवाणी रेनबो से जी। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये हमारे लिसनर हमारे साथ जुड़े, और अब जो है वो चलने का वक्त हो गया है, तो हम चलते चलते बस डॉक्टर साहब से थोड़े से जानकारी और लेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या वो गोल्डन रूल्स हैं जो हमें स्वस्थ रख सकते हैं हमेशा, ताकि हम, वैसे तो बीमारियां जो है अपने हाथ में नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश ये रहे उन रूल्स के साथ कि हम कम बीमार पड़े या ना ही पड़े तो अच्छा है।
2: देखिए, आप एक अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे, एक अच्छी स्लीप लेंगे, और एक अच्छे से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली अपना व्यायाम करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो आप हमेशा ही बीमारियों से बच सकते हैं
0: जी। डॉक्टर अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए और आपके समय के लिए।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू
0: जी। और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए। आप इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो से जुड़े रहिए, फिलहाल विदा लेने का वक्त हो गया है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन मेरे यानी शालिनी के साथ, और हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर अभिषेक यादव, MBBS MD जनरल मेडिसिन, और ये जो है इनके पास फेलोशिप इन डायबिटीज मैनेजमेंट है, फेलोशिप इन इन्फेक्शियस डिजीज है, साथ ही कंसल्टेंट फिजिशियन है ये और डायबिटोलॉजिस्ट भी है, और इसके अलावा 8 सालों का इनके पास अनुभव है। तो मैं चाहूंगी आप भी चलते चलते जो है वो अलविदा कह दें हमारे लिसनर्स को।
2: थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अपने सेहत का ख्याल रखिए, अच्छे से खाते रहिए, अच्छे से एक्सरसाइज करते रहिए, और जितना हो सकता है, मौसम चेंज हो रहा है तो एक्सट्रीम वेदर से एक्सपोज होने से बचिए
0: जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से नई तकनीक इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा के उचित उपयोग का आह्वान किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि 27 सितम्बर रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज कहा कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने के बजाय मजबूत, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर जोर देने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सांकेतिक भाषा संचार, अभिव्यक्ति और समावेशन का एक सशक्त माध्यम है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत के जय मीणा ने पुरुष सॉफ्ट टेनिस में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। एशियाई खेलों में सॉफ्ट टेनिस में ये भारत का पहला पदक है। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। आज ही महिला और पुरुष दोनों टीमों ने निशानेबाजी की स्पीड स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। दिया है हाथों में हाथ तो वचन निभाएंगे हम, दिया है हाथों में हाथ तो वचन निभाएंगे हम, रास्ते कैसे भी हो चलते ही जाएंगे हम। यूं तेरा मेरी जिंदगी में आना बहारों से कम नहीं, अपनी राह के हर कांटे को गुलजार बनाएंगे हम। दोस्तों, दो शख्स जिंदगी के सफर पर एक साथ मिलकर चलते हैं, कभी गिरते हैं कभी संभलते हैं, कभी अपनी सूझबूझ के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं। शायद यही तो खूबसूरती है दो लोगों के एक साथ चलने की। जब दो शख्स एक रिश्ते में बनते हैं तो सिर्फ दो जिंदगियां नहीं जुड़ती, दो अलग अलग दुनिया एक दूसरे का हिस्सा बनती हैं। कभी हंसी के पल, कभी छोटी सी नोकझोंक, कभी कॉम्प्रोमाइजेस और कभी बिना कहे एक दूसरे का साथ। शादी के बाद की जिंदगी इन्हीं छोटी छोटी कहानियों से तो बनती है, लेकिन क्या शादी के बाद खुश रहने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी है? या एक सक्सेसफुल कंपेनियनशिप के लिए रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल स्पेस भी उतना ही जरूरी है। आज के जी आकाशवाणी रेनबो पर आज के आशियाना प्रोग्राम के हम कदम एडिशन में बात होगी शादी के बाद की जिंदगी की, जो असल में एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, एक दूसरे को जानने का, समझने का, एक्सेप्ट करने का और हर नए मोड़ पर फिर से हम कदम बनने का। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड आफ्टरनून।

शादी भी की जर्नी भी कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है ना, कभी हाथों की लगाएं लकीरें मुड़ कर किसी और के रास्ते से जुड़ जाए, पता ही नहीं चलता। सोचे बोलते बोलते सोचते सोचते और मैं भी कहीं अटक गई। ऐसे ही हो जाता है, हम अटक जाते हैं किसी के साथ जिसे कभी सपनों में नहीं देखा, वही एक दिन आप अपनों का हिस्सा बन जाता है और फिर कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी इसी खूबसूरत अनप्रेडिक्टेबिलिटी को सेलिब्रेट करता है। अब आप सोच रहे होंगे अपने अपने पार्टनर्स के साथ को कहेगा, नहीं मेरी तो लव मैरिज हुई है, नहीं मेरी तो, अच्छा हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं था अरेंज मैरिज हुई है। लव मैरिज भी हुई है, कई बार हम सोचते हैं ना कि मैं ऐसे पार्टनर के साथ नहीं रह सकती, लेकिन आपको प्यार हो जाता है उस पार्टनर से, बस एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना। उसी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर शादी आप जी रहे हैं तो क्या बात है। वैसे दोस्तों शादी में मैं ख़त्म नहीं होता, उसमें खूबसूरत हम जुड़ जाता है और जब इज्जत भरोसा और गुफ्तगु साथ चले तो दो धड़कने, दो अलग धड़कनों को भी एक खूबसूरत सांस बन जाता है। जी हाँ, शादी के बाद मैं से हम का सफ़र सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस भी है। शादी कैसा रिश्ता है जहाँ दो अलग अलग पर्सनैलिटीज, दो अलग एक्सपीरियंसेस और दो अलग सपने एक साथ एक नई जर्नी शुरू करते हैं। शादी के बाद जिंदगी में एक खूबसूरत वर्ड जुड़ता है हम, लेकिन इस हम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कहीं खो जाए, ना ना ना बिल्कुल नहीं। एक्चुअली एक हेल्दी रिलेशनशिप में कंपेनियनशिप के साथ इंडिविजुअलिटी का होना भी जरूरी है। जी हाँ, एक दूसरे का साथ निभाते हुए इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना है, जानते हैं आप ये बात है ना, क्योंकि एक खूबसूरत रिलेशनशिप वही है ना दोस्तों जहां दो लोग एक जैसा बन जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वही है जहां पर दो लोग अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ एक दूसरे के साथ चलना सीखें, है ना। वैसे भी आप जो भी हैं मेरे दोस्त, इस लाइफ के खूबसूरत चैप्टर को जी रहे हैं, शादी को जी रहे हैं, मेरी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है ना। बात करेंगे इस बारे में, जी हाँ, कि कम्युनिकेशन भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन में किस तरह का कम्युनिकेशन, क्वालिटी मैटर करती है। वैसे एक बात और है, शादी में एक दूसरे का साथ जरूरी है, इमोशनल सपोर्ट भी जरूरी है, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में एक हेल्दी रिलेशनशिप में इंटरडिपेंडेंस को इम्पॉर्टेंट माना जाता है, यानी मैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है लेकिन मेरी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ तुम पर डिपेंड नहीं करती। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी, पर्सनल स्पेस, फ्रेंडशिप्स, इंटरेस्ट, डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि हम कदम होने का मतलब एक दूसरे के बिन चलना पाना नहीं बल्कि अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे के साथ निभाना है। और शायद इसी बैलेंस में रिलेशनशिप की रियल ब्यूटी है ना, ना इतनी दूरी की कनेक्शन खो जाए, ना इतनी डिपेंडेंसी की इंडिविजुअलिटी हो जाए, बल्कि इतना साथ कि दोनों मिलकर खुद को न खो जाए। चलिए सुनते हैं गाना और फिर आएंगे आपसे बात करने के लिए। तेरे हवाले कर दी अरिजीत सिंह की शिल्पा रॉय की आवाज में बेहद खूबसूरत गाना। मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना के आज के वेंसडे एडिशन हम कदम को, जहां मैं हूं प्रियंका आपके साथ। जी हां, शादी की

आपकी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं कि जहाँ सिर्फ प्यार जरूरी होता है या अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, पर्सनल स्पेस सब जरूरी होता है, क्योंकि शादी के बाद मैं से हम का सफर सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस भी है। जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि शादी में मैं खत्म नहीं होता, उसमें खूबसूरत हम जुड़ जाता है, और जब इज्जत, भरोसा और गुफ्तगु साथ चले तो दो अलग धड़कनों को भी खूबसूरत सांस बन जाता है। और गुफ्तगु यानी कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन आप कर रहे हैं। और जी हाँ, आप जैसे कि मैंने कहा कि जो कम्युनिकेशन है ना, ये हम रिलेशनशिप का इमोशनल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। हम सिर्फ वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करते, हमारे जो फेस के हाव भाव हैं, वॉइस का टोन है, बॉडी लैंग्वेज है, और कभी कभी हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है ना। जब पार्टनर अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करता है तो दूसरा पार्टनर जेन्युइनली सुनता है ना, तो रिलेशनशिप में इमोशनल सेफ्टी डेवलप होती है। और इसी के ऑपोजिट अगर फीलिंग्स बार-बार सप्रेस होती रहे, सिर्फ एक ही जना बोलते रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग एक्युमुलेट होती रहती है, हर कॉन्वर्सेशन ब्लेम में कन्वर्ट हो जाती है कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तो इमोशनल डिस्टेंस ग्रेजुअली ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाता है ना। और पता है दोस्तों, साइंस कहती है कि ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन और कंपेनियनशिप की जरूरत होती है। क्लोज रिलेशनशिप में अफेक्शन, रीअश्योरेंस और सपोर्टिव कन्वर्सेशन हमें इमोशनली सिक्योर फील कराने में हेल्प करती है। ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स सोशल बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं दोस्तों, यानी किसी का प्यार से हाथ थामना, पेशेंटली सुनना, या सिर्फ ये कह देना मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि हमारी इमोशनल वेलबींग का हिस्सा है। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब हर वक्त बात करना भी नहीं है, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन मैटर्स। एक कॉन्वर्जेशन में सिर्फ अपनी बात रखना कम्युनिकेशन नहीं, पार्टनर के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना भी इतने इम्पोर्टेंट है, जानते हैं है ना। देखिए आप कह रहे हैं हाँ हाँ प्रियंका, हमें पता है, हमारे पास बहुत, हम जानते हैं, बहुत अनुभव हो गया है। बिल्कुल दोस्त। और जो कभी कभी हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो बिना कहे सब समझ जाए, लेकिन हर इंसान की इमोशनल लैंग्वेज अलग होती है। जो बात हमें ऑब्वियस लगती है, जरूरी नहीं कि सामने वाले के लिए वो उसे उसी तरह समझे। इसलिए कह देना जरूरी है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ये बात मुझे हर्ट करता है या करती है, मुझे थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए, मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ या चाहती हो। कम्युनिकेशन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं होती, कभी कभी एक सिंपल आज तुम्हारा दिन कैसे रहा भी रिलेशनशिप को जिंदा रखता है, क्योंकि वक्त के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। करियर, घर, फाइनेंसिस, बच्चे, पेरेंट्स, जिंदगी इतनी बिजी हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहकर कभी कभी इमोशनली डिस्टेंट हो सकते हैं। इसलिए रिलेशनशिप को सिर्फ टाइम ही नहीं, अटेंशन भी जरूरी है। इसलिए अभी एक दूसरे को फोन करना चाहते हो तो फोन कर लो, बात करना चाहते हो तो कर लो, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, ये मत सोचो। जी हाँ। और हाँ, एक दूसरे की डिफरेंसेस को भी रिस्पेक्ट करो, एप्रिशिएट करो। जी हाँ, एप्रिसिएशन किसे अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, स्मॉल जेस्टर्स पसंद है, रिलेशनशिप को गहरा बना देते हैं। इसलिए हम कदम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जिंदगी के हर मोड़ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, कभी रास्ते अलग हो सकते हैं, सोच अलग हो सकती है, प्रायोरिटीज भी अलग हो सकती है, लेकिन रिश्ता वही है जहां डिफरेंसेस के बावजूद वो बना रहे, क्योंकि जिंदगी के आसान रास्तों पर तो हर कोई साथ चलते, हम कदम तो वही है जो मुश्किल रास्ते पर भी हाथ थामे रखें, रास्ता चाहे जैसा भी हो हम साथ हैं, है ना। तो चलिए फिलहाल वे माही का ट्रैक सुनते हैं अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज में। फिलहाल प्रियंका वर्मा अपनी आवाज को विराम देती है।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
3: इस बुधवार 23 सितंबर को शाम 5:45 से 6 बजे तक,
2: और जानिए SOL के स्किल कोर्सेज के बारे में।

जी हाँ, एक दूसरे के वास्ते ही तो। जी हाँ, शादी के बाद की जो जिंदगी होती है वो एक दूसरे के वास्ते ही होती है, लेकिन अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हुए। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि डिजिटल दुनिया में हर पल स्क्रीन से रिलेटेड है, ये हम जानते हैं। डिजिटल दुनिया में हर पल स्क्रीन से रिलेटेड है, पर रिश्तों का असली कनेक्शन तो दिल से कनेक्टेड है। तो हर कदम के हाथों में हाथ हो, तो हर डिजिटल कनेक्शन से खूबसूरत दिल का ये रिश्ता हो। जी हाँ, हमें पता है डिजिटल दुनिया बहुत जरूरी है, वर्क का प्रेशर होता है, काम आजकल प्रियंका सब ऑनलाइन ही तो होता है मोस्टली। जी बिल्कुल, लेकिन डिजिटल बाउंड्रीज भी जरूरी है। तो थोड़ा सा डिटॉक्स कर लीजिए, अपने रिश्तों पे ध्यान दीजिए। जी हाँ, कब किसे मैसेज करना है, चैट्स कितनी जरूरी है, ये खुद आप देखिए, आप अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन ये बाउंड्रीज भी होना चाहिए, क्योंकि सोफे पे तो हम बैठे होते हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन सब दोनों अपने अपने स्क्रीन पे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो दूरियां है ना, वो बन जाती है। माना कि भाई डिजिटल दुनिया भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई। अगर एक लॉन्ग टर्म डिस्टेंस है, वहां पर आप वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, दूरियां मिट जाती हैं, है ना। तो बस यही कहूंगी कि अपनी शादी को बनाए रखिए। जी हाँ, ये कैसे दौर में हैं जहां हर रिलेशनशिप के डायनामिक्स बदल रहे हैं। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो धड़कनों का एक रिदम चलना है। तो इसी के साथ बस यही कहूंगी, प्रियंका वर्मा को दीजिए इजाजत। स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
0: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
0: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
0: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं, ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
0: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ ना कोई ट्रेन है और ना जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा
2: जी।
0: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
2: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
0: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया
2: जी।
0: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई, इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
2: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
0: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी, ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी
2: जी,
0: लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
2: बिल्कुल।
0: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर, बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए
2: जी,
0: लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
2: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है, हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है
2: जी,
0: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई
2: जी।
0: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
2: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
0: तो श्रोताओं, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी
2: जी।
0: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
2: फिर आया डिजिटल युग, पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए
0: जी।
2: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा, और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
0: तो है ना श्रोताओं बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है
2: जी।
0: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है
2: जी। एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
0: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
2: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहाँ पहुँचता है जहाँ वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
0: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है, इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फारेनहाइट का पैमाना है और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
2: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक।
0: जी, और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
2: इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
3: Children, Have you ever visited a zoo?

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

वहां एक हाथी भी रहता था। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता था।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपने सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी। जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: एक दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ,
1: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी।

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्यों हो रहे हो?

0: तो अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी और हाथी, और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है देखो डाकिया आया।
1: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिया का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।
2: चंचल इतनी चंचल है, बहुत बनाती बातें।

0: किसी एक दिन।
1: एक दिन जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी, तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। वाह, कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा, देखो डाकी आया। चंचल सोचने लगी, हाँ डाकिया, ये कौन? बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
2: डाकिया अंकल।
3: आओ बेटा।
2: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
3: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
2: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
3: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
2: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुँचाते हो?
3: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
2: नेटवर्क क्या होता है अंकल? मुझे कुछ समझ नहीं आया।
3: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव-गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
2: लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं?
3: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
2: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
3: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे, आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम पिन कोड वगैरह अगर आप सही लिखते हैं साफ लिखते हैं तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
2: आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
3: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो, आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है, चाहे धूप हो बारिश हो तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है, आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
2: डाकिया अंकल।

0: आप तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
1: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
0: हाँ हाँ जरूर मिलेंगे। धन्यवाद डाकिया अंकल।
1: धन्यवाद चंचल।
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। दोस्तों, आज एक खास दिन है। जी हां, आज है आयुर्वेद दिवस। और आज इस खास दिवस पर रेडियो डॉक्टर खास ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज जिस विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो है हमारी प्राचीन चिकित्सा परम्परा यानी आयुर्वेद। और इसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं होती, पूरी दुनिया में होती है। और आज का ये दिवस यानी 23 सितम्बर खासतौर पर आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आयु यानी जीवन, वेद यानी ज्ञान। सिर्फ बीमारी का इलाज करने की बात नहीं करता है आयुर्वेद, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन शैली को संतुलित रखने पर भी ये जोर देता है। और इस विशेष कार्यक्रम में आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए और आपके मन में जो भी संशय है, आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी समस्याओं का आप निदान चाहते हैं आयुर्वेद से अगर वो संबंधित है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से सीधे जुड़कर आप हमारे विशेषज्ञों से, हमारे रेडियो डॉक्टर्स से अपनी परेशानी का हल पा सकते हैं। तो बिल्कुल आपका जो इंट्रोडक्शन है मैं करा देती हूं। हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो विशेषज्ञ, दोनों आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव, आप CMO हैं CGHS में आयुर्वेद में, और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत डॉक्टर विनोद।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: हमारे साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नारायण बावलती, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ शालाक्य तंत्र ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर नारायण, आपका भी हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार, धन्यवाद मैडम।
1: आज डॉक्टर साहब, पहले तो शुभकामनाओं से शुरू करते हैं। आज का बहुत खास दिवस है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि आयुर्वेद को माना जाता है कि ये हमारे देश की देन है। और अब ये सिर्फ भारत में नहीं, इसकी मान्यता विश्व में मान्यता है। तो इस विशेष दिवस पर सभी श्रोताओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप आयुर्वेद से संबंधित पूछना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1080 और दूसरा नंबर है 2342-1082। अगर आप लिख कर पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो 9868107070 पर आप हमें

0: लिख सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में जो आ रहा है, बहुत सारे श्रोताओं के मन में भी आ रहा होगा, डॉक्टर विनोद क्या है आयुर्वेद, कैसे समझें इसको सरल शब्दों में?
1: देखिए आयुर्वेद जो है अगर इसका विस्तार देखें तो हमारे यहाँ का जो आध्यात्मिक चिंतन है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा के लिए सोचना चिंतन करना। तो आपने बड़ा सुंदर बताया कि आयुर्वेद आयुषो वेदा आयुर्वेद, यानी आयु का जो ज्ञान कराए, जानने के लिए जो ज्ञान आपको प्रेरित करे वही आयुर्वेद है। यानी आपका जन्म से लेके मृत्यु इवन की मोक्ष तक के इस यात्रा में जो भी आप जीवन को प्रकृति के सामंजस्य के साथ कैसे सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, आत्मोन्नति कर सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, इसका संपूर्ण ज्ञान आयुर्वेद के द्वारा है। ये किसी भाषा किसी क्षेत्र से सीमित नहीं है, संपूर्ण मानवीय एवं प्राणी जगत तक के लिए ये आयुर्वेद है, इवन की पेड़ पौधों के लिए भी, क्योंकि हमारा जीवन परस्पर आपसी सहज संबंध में विकसित होता है। तो आयुर्वेद का बड़ा ही विस्तार है, तो इसे हम आयुर्वेद को इस रूप में समझ सकते हैं।
0: जी विस्तृत तो है ये और गूढ़ भी है, और इस चीज को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे साथ क्योंकि विशेषज्ञ हैं तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारी चीजें इसको जान सकें। पर एक कार्यक्रम आयुर्वेद पर तो एक जैसे एक होता है ना सागर में एक मोती या बूंद कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि रेडियो डॉक्टर में समय समय पर आयुर्वेद पर बहुत सारे कार्यक्रम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। तो श्रोताजन आप प्लीज हमारे साथ जुड़िए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो आप घर बैठे सोचते हैं पर समाधान नहीं पा पाते हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नारायण बावलती सर, आपसे जानना चाहेंगे कि शालाक्य तंत्र आप वो देखते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, एक तो ये क्या है और किससे डील करता है, और दूसरा जैसा मुझे लगता है ये नेत्र से या मुंह के भाग से संबंधित है, तो ये कितना आयुर्वेद में इससे रिलेशन हम समझ सकते हैं, प्लीज बताएं।
2: नमस्कार मैडम, ऐसा बताया हुआ है आयुर्वेद अष्टविध आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद बताया हुआ है। अष्टांग आयुर्वेद काय बाल ग्रह उद्वांग शल्य दंष्ट्र करके अष्टविध अंगों में अष्ट स्पेशलिटी एट स्पेशलिटी में शालाक्य को पूरा आयुर्वेद को डिवाइड किया हुआ है। उसमें एक स्पेशलिटी है शालाक्य तंत्र। शालाक्य तंत्र ये ऐसा डील करता है नेत्रों की व्याधियाँ, कर्ण, नासा, गल का व्याधि के बारे में और उनका उपचार के बारे में सविस्तार वर्णन करते हैं। ये आजकल का दिन में ये सोचते हैं लोग आयुर्वेद का भी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये स्पेशलिटी ओरिएंटेड नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आयुर्वेद में स्पेशलिटी ओरिएंटेड ट्रीटमेंट स्पेशल ट्रीटमेंट्स है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है और पैरासर्जिकल ट्रीटमेंट्स बताया हुआ है। शालाक्य तंत्र इज ए साइंस मेनली डील्स अबाउट द डिसीजेस, जो हमारा व्याधि होता है कर्ण, नासा, मुख, शिरो एंड नेत्र रोगों के बारे में व्यक्त करता है और प्रकट करता है, उसका उपचार बताता है। और जैसे ये आयुर्वेद में बताया हुआ है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये स्वास्थ्य व्यक्तियों का नेत्र को स्वस्थ कैसा रखेंगे, 100 साल तक हम कैसा विजन को मेंटेन करते रहेंगे, हम कैसा सुन जाएंगे, हम कौन सा स्वाद का रुचि का आनंद करें, इसके बारे में शालाक्य तंत्र में सविस्तार से वर्णन किया हुआ है।
0: जी बहुत बहुत उम्दा जानकारी आपने दी, और ये सेंसेस से रिलेटेड है, हमारी सेंसेस जिससे हम देखते हैं सुनते हैं स्वाद लेते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं आपने बताई इससे जुड़ी हुई हैं। और एक बहुत अच्छी सी बात जो मुझे समझ में आई, आपने ये बोला कि 100 साल तक हम अगर आयुर्वेद के ये नियमों या सिद्धांतों को पालन करें तो हम उसको सही रख सकते हैं, ऐसा कहा गया है। पर एक चीज़ और एक जहन में आती है डॉक्टर विनोद, जैसे आपने कहा कि ये हमें जीवन जीने का तरीका बताती है, तो पर कई बार डॉक्टर नारायण सर ने भी ये बात कही कि कई बार ये जो एक आम धारणा होती है कि ये सिर्फ एक जीने का तरीका बता रही है, लेकिन अगर बीमारी हो गई या कुछ कष्ट हो गया तो हमें एलोपैथी पे जाना पड़ेगा, सर्जरी नहीं हो पाएगी इसके थ्रू या इसके रिसर्च नहीं होगी, इसके बारे में मैं आप दोनों के विचार जानना चाहूंगी।
1: इसमें मैं देखिए बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि जो आयुर्वेद का सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च,

0: यानी ये कहता है जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को मेंटेन करें, और जब बीमार हो जाए तो उसकी चिकित्सा बताइए। आप समझिए कि नेचर ने आपको बीमार नहीं बनाया है। हम अपनी गलतियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य जब बिगड़ता है तो हमारे दोषों का ऊपर नीचे होना, उस विकृति को ठीक करने के लिए हमारे यहाँ बिल्कुल देखिए पंचकर्म जैसी एक ऐसी विधा बताई है कि बिना ज्यादा औषधि के प्राकृतिक औषधियों का प्रयोग करके आप इससे स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप बीमार ना हो। दूसरी बात आती है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अष्टांग आयुर्वेद की चर्चा करिए, यानी कि जब आप व्याधि होती है अगर कोई चिकित्सा आपकी औषध से नहीं हो सकती है, यानी काय चिकित्सा जहां काम नहीं कर सकती है वहां शल्य तंत्र को विकसित किया गया, और आचार्य सुश्रुत का आपने नाम सुना ही होगा। आज भी जो मॉडर्न सर्जरी हो रही उसके बेसिक आठ प्रिंसिपल अष्टविध शस्त्रकम बुनियादी सिद्धांत वो उन्होंने उस जमाने में लिखे थे आज भी लागू हैं, वो उनका तरीका बदल रहा है। तो शल्य का प्रयोग है, काय चिकित्सा का प्रयोग है, औषधियों का प्रयोग है, पर इसका जो वैशिष्ट है कि आपको बीमार ना होना दिया जाए। ये अपने आप में अद्वितीय है कि आप दवाई ना खाएं। लेकिन अगर स्थिति ऐसी है कि आपको बहुत सारे आपको अस्थि विज्ञान है जहाँ की फ्रैक्चर्स का ये सब विज्ञान था, लेकिन कालखंड में कुछ चीज़ें ह्रास हुई, अब उनको नए सिरे से विकसित किया जा रहा है, एक नई चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा का आगाज हो रहा है जो आधुनिक पद्धति के साथ मिलके उनकी चीज़ों को प्रयोग करके हम भी अपना विस्तार कर रहे हैं और समाज की सेवा बेहतर तरीके से हो इसका आयुर्वेद के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।
1: जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात। और ये चीजें हम रेडियो डॉक्टर के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं कि क्या विकास हो रहा है और किस तरह से एक टेक्निकली हम उस क्षेत्र में भी बढ़ रहे हैं अगर हम हेल्थ की बात करते हैं। और जैसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की अगर मैं बात करती हूं तो रिसर्च वर्क भी वहां काफी चल रहा है जैसा हमें पता चला है, वो भी हम आगे आपसे जानेंगे। एक श्रोता हमारे वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, इनसे बात करते हैं। हेलो,
2: हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, मित्तल मैडम है ना?
1: जी नमस्कार, शालिनी मित्तल बोल रही हूँ जी।
2: हाँ मित्तल मैडम, एक तो सबसे पहली बात है
1: जी,
2: थोड़ा ये जो आप गाना चलाते हैं ना उसको आधा चलाइए, क्योंकि पूरा चलाएंगे तो फिर आदमी बोर हो जाता है।
1: हम पूरा चलाते ही नहीं है, हम आधे से भी आधा चलाते हैं। चलिए आप प्रश्न पूछ लें।
2: प्रश्न यह है, मेरा आंख का ऑपरेशन हुआ था तो मेरा विजन कम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है, और उसके लिए डॉक्टर साहब से दवाई बताना है। और दूसरी बात है, मेरा बीपी ज्यादा है
1: जी,
2: और सुनो डॉक्टर साहब
3: जी,
2: मेरा बीपी भी ज्यादा है, मैं आरती अस्पताल में गया हूँ
3: जी सर,
2: तो वो लोग कहते हैं बीपी के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है, तो कृपया आप मेरा प्रश्नों का जवाब दीजिए, धन्यवाद
1: जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, डॉक्टर साहब जवाब दें उससे पहले, कि यहाँ पर हम दवाई नहीं बताते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें आपको बताते हैं कि आपको जाना है और दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर साहब हर किसी का एक अलग समस्या होती है और जब तक उसका टेस्ट ना किया जाए तो हम दवाई इस माध्यम से नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपके एडवाइस आप जरूर बता सकते हैं जी।
3: धन्यवाद सर आपका प्रश्न पूछने के लिए। आपका बीपी बढ़ा हुआ है उसके दवा नहीं है, ऐसा नहीं है, दवा तो हम बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। बीपी के वजह से आंख में बहुत सारा बीमारियां हो सकता है, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हम जो बोलते हैं, रेटिना वीक हो जाता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स रहता है रेटिना इज ए रिच अप ब्लड वेसल्स रहता है, तो रेटिना में थोड़ा कभी कभी ब्लीडिंग होने का चांसेस रहते हैं, हम उसको हार्ड एक्जुडेट सॉफ्ट एक्जुडेट बोलते हैं, इवन मैक्युलर डिजेनरेशन भी हो सकता है अगर लेटर स्टेज में अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इवन दो दे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स हो सकता है, इट मे बी द ब्रांच ब्लड वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, नहीं तो ऑप्टिक ब्लड वेसल्स जो भी होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसके लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट ये है, तो हमें जो बीपी है तो कंट्रोल में रखना है, और बीपी कंट्रोल रखने के साथ साथ हम और हमारा मन का भी स्वस्थ रखना है। जैसे स्ट्रेस लेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा तो उसका स्ट्रेस का असर इवन आंख में भी आ सकता है, तो हमें ये है। तो आपको नज़र धीरे धीरे कम हो रहा है, नज़र धीरे धीरे कम होने का कारण क्या है, आपका बीपी है या ब्लीडिंग हो रहा है ब्लड वेसल्स में, या अगर धीरे धीरे आपका लेंस में जो कैटरैक्ट होता है तो वयो का अनुसार जो चेंजेस होता है उसके वजह से आपका देखने में तकलीफ हो रहा है, या धीरे धीरे विजन कम हो रहा है, या कॉर्नियल चेंजेस में, या कौन सा प्रॉब्लम से आपको विजन में धीरे धीरे कम हो रहा है, हमें ये परीक्षण करने से, एग्जामिनेशन करने से पता चलेगा। आप अपना नज़दीक का हॉस्पिटल में एग्जामिन करा सकते हैं, नहीं तो हमारा पास एग्जामिन करेंगे, उसके अनुसार हमें ट्रीटमेंट करेंगे आयुर्वेद के अनुसार। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर वात का विशेषण है, आयुर्वेद जैसे बताया हुआ है त्रिविध प्रिंसिपल्स के ऊपर बताया हुआ है, त्रिदोष त्रिमल सप्त धातु, इसके ऊपर बेस्ड ऑन इसमें कौन सा का विशेषण है और क्या प्रॉब्लम है इसको देख के हम उसके अनुसार ट्रीटमेंट करेंगे। मैं सोचता हूँ आप मेरा आंसर से
1: जी आपको सही जवाब मिल गया है डॉक्टर साहब की तरफ से। आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है बता दिया गया है, आप जाएं और टेस्ट कराएं तो सही मार्गदर्शन आपको वहाँ भी मिल जाएगा। डॉक्टर विनोद, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया था कि जब समय बदलता है, ऋतु बदलती है, तो बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में कही गई हैं, चाहे खान पान से लेकर या जीवन शैली से लेकर उसमें बदलाव होना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
0: देखिए, जैसे जैसे प्रकृति में बदलाव आते हैं, हमें अपने रहन सहन, खान पान, यानी कि आहार विहार जिसे हम लाइफस्टाइल के रूप में समझ सकते हैं, इनमें परिवर्तन जरूर करना चाहिए। जैसे दिन के 24 घंटे में सुबह के समय अलग दोषों का प्रकोप होता है या दोषों की स्थिति होती है, दोपहर के समय अलग होता है, इन सब बातों का ऋतु के अनुसार भी परिवर्तन होता है, तो हमें ऋतु के अनुसार अपना खान पान मैनेज करना चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे मैं आपको समझाऊं कि इस समय वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है और शरद ऋतु आने को है, इस ऋतु संधि काल में, यानी जहां दो ऋतुओं में परिवर्तन होने का बीच का समय है, उस समय हमें विशेष रूप से पुरानी ऋतु के संबंध में जो भी आहार विहार खान पान है उन्हें धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और नई ऋतु में हमें आहार या खान पान को उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, इसमें समझने वाली बात है कि इस समय जो ऋतु का ट्रांजिशन है, इस समय हमको बहुत गुरु आहार नहीं करना चाहिए, भारी भोजन को अवॉइड करना चाहिए। भारी भोजन से ये समझ लीजिए कि ऐसा खाना जो पचने में ज़्यादा समय लगाता है, आपकी अग्निमांद करता है, तो ऐसे आहार को इस समय अवॉइड करें। लघु सुपाच्य ऐसा आहार लें, समय पे सोने का सिस्टम रखें ताकि आपकी निद्रा सही हो। तो बीपी का जैसे डिस्कस हुआ, तो इससे उच्च रक्तचाप में बहुत आपको फायदा मिलेगा। तो ऋतु के अनुसार खान पान में जो ऋतु जन्य फल हैं, जो इस ऋतु में फल या आहार का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं का प्रयोग करें। किसी भी आहार का एकांतर प्रयोग मत करें। जैसे खाने पीने में भी सरकार के द्वारा भी नया मिलेट्स का प्रयोग किया गया, बाजरे का प्रयोग किया गया, मक्का है, तो इन आहारों में परिवर्तन करते रहें। दूसरी चीज है कि जीवन शैली में समय पर उठें, व्यायाम करें, बहुत देर तक सोएं नहीं और बहुत देर तक रात्रि जागरण ना करें, जो डिजिटल के कारण, मोबाइल के कारण हम लोगों की जो सोने का समय है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण हमारे मानसिक समस्याएं और दैनिक शरीर की नियमित प्रक्रियाएं, जिसमें पेट का साफ होना, ये सब भूख का समय पे लगना, ये सब डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो खास तौर पे ऋतु संध्या काल में, जिस समय की एक ऋतु जा रही हो, नए ऋतु आ रही हो, तो धीरे धीरे हमें पुरानी ऋतु की चीज़ों को छोड़ना चाहिए और नए ऋतु की चीज़ों को अपनाना चाहिए। इस ट्रांजिशन में जैसे वेदर मौसम आपको गाइड करे, उसी हिसाब से आपको अपना आहार विहार हर चीज़ को बदलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। एक श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो।
4: हेलो।
1: हेलो
4: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताइए।
4: मैं बात कर रहा हूँ।
1: जी आप अपना नाम बताइए और प्रश्न करिए।
4: जी ओम। ओम
1: जी, अब क्या पूछना है आपको?
4: जी आयुर्वेद के बारे में पूछ।
1: हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए, हमारे दो स्पेशलिस्ट आपको सुन रहे हैं।
4: जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं पूछना चाह रहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति रात को परीक्षा के समय या कैसे भी अगर रात को देर तक जगता है, तो उससे क्या कोई बीमारी या कुछ हो सकता है? जी
1: डॉक्टर साहब।
0: हाँ हाँ, देखिए ऐसा है सिद्धांत, हमको क्या है, बेसिक नियम है कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जाना है, पहली बात। लेकिन यदि आप जैसे कि परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, किसी टारगेट को अचीव करते हैं, उसके लिए जगना एक मजबूरी है, या नाइट शिफ्ट करते हैं, रात में जगना पड़ता है,

0: इसके लिए एक नियम है कि जितना रात में जगे हैं उसका आधा दिन में आपको सोना है, तो आपकी रात में जितना आप जगे हैं उसका कंपनसेशन नेचर में हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आजकल कॉरपोरेट कल्चर आया है जिसमें कि हम रात में भी खाना खाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हमें नहीं करना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से किसी व्याधि को नहीं आपको होगा, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आपको आंखों की समस्या हो सकती है, आपको बालों की समस्या हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको एक तरीके की थकान महसूस पूरे दिन भर रह सकती है, आपकी अग्नि पे असर आएगा तो आपके भोजन के पाचन में प्रक्रिया में होगा, आपके पेट साफ की समस्याएँ होंगी। इन सब समस्याओं से बचने के लिए आयुर्वेद में सबसे और अच्छा उपाय है जिनका अगर आप उपयोग करेंगे इन नियमों का तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे।
1: और इस बार की जो थीम है वो भी यही है डॉक्टर
0: जी,
1: साहब,
0: जी
1: स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद।
0: स्वस्थ भविष्य के
1: और
0: लिए,
1: भविष्य अगर हम देखते हैं और हेल्दी भविष्य देखते हैं तो मुझे लगता
0: हाँ।
1: है वो सबसे अच्छा
0: और
1: फ्यूचर है।
0: विशेष तौर पे मैं आपको बता दूं,
1: जी
0: डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि आंखों के लिए रात में जगने से, क्योंकि हम रात्रि के नियम के विरुद्ध जगते हैं, तो ऐसे में आंखों के लिए बहुत सारी आंखों की औषधियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं आंखों में डालने के लिए। आंवला देखिए आपके लिए सुलभ उपलब्ध है, आंवले का मुरब्बा लीजिए, आंवले का जूस लीजिए, आंवले की चटनी उपयोग कर सकते हैं, इससे आपकी आंखों का त्रिफला के रूप में भी, हरड़ बहड़ा आंवला तीन रूप है आंखों के लिए बहुत है, इन्हें भिगो दीजिए रात में और सुबह ठंडे जल से उसको छान के अपनी आंखों का प्रक्षालन करिए, यानी उनको धोइए, और आप इस पानी को पी भी सकते हैं। तो आंखों के लिए जो प्रॉब्लम आती है रात में जगने से, और रात में थोड़ा सा आप अगर मोबाइल या स्क्रीन टाइम को कम करें, पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत जैसे लाइट बंद करके लोग फोकस स्क्रीन टाइम यूज करते हैं, ये आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ही दिक्कत कर रहा
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, मैं इसी पे ही अब आना चाह रही थी डॉक्टर नारायण से, मैं पूछना चाह रही थी आजकल के जो चेंजेस आए हैं जीवन शैली में, लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम पे अपना टाइम बिताते हैं, कभी चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो, क्योंकि काम भी उसी से होते हैं और मोबाइल पे अब तो पूरी दुनिया चल रही है, तो आंखों पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है।
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: ड्राई
0: जी
1: आई है या बहुत सारी और ऐसी समस्याएं हैं वो आप बता सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या कौन कौन सी हैं और क्या आयुर्वेद इसमें हेल्प कर सकता है?
2: जैसे हमें जानते हैं तो आयुर्वेद का तो बहुत पुराना साइंस है, ऋषि मुनियों ने बताया है। ऋषि मुनियों ने भी इस समय में कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, यूज़ नहीं कर सकते थे। इस दिज आर द ऑल दोज गैजेट्स अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न एरा।
1: जी
2: तो हमें ये भी पता है, तो ये तो डेवलपमेंट का अभी का है, तो हमारा ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है, बहुत पुराना शास्त्र है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है जो आगे आने वाला डिसीजेस है उसको भी हम अनुमान से, युक्ति से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा ये इससे लाइक ए फ्लोइंग रिवर। अभी फॉर एग्जांपल कोविड भी तो कभी किसी को पता नहीं था, कोविड-19 आ गया, हमें उसका कैसा, उसके साथ जीना है, उसको कैसा अवॉइड करना है, हमने सीख लिया। वैसे ही आयुर्वेद में बताया गया है अनुक्त व्याधि विज्ञानम, अनुक्त व्याधि जो जो डिसीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है पुराना शास्त्र में, अभी हम उसको विशेष रूप से हम उसका ज्ञान ले सकते हैं। जैसे मैडम ने अभी आपने बताया कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो आजकल का दिन में लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, हम बहुत तरह का यूज़ करते हैं, तो देज आर वी आर वर लाइफ इज़ गोइंग विथ दोज ऑल दीज गैजेट्स। तो ऐसा हो सकता है हम जब कंप्यूटर में मोबाइल में काम करते हैं हम ये भूल जाते हैं हमारा फलके भी उसके साथ साथ हमें मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ द आईलिड हम जो बोलते हैं उसके साथ बहुत कम हो जाता है। ये बहुत कम होने के साथ एक क्या प्रॉब्लम होता है, तो हमारा जो टीयर फिल्म होता है, जो अश्रु होता है, उसका कंप्लीट स्प्रेड नहीं होता है। तो अगर कंप्लीट स्प्रेड नहीं होता है तो ये आगे जाके ड्राई आई हो सकता है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो सकता है। ड्राई आई और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को हमें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं किया, उसको निदान परिवर्जन नहीं किया है, तो ये आगे जाके दूसरा व्याधि और दूसरा बीमारी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ले किए कॉर्नियल अल्सर जो बोलते हैं, कार्निया के ऊपर अल्सर बना और व्रण हो जाए, ऐसा भी तकलीफ हो सकता है। बहुत सारा व्याधियाँ ये डिजिटल गैजेट्स को इम्प्रॉपर यूज़ करने से हो सकता है।

0: सो फॉर एग्जांपल हम इसको ठीक है लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं तो हम भूल जाते हैं, तो हमें ब्लिंक भी करना है साथ में उसको। ड्राई स्पॉट्स हमें आंख में आ जाता है, ड्राई स्पॉट्स आंख में आने के साथ साथ हमारा मसल्स का वीकनेस हो सकता है, वो सीलियरी मसल्स हो सकता है या आईलिड्स का मसल्स हो सकता है। तो अगर ये हो सकता है तो हमें जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये बताया गया है तो 20-20-20 रूल्स, 20 मिनट्स हमें दूर देखना है, 20 मिनट्स गैप देना है, 20 सेकेंड्स के लिए हमें रेस्ट लेना है आंखों को। तो एक 20-20 रूल ये होता है। आयुर्वेद में जैसे अभी सर ने बताया है, विनोद सर ने बताया है कि हरितकी, विभीतकी, आमल की जो त्रिफला बताया हुआ है उसको हम सेवन कर सकते हैं, और त्रिफला का आई वॉश जो हम बोलते हैं तो आई वॉश कर सकते हैं। उसके साथ एक अंजन जो दिनचर्या में हमें यार बताया हुआ है, नेत्र सेक बताया है, अंजन नेत्र सेक अंजना, ऐसा अंजन मीन्स जो हमारा कॉलोरियम जो बोलते हैं, तो हमें रूटीन में अगर यूज़ करेंगे तो बहुत दिनों तक हमारा नेत्र का स्वस्थ रक्षण कर सकते हैं। वी आर मेंटेनिंग द विजन फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन।
1: तो अब हमारे पास जो बहुत सारे मैसेजेस डॉक्टर साहब आ चुके हैं, और कई तो हमारे श्रोता हैं जो हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप दोनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं आज के इस खास दिवस पर।
0: थैंक यू।
1: और आंखों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, जनरल भी हैं। और मैं एक शॉर्ट में एक लेती हूँ, जो अभी आप बात बोल ही रहे थे डॉक्टर नारायण, कि इन्होंने लिखा है, सौरभ सिंह चौहान लखनऊ यूपी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे चश्मा लगा हुआ है और दूर का मेरा दृष्टि है 1.85 है, एज 29 है, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी में मुझे टेस्ट कराना चाहिए?
0: आप प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद आपको। जो हमें आप 1.5 नंबर है आपका ये बोल रहे हैं, हमें इसमें जो क्लासिकली हम बोलेंगे तो हमारा आयुर्वेद में इसको थिमिर बोलते हैं, तो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको मायोपिया कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली इसमें 6 मंथ्स आपका अगर एज आपने मेंशन किया है तो
1: 29 है,
0: 29 है, तो यूजुअली 24-25 तक हमारा जो मायोपिया होता है वो कांस्टेंट हो सकता है, तो आगे बढ़ने का चांसेस बहुत कम है। फिर भी आप 6 महीने में एक बार या तो साल में एक बार आपका नियरेस्ट जो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है, जो नेत्र विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाके आपका आँख को तपाशन करना चाहिए। और आपका विजन को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो जैसे बताया हुआ है अंजन है, रात्रि जागरण को अवॉइड करना है, जैसे नेत्र रोगों का निदान बताते हुए हमारा ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है, उष्णाभि तप्तस्य जल प्रवेशात बताया, रात्रि जागरणात् एक विशेष बताया हुआ है, तो स्वप्न विपर्यायम मीन्स आजकल का दिन में हम डे टाइम में स्लीप करना है, रात में हम पूरा दिन जगा रहना है, इसके वजह से भी नेत्र का रोग हो सकता है। अवॉइडिंग ऑल दीज कंडीशंस तो हमें विजन को मेंटेन कर सकते, जैसे मायोपिया एक ऐसा कंडीशन है।
1: हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, यहाँ पर एक हम म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हम आएंगे बस थोड़ी सी देर में। अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Hello and a very warm welcome to the live updates of the ongoing Asian Games 2026. हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए इस वक्त 3:30 बजे के कुछ खास अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एशियन गेम्स। सबसे पहली बड़ी खबर आती है वुशु से, जहां पर रोशिबिना देवी ने 60 किलोग्राम की कैटेगरी में फाइनल्स में अपनी जगह दर्ज कर ली है। जी हाँ, नायरम रोशिबिना देवी सिक्योर्ड हर प्लेस इन द वुमेन 60 किलोग्राम फाइनल आफ्टर बीटिंग इंडोनेशियाज थाइनिया 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final, जो कि होने वाला है 23 सितंबर को। आपको ये भी बता दें कि इस विक्ट्री के बाद, यानी सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश करने के बाद, भारत को एक और मेडल इस समय कंफर्म हो ही चुका है। अब वो कौन सा होने वाला है, वो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा, ये तो 23 सितंबर को ही हमें पता चलने वाला है, यानी कल। लेकिन दिस इज अनदर वेरी गुड न्यूज कमिंग आवर वे राइट नाउ, राइट?
3: जी बिल्कुल, अच्छी खबर के बाद उम्मीद थी मीराबाई चानू के बाद ज्ञानेश्वरी देवी भी कमाल करेंगे, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। ज्ञानेश्वरी देवी ने 195 किलोग्राम वजन उठाकर जो महिलाओं का 53 किलोग्राम का मुकाबला था, 8वें स्थान पर रही। स्नैच में उन्होंने 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम वजन उठाया। हालांकि उनके लिए बहुत खास नहीं था। उत्तर कोरिया की हॉन्ग क्योंग कांग ने 223 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद चीन की जिन लाओ झाओ रही, उसके बाद थाईलैंड की सुचरिता खांबा का स्थान रहा है।
2: जी, और अब रुक करते हैं बैडमिंटन की तरफ, जहां पर आज हो रहे हैं मेंस टीम के सेमीफाइनल मैचेस, और इसमें सबसे पहला मुकाबला हुआ भारत के लक्ष्य सेन और दूसरी तरफ से चाइना के शी यू क्वी के बीच में। लेकिन चाइना के शी यू क्वी वॉज टू गुड फॉर लक्ष्य सेन टुडे, जिन्होंने लक्ष्य सेन को 21-16, 21-18 से स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। लक्ष्य सेन कुड नॉट प्रूव टू बी अ मैच वर्दी ऑफ हिज ओपोनेंट टुडे। वहीं दूसरी तरफ जब अगला मैच शुरू हुआ उसमें सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना हुआ चाइना के लियांग वेकिंग और वैंग चैंग से। और उसमें द गुड थिंग वाज दैट द इंडियन पेयर ऑफ रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी वर एबल टू डिफीट द चाइनीज अपोनेंट्स 2-0, 21-11, 22-22, and thankfully this leveled the playing field for both India and China, because then the scores got tied at 1-1 from the first two matches. उसके बाद हम चले तीसरे मैच की ओर, जहां पर चाइना के ली शिफेंग ने आयुष शेट्टी को बड़ी आसानी से स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया 21-19, 21-13, thereby taking the lead overall to 2-1.
3: साक्षी, एक ऐसे मुकाबले की बात करते हैं जो बिल्कुल एक तरफा था। भारतीय महिला हॉकी के मुकाबले की बात करते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 20-1 से शिकस्त दे दी। पूल बी में यह भारत की लगातार तीसरी जीत है। मुकाबले की सबसे

0: स्टार दीपिका सहरावत रही जिन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक के जरिए अकेले 9 गोल दागे, एक मैच में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।
1: राइट, और कबड्डी में से भी एक अच्छी खबर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जहां भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने आज बांग्लादेश को 48-25 से हराकर अपनी जगह अब दर्ज कर ली है इन द फॉलोइंग गेम्स। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि इंडिया विल नाउ बी फेसिंग चाइनीज तैपाई इन इट्स फाइनल ग्रुप स्टेज गेम, लेकिन दिस वॉज द थर्ड स्ट्रेट विक्ट्री फॉर द इंडियन मेन्स कबड्डी टीम एंड देर ऑब्वियसली मूविंग फर्दर इन द स्टेज नाउ ऑफ ईयर।
0: जी, एक इतिहास की बात करते हैं। आज के खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, इन्हीं में से एक है सॉफ्ट टेनिस में जय मीना, जिन्होंने इतिहास गढ़ा है। सेमीफाइनल में जापान के तायुका कुरोसाका को 2-4 से शिकस्त दी। हालांकि उनसे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतिहास रच दिया। सॉफ्ट टेनिस उसमें एशियन गेम्स में भारत का पहला पदक पक्का किया और कांस्य पदक अपने नाम किया। दिलचस्प बात यह कि जय मीना जिस तरह से खेलते थे, शुरू में क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन सॉफ्ट टेनिस को चुना और यहां पर उन्होंने एक नया कीर्तिमान बना डाला।
1: क्योंकि हम अब यहां पे मेडल्स की बात करें तो हाउ कैन वी फॉरगेट मीराबाई चानू, वो भी तो आज हमारे लिए सबसे बेहतरीन मेडल लेकर आई। उम्मीद तो उनसे आज गोल्ड की थी दोस्तों, लेकिन लेकर आई है वो सिल्वर मेडल। नॉनदलेस अ वेरी बिग फीट फॉर इंडियंस इन एवरी स्टेज, बिकॉज 28 वर्षों बाद हमें वेट लिफ्टिंग के अंदर एक मेडल मिला है। और मीराबाई चानू के लिए तो पहली बार हुआ एशियन गेम्स में जब वो भारत को अपनी तरफ से भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकी आज सिल्वर मेडल जीतकर।
0: जी बिल्कुल, अब कोई प्रतियोगिता नहीं बची है मीराबाई चानू के लिए कि वो जहां पर उन्होंने मेडल नहीं जीता है। लेकिन चलते चलते एक खबर और दे दे, सेवक टकरा से जीत के बावजूद भारत क्वालिफाई यहां पर नहीं कर पाया। पुरुष टीम रेगू के ग्रुप बी के मुकाबले में फिलीपींस से 2-1 से हालांकि उसको हराया, लेकिन उसके बावजूद वो क्वालिफाई नहीं कर पाई।
1: जी, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपसे दोबारा मिलेंगे शाम को 4:30 बजे विद द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम दैट आवर। अभी के लिए फिलहाल मुझे यानी साक्षी मांडवाल और मेरे साथ साथ शायद आजमी जी को दीजिए इजाजत, जुड़ेंगे आपसे 4:30 बजे शाम को एक बार फिर से। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
4: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और आज आयुर्वेद दिवस पर आप सभी को हम विशेष कार्यक्रम के रूप में दो गेस्ट के साथ ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का हमारा विषय भी यही है, स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद, जिसके लिए ये थीम इस वर्ष रखी गई है। और दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर विनोद कुमार यादव, प्रोफेसर डॉक्टर नारायण बावलती। और हम बात कर रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आ चुके हैं, एक कॉल भी हमारे पास आ गया है हमारे श्रोता का। हेलो
5: हेलो
4: जी, नमस्कार, आप रेडियो डॉक्टर में हैं। जी
5: क्वेश्चन बोलो, मुझे प्रोस्टेट की बीमारी है, एटी से एजाज मैं नॉर्मल हूँ और मेरे को बीपी या डायबिटीज कोई प्रॉब्लम नहीं है और 84 एज है और प्रोस्टेट की बीमारी हो गई, उसका इलाज आयुर्वेदिक में हो सकता है?
4: जी 85 इयर्स एज है, प्रोस्टेट की बीमारी है। जी बताएं सर।
6: देखिए, अगर आपको प्रोस्टेट की तकलीफ है, और ये अच्छी बात है, कोई और बीमारी नहीं है, प्रोस्टेट के संबंध में हमारे यहाँ प्रतिस्टिला बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है, अगर ये बेनाइन है यानी सामान्य प्रकार से इसकी वृद्धि हुई है, तो कुछ औषधियों को प्रयोग करके एक लंबे समय में इनके प्रोस्टेट की समस्या, यूरिन जो फ्लो की समस्या है, काफ़ी इम्प्रूव की जा सकती है। पर यह सब आप अपने आयुर्वेदीय चिकित्सक की देखरेख में उनकी सलाह के अनुसार ही लें। ऐसा नहीं है कि इसकी चिकित्सा नहीं है, इसकी चिकित्सा है और इसमें लाभ भी मिलेगा आपको।
4: जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैसेज हमारे पास आया है, सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम और दोनों डॉक्टर्स को भी राम राम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि चिंतामणि रस और अश्वगंधा टैबलेट कितने समय तक हम खा सकते हैं और क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है?
6: देखिए, ये दोनों जो बृहत व चिंतामणि है, एक रस औषधि है, इसे कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के और लंबे समय के लिए एकांतर प्रयोग इसका निषेध किया गया है। तो आप जब भी इस औषध का प्रयोग करें, ये बहुत ही कारगर औषध है, लेकिन अगर सही तरीके से प्रयोग नहीं की जाएगी तो बहुत महंगी औषध आपकी बेकार जाती है। तो इसलिए जरूर चिकित्सक की देखरेख में करें, और इसका विशेष प्रयोग के लिए ही उचित होता है

0: प्रयोग करना। जहाँ तक अश्वगंधा है तो अश्वगंधा आप कुछ समय के लिए रूटीन में प्रयोग कर सकते हैं, दूध के साथ कर सकते हैं, घी के साथ कर सकते हैं, जिनको दूध घी से समस्या है तो पानी के साथ भी कर सकते हैं। अश्वगंधा ले करके एक च्यवनप्राश टाइप में अश्वगंधा ले करके भी आता है, वो भी शरीर की मांसपेशी वृद्धि, जनरल शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लगातार प्रयोग करना किसी भी चीज़ के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप इसे अपने चिकित्सक की देखरेख से प्रयोग करें और लगातार एकांतर प्रयोग किसी भी औषध का आपको नहीं करना चाहिए।
1: जी, एक और हमारे श्रोता है हमारे साथ। हेलो।
2: हाँ जी
1: जी, अपना नाम बताएं।
2: मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ, बीकानेर से।
1: जी जी देवेंद्र जी, स्वागत है, बताएं क्या पूछना है।
2: मेरी एज 68 है।
1: आपकी आवाज हमें सही नहीं मिल रही है।
2: हाँ
1: हाँ, कुछ इको हो रही है आपकी आवाज। आप ऐसी जगह पे आ सकते हैं जहाँ से स्पष्ट हम सुन सकें आपको।
2: मैं देखता हूँ, उधर से देखता हूँ।
1: हाँ, एक बार पुनः आप ट्राई करें, तब तक हम एक मैसेज ले लेते हैं। हमारे पास एक मैसेज आया है डॉक्टर अनिल कालरा जी का, गुरुग्राम से। आप हमें हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं आज इस विशेष दिवस पर। बहुत बहुत धन्यवाद कालरा जी, आप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है रविन्द्र पाठक, आशा पाठक जी का, नीदरलैंड से। और वो लिख रहे हैं, वेरी रिस्पेक्टेड शालिनी मैम जी एंड बोथ डॉक्टर सर जी, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आयुर्वेद दिवस की बधाई। प्रश्न यह है कि क्या आयुर्वेद और एलोपैथी की मेडिसिन को साथ साथ लिया जा सकता है, प्लीज बताएं। और इस कार्यक्रम से हमें बहुत वैल्यूबल जानकारी मिलती है, थैंक्स। तो थैंक्स, आप हमें नीदरलैंड से सुनते हैं और हमसे प्रश्न भी करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं इनकी समस्या का समाधान।
0: देखिए, ये अच्छी बात है, आपका प्रोग्राम विश्व भर में सुना जाता है और बड़ी सराहना कर रहे हैं कंटेंट को लेकर। तो इनका सवाल क्या था
1: कि क्या आयुर्वेद और एलोपैथी को साथ साथ लिया जा सकता है?
0: बिल्कुल, आयुर्वेद और एलोपैथी को साथ साथ लिया जा सकता है, पर थोड़ा सा इसमें अगर आप गैप रख लेंगे कि एक समय में जब औषधि एक औषध का पाचन हो जाए, यानी अगर एलोपैथी ले रहे हैं तो घंटे डेढ़ घंटे का आप गैप ले लें, तभी वो दूसरी औषध लें, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। औषधियों का प्रयोग साथ में कर सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं होगी और कोई आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि मतलब लाभ ही होगा।
1: कई बार लोग चाहते हैं अल्टरनेट मेडिसिन भी हम ले लें, तो वो की जा सकती है।
0: हाँ बिल्कुल की जा सकती है, और इसके साथ साथ अगर आप उचित चिकित्सक देखरेख में कर रहे हैं तो आपकी एलोपैथी मेडिसिन की डोज को भी कम किया जा सकता है, उतनी आवश्यकता नहीं रह जाएगी।
1: अच्छा।
0: तो कम मात्रा औषध से भी आपका स्वास्थ्य लाभ हो सकता है,
1: पर जैसा आपने कहा कि चिकित्सक की देखरेख बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए एक और श्रोता को ले लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, अपना नाम बता दीजिए।
3: धर्मेंद्र है मैडम जी।
1: जी अच्छा, आप ही ने कॉल किया था, बताएं जी क्या पूछना है।
3: जी मेरे को बार बार पेट में प्रॉब्लम रहती है जी, खाना पीना जो हजम टेंस नहीं होता जी, और बार बार पेशाब की दिक्कत रहती है।
1: आप अपनी उम्र बताइए।
3: मेरी 38 साल उम्र है जी।
0: 38 साल
1: जी।
0: एक्चुअली
3: और मैडम जी एक बात और बताऊं, मतलब नींद भी रात को ना ठीक ढंग से नहीं आती।
1: डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं।
0: एक्चुअली मैं इनको जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, गृहिणी रोग है।
1: अच्छा।
0: जो आंतों में एक प्रकार की ऐसी समस्या होती है जिसमें कि आहार का सम्यक पाचन ना होना, सही से जब खाने का पाचन नहीं होगा तो इनको गैसेस बनेगी। गैसेस बनने में दो स्थिति होती हैं कि या तो पेट फूलता है, खाने का बदहजमी होती है, या खाना ठीक से पचता नहीं है, बार बार मल त्याग के लिए लेट्रिन जाना पड़ता है, लेकिन इनको पेट साफ की फीलिंग नहीं आएगी कि मेरा पेट साफ हो गया है। तो इसके लिए आप बेहतर है कि जो सरल उपाय है मैं आपको बता दूं, जब भी आपको भूख लगे तभी आप खाना खाएं, पहला नियम। दूसरा नियम है कि आप लघु और सुपाच्य आहार करें, यानी ऐसा आहार जो आपको आसानी से पच जाए पेट में और आपको तकलीफ ना दे। भारी भोजन या बहुत तीखा, मिर्च मसालेदार, जलन करने वाला, मैदे के आइटम, इस स्पाइसी आइटम, इन चीज़ों को आप कम प्रयोग करें। इसके बाद आप घरेलू उपाय में जैसे जीरा है, हींग है, सौंफ है, इन पाउडर्स का, और त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च, पिपली, इन तीनों का पाउडर दीपन पाचन के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से घरेलू उपाय, इसके बाद आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के से सलाह लें, डिस्कस लें और इस समस्या का उपाय

0: आपका हो सकता है।
1: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। और ये एक मैसेज हमारे पास बलजिंदर सिंह जी का आया दिल्ली से। नमस्ते मित्तल मैम और दोनों आयुर्वेद एक्सपर्ट्स को भी नमस्कार। दोनों एक्सपर्ट्स काफ़ी अच्छे से और डिटेल में बता रहे हैं, थैंक्स टू देम एंड एफएम रेनबो। हमारा कार्यक्रम आप एफएम रेनबो और प्रसार भारती ऐप से भी सुन रहे हैं। इनका प्रश्न है कि मेरी मम्मी की एज 50 ईयर्स है, उनकी आंख में सफ़ेद मोतिया की प्रॉब्लम बताई गई है, उनका ऑपरेशन होने वाला है। आयुर्वेद में ये वाला ऑपरेशन क्या लागू होता है? ऑपरेशन के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए और ब्रह्म रसायन कितने टाइम तक यूज करना चाहिए और कौन से मौसम में कर सकते हैं? डॉक्टर नारायण,
2: हाँ, क्वेश्चन पूछने के लिए धन्यवाद आपको। ये जो खाला सफ़ेद मोतिया जो बोलते हैं, एज के हिसाब से होता है, तो कैटरैक्ट हम बोल सकते हैं इसको, सफ़ेद मोतिया। एक खाला मोतिया करके होता है, तो हम ग्लोकोमा उसको सस्पेक्ट करते हैं। तो ये एज के हिसाब से ये जो सफ़ेद मोतिया है, जो कैटरैक्ट है, होता है, तो ये नेचुरल फिनोमेना है। इसमें क्या होता है, तो जो लेंस फाइबर्स है हमारा, वो डीनेचुरेशन हो जाता है लेंस फाइबर्स में। जैसे ही डीनेचुरेशन ऑफ द लेंस फाइबर्स होता है, हमें जो ओपेसिटी डेवलप होता है, तो उम्र के हिसाब से जो ये होता है, तो इसको हम अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। और ऐसा भी लोग मिलते हैं हमें, इवन 70+ 80+ होता है, उनको बिल्कुल भी कैटरैक्ट नहीं रहता है। तो उसमें और इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है? हो सकता है उनका खान पान में हो डिफरेंस हो सकता है, या कोई व्याधि से पीड़ित हुआ है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आजकल का दिन में बहुत सारा लोगों को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, और साथ साथ में हाइपोथायरायडिज्म है, हाइपरथायरायडिज्म है, और फॉर एग्जांपल दूसरा जो डिसीजेस है ग्लोकोमा के साथ अगर एसोसिएटेड है, तो इसमें सफ़ेद मोतिया होने का चांसेस रहता है। जो ब्रह्म रसायन बताया हुआ है, ये स्पेसिफिकली जो सफ़ेद मोतिया है उसके लिए तो नहीं है। तो हमें जनरल, एज ए जनरल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए हमें ब्रह्म रसायन यूज़ कर सकते हैं। ब्रह्म रसायन का डोज जो है, तो वयस्कों के लिए अलग हो सकता है और बच्चों के लिए भी अलग हो सकता है। जो अगर ब्रह्म रसायन को एज ए जनरल टॉनिक लिखा हुआ है, तो हम इसको लगभग एक महीने तक हम ले सकते हैं। साथ साथ में उसको आपका नियरेस्ट जो फिजिशियंस है, अवेलेबल डॉक्टर है, उनसे सलाह लीजिए, उनसे तपासन कर लीजिए। और आपके लिए हमारा जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, ये स्पेशलिटी ओरिएंटेड ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। ये सरिता विहार में, आपका दिल्ली में ही, आप एक बार विजिट करके सलाह ले लीजिए और तपासन करा लीजिए।
1: ऐसा ही एक सलाह हमारे दूसरे श्रोता भी मांग रहे हैं और वो भी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो आयुर्वेद इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं क्या, तो इनको भी बता दीजिए डॉक्टर साहब। संजीव कुमार इनका नाम है, 44 ईयर्स एज है, रेजिडेंट हैं ये विलेज खुखानी, तहसील इंद्री, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा के। और इन्होंने बहुत सारी समस्याएं लिखी हैं, बहुत लंबा मैसेज है, मैं पूरा ले नहीं पाऊंगी, समय की कमी है, पर लिखा है कि मैं बहुत तरह के इलाज करा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा खांसी है, बुखार भी है, खांसते समय आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, चक्कर भी आता है, और एलर्जी भी बताई गई है इनको, OCD भी बताया गया है। तो ये चाह रहे हैं कि ये क्या नेशनल आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आ सकते हैं, क्या वहाँ इलाज फ्री में मिलेगा? मेरे पास आयुष्मान कार्ड भी है, BPL कार्ड भी है।
2: अच्छा, धन्यवाद आपको ये प्रश्न पूछने के लिए। जो जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो न्यू दिल्ली में है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा संस्थान में आज तक भी जो BPL कार्ड होल्डर है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। जो IPD प्रोसीजर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो मेडिसिन है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप अगर आपका बीमारी बहुत सारा जगह में दिखाया हुआ है, उसको अभी इलाज ठीक से नहीं मिला है, आपको आराम नहीं मिला है, आप कभी भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को आप विजिट कर सकते हैं। हमारा स्पेशलिटी ओरिएंटेड स्पेशलिस्ट है। फॉर एग्जांपल आपका रेटिना का प्रॉब्लम है, रेटिना देखेंगे। अगर आपको सार्वदेहिक कोई प्रॉब्लम है, तो जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में देखेंगे। ऐसा ही आपका बहुत सारा बीमारी का लिस्ट है, तो डेफिनेटली जो भी हम अच्छा करेंगे, तो द बेस्ट पॉसिबल वे हम आपको ट्रीटमेंट करेंगे, और द वर्स्ट पॉसिबल वे है हम आपको सलाह देंगे। और हमारा ध्येय यही है, ट्रेडिशन विद द टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एग्जामिनेशन का है, इन्वेस्टिगेशंस का है, हमारा इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। और अधिक विवरण के लिए हमारा वेबसाइट आप विजिट करिए, उसमें कौन सा स्पेशलिटी है, कौन सा टाइम में आना है, कौन सा OPD में, डिटेल आपका उपलब्ध मिलेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब आपको भी धन्यवाद कि इतनी विस्तार से आपने इनकी समस्या का समाधान किया, और ऐसे बहुत सारे श्रोता होंगे जो जानना चाह रहे होंगे।

0: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के बारे में, और सीजीएचएस में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं
1: जी
0: जैसा डॉक्टर विनोद हमको बता रहे हैं, आप भी वहां पर सीएमओ हैं। तो एक हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो
0: जी
2: मेरा।
0: जी आप अपना नाम बता दें।
2: मेरा नाम सना।
0: सना आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही है, बहुत कम आवाज आ रही है, थोड़ा सा पास आ जाएं फोन के।
2: हेलो
0: जी जी बोलिए।
2: हेलो
0: हाँ अब आपकी आवाज आ रही है जी, पूछिए क्या पूछना है।
2: तो मैम मेरे पे एक तो जो लगातार वेट लॉस होता है उसमें कौन सी औषधि कारगर होगी, और जो पिंपल्स वगैरह क्या उसके लिए कोई टेस्ट है।
0: आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर हमें मिली है, लेकिन मैं जितना समझ पा रही हूँ शायद पिंपल्स के लिए जानना चाह रही हैं और वेट लॉस के लिए, एम आई राइट।
2: जी
0: जी जी चलिए डॉक्टर साहब बताएं। डॉक्टर विनोद
1: देखिए लगातार अगर सुरक्षित और घरेलू औषध कोई वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली औषध है हरड़, हरिद्की का यूज कर सकते हैं आप, त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध है। आप पानी को चौथाई उबाल के छान के उसका प्रयोग करेंगे उससे भी वेट लॉस होता है। इसके अलावा आप आहार में परिवर्तन करें, आप मिलेट्स में जौ का प्रयोग करके, चने का प्रयोग करके भी आप अपने वेट का लॉस कर सकती हैं। इसके अलावा आप जो एक्ने या पिंपल्स हैं उनके लिए भी आयुर्वेदिक औषधि आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक घरेलू उपाय मैं इनको बता सकता हूँ, सेमल का जो पेड़ होता है उसमें जो कांटे होते हैं यदि उनको छील लें आप और उसको दूध या गुलाब जल या पानी में घिस के जो उसका लेप बनता है उसको उन पे आप मुख पे मुखलेप कर दें, आप देखिए वो दाने बैठ जाएंगे और आपका जो उसके बाद निशान नहीं पड़ेंगे आपके, तो उसका आप घर पे प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी तमाम औषधियां हैं। कोष्ठ शुद्धि रखे यानी आपका पेट साफ रहना चाहिए, कई बार कॉन्स्टिपेशन के कारण भी लोगों को इस तरह की समस्या है, कभी कभी महिलाओं में विशेषता जहां पीरियड्स की समस्या है, अगर वो है तो अपने आप चिकित्सक से मिलके इस समस्या को करें निदान, तो उससे भी आपकी समस्या ठीक हो सकती है। एक और गंभीर जो समस्या है पीसीओडी कहते हैं या पीसीओएस होता है, उसके वजह से भी लोगों का लगातार वेट गेन हो रहा होता है, उसकी भी आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा आप वजन घटा सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। और एक और समस्या है जिसमें वेट होता है गेन बीमारी के कारण, दैट इज हाइपोथायराइडिज्म, कफसोत बोलते हैं हम इसमें अपने यहाँ, तो इसकी भी चिकित्सा के द्वारा आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकती हैं और लाभ ले सकते हैं।
0: जी इसी से रिलेटेड प्रश्न अभी मेरे पास सामने दिख गया मुझे, इन्होंने लिखा है कि इनकी एज 77 है और इनको थायराइड है, क्या आयुर्वेद से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इन्होंने लिखा।
1: हाँ बिल्कुल हो सकता है, एज 77 है
0: जी,
1: तो ये कुछ औषधियां हैं हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ कांशनार गुगलू का प्रयोग करते हैं, गुगलू वेट रिडक्शन भी है और कांशनार जो है दोनों मिलके थायराइड पे भी है काम करते हैं, थायराइड ग्लैंड पे भी काम करते हैं, जिससे कि थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन का जो है वो लेवल पे आता है। पर इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं इनके वेट गेन के, उन सब की चीज़ों के लिए आप अपने वैद्य के साथ मिलके आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ मिलके इसको डिस्कस करें, क्योंकि ज़्यादा एज होने की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, तो उसके द्वारा ही औषध का प्रयोग करें।
0: जी प्रश्न तो बहुत सारे मैसेज के माध्यम से आ चुके हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है ज़रूरी है पूछना मेरे लिए। डॉक्टर नारायण आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की बात करते हैं तो मैंने सुना है बहुत रिसर्च वर्क भी वहाँ पर हो रहा है सर्जरी के अलावा, जैसे आपने बताया कि सर्जरीज भी वहाँ की जाती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और ख़ासतौर पर जो ये नेत्र के क्षेत्र में किस तरह की एडवांसमेंट्स हम देख सकते हैं।
3: जी मैडम, ये है तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है इसे रिसर्च ओरिएंटेड, एकेडमिक रिसर्च एंड सर्विस ओरिएंटेड हमारा जो इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में बहुत सारा हर एक स्पेशलिटी में, फॉर एग्जांपल आप गायनेक एंड ऑब्स्टेट्रिक्स लीजिए, ईएनटी लीजिए, ऑप्थाल्मोलॉजी लीजिए, जनरल सर्जरी लीजिए, ऑर्थोपेडिक लीजिए, डेंटल सर्जरी लीजिए, और योगा लीजिए, तो हर एक हम

0: ड्राई आई सिंड्रोम जो अभी जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भी है तो इस हैव अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर देयर, तो उसका ट्रीटमेंट भी है। बट ट्रीटमेंट क्या है, तो हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन यूज़ करना है। लाइफ लॉन्ग हमें जो ड्रॉप्स यूज़ करना पड़ेगा, देर आर सर्टन कंडीशंस, सभी कंडीशंस में हमें लाइफ लॉन्ग यूज़ करना ऐसा नहीं है, देर आर फ्यू कंडीशंस हमें लाइफ लॉन्ग यूज़ करना पड़ता है। तो लोगों के मन में ये है, आयुर्वेद में क्या है, आई ड्रॉप्स होता है, आयुर्वेद में क्या ऑइंटमेंट होता है आँख में डालने के लिए, हाँ होता है, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ अंग्रेजी में जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो आई ड्रॉप है, जो ऑइंटमेंट है, जो टैबलेट्स है, ऐसा ही हमारा डेवलपमेंट हम कैसा कर जाएंगे, इसका क्वालिटी कंट्रोल कैसा करेंगे, इसका न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी हम यूटिलाइज करके एग्जामिनेशन कैसा करें, और इसका जो रिसर्च डाटा अवेलेबल है, हमारा जो इंडेक्स्ड पब्लिकेशंस है, इंडेक्स जर्नल्स है, हमारा पब्लिश भी किया हुआ है, बहुत सारा ऐसा रिसर्च है, ड्राई आई सिंड्रोम के ऊपर रिसर्च हुआ है, इसका डायग्नोसिस लेके, इसका ट्रीटमेंट लेके, उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट लेके रिसर्च हो रहा है, डायबिटिक क्रेटिनोपैथी जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो बहुत सारा ऐसा बीमारी है हमें ट्रीटमेंट नहीं है, डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर वन वंस इट हैपन्स, हमारा जो है एंटी VEGF इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जो रेटिना के अंदर हमें इंजेक्शन लगाते, तो ये भी परमानेंट इलाज नहीं है। और दूसरा ऐसा लीजिए, ब्लेफरोस्पाज्म है, ब्लेफरोस्पाज्म इज ऑल्सो ट्रीटमेंट, देर इज नो सच ए कन्विंस्ड ट्रीटमेंट इन द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ऐसा ऐसा बहुत सारा बीमारी है जो इलाज बहुत सारा जगह में नहीं मिलेगा, ऐसा ही पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसके लिए हम पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके, फॉर एग्जाम्पल ये लेके OCT है, फंडस कैमरा है, तो लेटेस्ट कॉर्नियल टोफोग्राफी है, ऐसा जो लेटेस्ट डायग्नोस्टिक टूल्स हमें यूज़ करके उसको डायग्नोस करते, इसके बाद आयुर्वेद के अनुसार दोष का विशेषण के अनुसार हमें ट्रीटमेंट करते, और रोगी स्वस्थ भी होता है। ऐसा नहीं है सभी रोग स्वस्थ हो जाएंगे, तो देर आर सर्टन कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते, ऐसा कंडीशन में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द पेशेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, जो हमारा रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा ऐसा एक कंडीशन है, वो कफा विदग्ध दृष्टि करके हमें उसको ले सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। ऐसा बहुत सारा छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग अडल्ट इंडिविजुअल्स है, देर इज नो ट्रीटमेंट इन द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ऐसा बीमारी का पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं, आयुर्वेद में शास्त्र में बता आयुर्वेद शास्त्र में ये भी बताया है, जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारा चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, हमारा जो परिश्रम है करना चाहिए। इसी के हिसाब से ट्रेडिशन विद टेक्नोलॉजी, इलनेस टू वेलनेस एंड वेलनेस टू हैप्पीनेस प्रिंसिपल लेके अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है उसका चिकित्सा का, उसका ध्येय का अनुपालन करते हैं।
1: बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा मैसेज आज के दिन डॉक्टर नारायण आपसे हमें मिला। अब चलते चलते आपका भी एक मैसेज सुनना चाहेंगे श्रोताओं के नाम।
2: इसमें जो मैं जानकारी देना चाहता हूँ लोगों को, बड़ी अच्छी जानकारी है। देखिए, नेत्र रोगों में हम जो पंचकर्म चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं, उसमें नेत्र तर्पण है, शिरोधारा है, नस्य कर्म है, और सर्वदेह शोधन में विरेचन कर्म है। इनका प्रयोग करके जो दोषिक स्तर पे दोष बढ़े हुए हैं उनको हम बहुत आसानी से घटा सकते हैं। इवन ड्राई आई जो है उसमें हम लोग स्नेह पान करा के, घृत पान करा के शोधन कराते हैं, उसके बाद नेत्र तर्पण करते हैं, तो इन चिकित्साओं से अतिशय लाभ है। जहाँ कन्वेंशनल मेडिसिन से नहीं रिजल्ट आता है, तो ये बहुत सरल तरीके से उपलब्ध हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आजकल इनका उपयोग हो रहा है, तो लोग इनका लाभ ले सकते हैं। अभी राज्य सरकारों में भी उपलब्धता है, भारत सरकार में कई चिकित्सालयों में तो है ही है।
1: जी, तो आज जैसा मुझे शुरू में लग रहा था डॉक्टर साहब, हम बहुत सारे श्रोताओं से माफी मांगना चाहेंगे क्योंकि उनके मैसेजेस हमारे तक आए पर हम, क्योंकि समय की थोड़ी कमी रही, लेकिन जानकारी भरपूर आपको मिली क्योंकि दोनों ही विशेषज्ञों ने बहुत कुछ ऐसा बताया जो आप जानना चाहते थे और कहीं ना कहीं वो जवाब आपको मिल गया क्योंकि वो प्रश्न भी आपके कहीं उसके इर्द गिर्द ही थे। तो अब समय नहीं है, बस मैं धन्यवाद ही दे सकती हूँ हमारे श्रोताओं को और हमें लिखने के लिए, हमें सुनने के लिए, और हमारे जो आज के रेडियो डॉक्टर हैं जो आज विशेष तौर पर आयुर्वेद दिवस पर यहाँ आए हैं, पधारे हैं स्टूडियो में। समय निकालकर मैं धन्यवाद दूंगी डॉक्टर विनोद कुमार यादव को जो CMO CGHS आयुर्वेद हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर नारायण बावालती को जो एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ शालाक्य तंत्र ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।
2: धन्यवाद।
1: और अब स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर

आज शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि सांकेतिक भाषा संचार, अभिव्यक्ति और समावेशन का एक सशक्त माध्यम है। 11वां आयुर्वेद दिवस आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला स्की टीमों ने कांस्य पदक जीता। जय मीरा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा और महिला और पुरुष दोनों टीमों ने निशानेबाजी की स्की स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वेल दोस्तों, अभी आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम दिशा, सो स्टे ट्यून्ड।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
2: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, आज के प्रोग्राम का विषय बताने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक बार दिल ने दिमाग से कहा कि तुम अगर सोचने की बजाय शरीर के बाकी अंगों को धन्यवाद कहना शुरू कर दोगे तो शरीर का हर अंग हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा और फिर ना बीमारी होगी और ना ही होगी कोई टेंशन। इतना सुनकर दिमाग ने दिल से पूछा कि क्या सिर्फ शुक्रिया कहने से ऐसा हो जाएगा? ये सुनकर दिल मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ, शुक्रिया धन्यवाद कहने से स्वयं को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी आनंद प्राप्त होता है।
3: मैं मीनाक्षी त्रिवेणी नगर लखनऊ से हूँ। आभार व्यक्त करने वाले को बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने उन विद्यार्थियों की जो कि पढ़ लिख कर आज किसी न किसी अच्छे पद पर कार्यरत हैं या और भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी अपने शिक्षकों को भूले नहीं हैं। कहते हैं कि आपकी बदौलत ही आज मैं इस पद पर कार्यरत हूँ।
2: जी हाँ, जब इंसान धन्यवाद बोलता है तो सारी कायनात भी प्रसन्न होकर उसके जीवन में खुशियों की बारिश करने लगती है। लेकिन दोस्तों, आज के स्वार्थी जमाने में इंसानों की सोच न सिर्फ अपने तक सीमित होती जा रही है बल्कि अपने अहंकार में वो भूलता जा रहा है धन्यवाद करना। दोस्तों, लबों पर धन्यवाद आना कैसे जीवन में आनंद लाता है, करेंगे आज हम इसी पर बातचीत, लेकिन इस गीत के बाद।

0: जी हाँ, शुक्रिया के लफ्ज ना सिर्फ खुशी लाते हैं बल्कि रिश्तों को भी और मजबूत बनाते हैं। और दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू संतोष।
0: विनीता जी, हमने आपका स्वागत किया और आपने मुझको थैंक्स कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: संतोष, आजकल ये कम सुनने को मिलता है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, ये बहुत कम सुनने में नहीं आता। आपने नहीं नोट किया
0: जी?
1: कितने जन है जो आजकल आपको पलट के थैंक यू करते हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। अभी हाल ही का एक किस्सा बताती हूँ। मैं अस्पताल गई थी अपनी माताजी को लेके, और वहां पर जो डॉक्टर उनकी जांच कर रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया उनके नाम पर कि क्या नाम था। जान पहचान का अस्पताल था तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जांच पड़ताल हो गई और जब मैं मम्मी को लेके घर वापस आ गई, तब मुझे एहसास आया कि ये डॉक्टर को तो शायद मैं पहचानती हूँ। और जब मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला और उनकी लिखी हुई पूरी रिपोर्ट को पढ़ा, तब मुझे ध्यान आया कि इसकी माँ को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसकी माँ एक कैंसर पेशेंट थी और हमने उनकी बहुत सहायता करी थी जब वो बहुत बीमार थी, परेशान थी। लेकिन आज उनका वो बेटा जो आज डॉक्टर बन गया है, जो उन दिनों में जब वो बीमार थी तो वो पढ़ाई कर रहा था डॉक्टर की
0: जी,
1: वो हमें अच्छी तरह पहचानता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी उसने पहचानने से इनकार कर दिया। तो मैं थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गई कि किस तरीके से लोग इतने खुदगर्ज होते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है संतोष, हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनकी हमने बहुत सहायता की होती है, बहुत दुख तकलीफ में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, हम उनकी सहायता करते हैं, लेकिन जब उनका अच्छा समय आता है तो थैंक यू कहना या धन्यवाद कहना या याद करना तो छोड़ो, वो तो हमें पहचानते भी नहीं।
0: विनीता जी, तो शायद ऐसे ही लोगों के लिए 21 सितंबर को विश्व आभार दिवस मनाने का सिलसिला शुरू हुआ 1966 से।
1: संतोष, मुझे लगता है कि हमें घर में अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि थैंक यू जरूर करना है, धन्यवाद करना है
0: जी,
1: चाहे घर में माता पिता हों, बड़े बुजुर्ग हों, और धन्यवाद करना, थैंक यू करना, उनका आभार मानना है ना। और अगर शादीशुदा है तो पति पत्नी एक दूसरे को थैंक यू करना, धन्यवाद करना। मतलब अक्सर ये देखा जाता है कि अपनों को थैंक यू थोड़ी कहा जाता है, और बड़े लोग तो बिल्कुल भी थैंक यू नहीं करते, बड़े लोग क्यों धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद इतना सुंदर शब्द है कि हम उस इंसान को अप्रिशिएट कर रहे हैं जिसने हमारे लिए कुछ किया, चाहे वो हमसे बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे हम उसके माता पिता हैं, चाहे वो हमारा बेटा है। लेकिन धन्यवाद करने में हम छोटे नहीं हो जाते हैं
0: जी,
1: हम अप्रिशिएट करते हैं एक अच्छे मन से। अगर कोई हमारी सहायता करता है तो हम उनको एहसास दिलाते हैं कि हमको उनके एहसान याद हैं। और ये सही बात है कि आजकल की दुनिया में लोग बिल्कुल ना शुक्रगुजार हैं।
0: विनीता जी, जमाना बदल रहा है और लोगों की सोच और मानसिकता भी समय के साथ साथ बदल रही है। एक बात बताइए, हमको किन किन बातों के लिए और किन किन लोगों के लिए धन्यवाद हमेशा करते रहना चाहिए?
1: संतोष, सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है हमारे जीवनों में, क्योंकि अगर ईश्वर, परम ईश्वर ही हमारे साथ ना हो, हमारे लिए द्वार ना खोले, हमारे लिए बड़े बड़े काम ना करे, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। हम तो इतने हताश निराश इंसान हैं, मानव हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना। दूसरा जो धन्यवाद करना है वो है हमारे माता पिता, जो हमारे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सख्त मेहनत करता है ना, ताकि अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सके, उनका धन्यवाद करना। और सिर्फ मन में नहीं करना बल्कि मुख से बोलना, मुख से धन्यवाद करना।

0: कि पिताजी माताजी अगर आप हमें यहाँ तक नहीं पहुँचाते तो हम आगे जा ही नहीं सकते थे
1: जी।
0: तीसरा, अपने अध्यापकों का धन्यवाद करना जिन्होंने हमको दिशा दिखाई, राह दिखाई।

हो चाहे रिश्तेदार हो, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उनके बिना हमारी नैया पार नहीं होने वाली थी। अक्सर क्या होता है कि जब हमारा काम हो जाता है हम सब भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं मतलबी। मतलब निकल गया तो पहचानते।

0: विनीता जी, इस गीत से पहले आपने बताया कि धन्यवाद करना क्यों जरूरी है और किन किन लोगों का धन्यवाद तो करना लाजमी है। आप इस कार्यक्रम के जरिए किन किन लोगों का धन्यवाद अभी करना चाहेंगी?
1: मैं अपने तमाम श्रोताजनों का धन्यवाद करती हूँ जो निरंतर हमसे बातचीत करते हैं, हमारे सलाहकारों से बात करते हैं, हमें टेक्स्ट मैसेजेस लिखते हैं और हमको प्रोत्साहित करते हैं और सशक्त करते हैं। आप जब हमको हिम्मत बंधाते हैं तब हम और आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सबका तहे दिल से दिशा टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। और दोस्तों, लाइफ कोच KD सूरी जी आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं।
2: धन्यवाद एक ऐसी डिवाइन वर्च्यू है, ईश्वरी गुण है, जो जितना ज्यादा हम एक्सप्रेस करेंगे, जितना ज्यादा हम लोगों तक प्रेषित करेंगे, उतनी ज्यादा ईश्वरी कृपा हम सबकी लाइफ में होने लगती है। तो सोचेंगे तभी तो धन्यवाद देंगे। दिन में हम गाड़ी चलाते हैं, कितने सुख शांति के साथ घर वापस आ जाते हैं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, चोट नहीं लगी, ईश्वर को धन्यवाद दें। हमें कोई बीमारी नहीं हुई, ईश्वर को धन्यवाद दें। इस प्रकार एक ऐसी हम अपनी आदत डाल लें जिससे कि धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की हमारी जो एबिलिटी है वो परमेश्वर के द्वारा हमें और अच्छा इंसान बनाएगी।
0: जी हाँ, अच्छा इंसान अपने अच्छे व्यवहार और अपनी अच्छी बोलचाल से ही बनता है। याद रखिए, आभार व्यक्त करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार तो होता ही है, तनाव भी कम होता है और साथ ही साथ आपसी रिश्ते भी मजबूत होते जाते हैं।

अगर आप दिशा प्रोग्राम से जुड़े लोगों को धन्यवाद कहना चाहते हैं तो आप 7678438471 पर फोन या मैसेज करके धन्यवाद कह सकते हैं, और आप इसी नंबर पर हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। 7678438471।

0: तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। हर जनरेशन के अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने एस्पिरेशंस और अपनी एक अलग सोच, और इन ड्रीम्स को डायरेक्शन देने में कैंपस लाइफ का होता है इम्पोर्टेंट रोल। कॉलेज सिर्फ क्लासरूम्स, लेक्चर्स और एग्जामिनेशंस का नाम नहीं है बंधु, ये वो फेज है जहाँ यंग माइंड्स नॉलेज के साथ एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, अपनी चॉइसेस को समझते हैं और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। सो नए आइडियाज, नए एक्सपीरियंसेस और इन सब के बीच अपने ड्रीम्स को मिलती है एक नई डायरेक्शन। और इसी कैंपस लाइफ को थोड़ा और करीब से जानने के लिए अल्फा जेन लेकर आता है हर वेंसडे आकाशवाणी रेनबो पर कैंपस कॉलिंग एडिशन, जहां आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका वर्मा। तो आज के कैंपस कॉलिंग एडिशन में बंधु बात होगी कालिंदी कॉलेज की, जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड। ये गर्ल्स कॉलेज है दोस्तों, जिसकी जर्नी 1967 में शुरू हुई थी। ईस्ट पटेल नगर में लोकेटेड इस कैंपस का मोटो है ज्ञानम शीलम धर्मेशम भूषणम, यानी नॉलेज, मॉडेस्टी और सेंस ऑफ ड्यूटी को लाइफ के असली ऑर्नामेंट्स माने गए हैं। तो चलिए इस कैंपस की कहानी को और करीब से जानते हैं हमारी सहयोगी ऋचा के साथ, जो लेकर आ रही है कालिंदी कॉलेज की कहानी वहाँ के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स की सुबाने।
4: एल्फोजन कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में आज मैं आई हूँ कालिंदी कॉलेज। इस कॉलेज की बहुत ही खूबसूरत सी वाइब्रेंट लड़कियाँ मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम रुक्मणी यादव है, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ।
4: हिस्ट्री, जहाँ पर बहुत सारी डेट्स याद रखनी पड़ती है, तो कैसे डेट्स याद रखती है इतनी सारी?
5: मैं ये बोल सकती हूँ कि ये मेरा हिस्ट्री का पैशन है जो मुझे इतनी डेट्स लर्न करने के लिए मोटिवेट करता है, और मुझे बचपन से हिस्ट्री से बहुत प्यार रहा है, जिससे मैं अपनी सारी इवेंट्स, सारी डेट्स लर्न करने के लिए मोटिवेटेड रहती हूँ। मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स समथिंग आई एंजॉय।
4: वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। तो अगर जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या वो बच्चे जो अभी हिस्ट्री पढ़ते हैं, यही शिकायत करते हैं इतनी सारी डेट्स, इतने सारे इवेंट्स कैसे याद रखें, क्या कोई टिप है आपके पास उनके लिए?
5: मेरे पास यही एक टिप रहेगी कि आप इवेंट्स को ऐसे याद करिए कि जैसे वो एक स्टोरी टाइम की तरह है। अ स्टोरी इज ऑलवेज इजियर टू बी रिमेम्बर रादर देन समथिंग जो हम एकेडमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें अपना जरिया बदलना है देखने का।
4: हिस्ट्री में आगे आप क्या करना चाहती हैं, आपका ड्रीम करियर क्या है?
5: मेरा ड्रीम करियर एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना है। उसके लिए मैंने मतलब बचपन से ही मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइना की सिविलाइजेशन को देख के हमेशा फैसिनेट होती थी, और अभी भी बहुत चीजें हैं जो अभी भी फाउंड आउट नहीं करी गई है। इन फ्यूचर ये हो कि मैं भी एक आर्कियोलॉजिस्ट बनूं और मैं ही उनके बारे में फाउंडिंग्स करूं।
4: या फर्स्ट ईयर में अभी अभी जस्ट स्कूल खत्म हुआ है, तो स्कूल की ऐसी कौन सी हैबिट है, कौन सा ऐसा रूल है जिसे आप लेकर कॉलेज में आई है और वो कॉलेज में ही परस्यू करेंगी आप?
5: मुझे किसी भी पार्टिसिपेशन में जाने से हेजिटेट नहीं करना है। इन स्कूल आई वाज ऑलवेज एक्टिव इन इवेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड वही रूल मैंने अभी अपनाया है कि मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत सारी पोजीशंस भी होल्ड कर ली है कॉलेज में आके।
4: कॉलेज में कौन कौन सोसाइटी है जिसमें आप एनरोल्ड हैं?
5: मेरी जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की सोसाइटी है धरोहर, उसकी मैं जॉइंट लॉजिस्टिक सेक्रेटरी हूँ, और मैं अभी स्टूडेंट यूनियन की आर्ट रिप्रेजेंटेटिव हूँ फर्स्ट ईयर।
4: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ऐसी कौन सी आपकी अचीवमेंट है जिसपे आपको बहुत गर्व है?
5: मैंने बहुत अच्छा कॉलेज एक्वायर करा इन दिल्ली यूनिवर्सिटी आफ्टर अ लॉन्ग जनरेशनल गैप, और अभी मैंने बहुत सारी पोजीशंस भी होल्ड करी है, तो आई एम वेरी प्राउड कि मेरे पेरेंट्स प्राउड है।
4: बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करती रहे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
5: थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर।
6: मेरा नाम प्रिया कुमारी है, मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ।
4: कालिंदी कॉलेज के बारे में आपको कैसे पता लगा?
6: यस मैम, मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय गौतम बुद्ध नगर से करी है, तो वहाँ के जो टीचर्स मुझे पढ़ाते थे उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि कॉमर्स के लिए डीयू आप सेलेक्ट करो, और जो उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट बनवाई थी उसमें उन्होंने एज अ वुमेन्स कॉलेज है कालिंदी कॉलेज, तो इसको ज्यादा प्रेफर किया क्योंकि इसकी कालिंदी कॉलेज में एकेडमिक्स बेस्ट।
4: तो आप बोर्डिंग में पढ़ी हुई है, ऐसी कौन सी हॉस्टल की याद है जो आपको यहाँ आकर बहुत आती है?
6: मैम, हॉस्टल में तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि वहाँ पे हम लोग फोन यूज ही नहीं करते थे, 6 से 12 तक हमने फोन यूज नहीं किया, और वो जो लाइफ होती थी वो बिल्कुल ही अमेजिंग होती थी स्टूडेंट्स के साथ, टीचर के साथ। गार्डन में पार्किंग, रनिंग, स्पोर्ट्स, सब कुछ होता था वहाँ पे। मैस में खाना खाने जाना टाइम टू टाइम, मॉर्निंग वॉक करना, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, एवरीथिंग इज देयर, दैट इज बेस्ट।
4: आपने बहुत अच्छी बात कही कि वहाँ फोन

0: अलाउड नहीं था। और आज के टाइम की जो जो यंग जनरेशन है, जो जेंजीज है, वो फोन को लेके बहुत एडिक्शन है उनमें, वो एक पल भी फोन के बिना नहीं रह सकते। तो अगर हम ये वो कहते हैं कि फोन नहीं है हमारे पास तो हम बोर हो जाते हैं। बिना फोन के भी आप कैसे एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैम अपना एक फ्रेंड सर्कल ऐसा क्रिएट करना चाहिए जो कि उसमें सारे तरीके का फन हो, एजुकेशन हो, वो पढ़ाई कर सकते हैं, अपने करियर को लेके। तो हमें अपना ऐसा सर्कल क्रिएट करना चाहिए जिसमें कि हम अपना माइंड का यूज कर सके।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने कि बिना फोन के भी एक जिंदगी है और वो सबसे हसीन है, सबसे खूबसूरत है। आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम।
2: चलिए इस खूबसूरत बातचीत के नाम डेडिकेट करते हैं कालंदी कॉलेज के हमारी जेंसी गर्ल्स को ये ट्रैक, बादल पे पाऊं।

0: आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर अल्फा जेन प्रोग्राम और फिलहाल अभी समय है एशियन गेम 2026 की अपडेट का।
7: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
8: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। हम लेकर आ रहे आपके लिए, घड़ी में बज रहे हैं 4:30 और इस

0: बाद एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। हम लेकर आ रहे आपके लिए घड़ी में बज रहे हैं 4:30 और इस वक्त के लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त यहां पर है मौजूद शाहिद आजमी भी। और सबसे पहला अपडेट

0: at the semi-final tie. By the way, India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event. Shahid, a disappointing day for our shuttlers.
1: Ji bilkul, badminton se ummeed achhi thi, lekin haan ye bhi tha mazboot pratidwandi hamare khiladi hain. Ushu ki baat kar lete hain. Asian Games mein do baar medal jeet chuki Naurem Roshibina Devi, mahila 60 kg sanda semi-final mein Indonesia ki Thania Kusumantias ko 2-0 se haarkar final mein jagah bana li hai. Roshibina ne Hangzhou 2023 mein silver medal aur jabki Jakarta Palembang Asian Games 2018 mein bronze medal jeeta tha. Asian Games mein apna teesra medal pakka kar chuki Roshibina ab kal hone wale final mein apne padak ka rang badalna chahengi kyunki silver aur bronze pehle jeet chuki hain.
0: Right, here's wishing her all the very best. Canoe sprint ki bhi thode se updates leke aapke liye aa rahe. India men's kayak 4-500 meter team finished third in the heats and qualified for the final A. Arun Singh, Harshvardhan Singh, Shaktawat, Varinder Singh or Naucha Singh Oinam are going to be representing India in the final A category. Wahi Megha Pradeep finished fifth in the women's canoe single 200 meter heats with a timing of 49.675 seconds and qualified for the semi-finals. Sonia Devi and Parvati Geeta ended sixth in the women's kayaks double 500 meter heats with a timing of 2 minutes 02.538 seconds. They have also qualified for the semi-finals. Wahi in the men's kayak double 500 meter heats, Chempa Dale, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished in the fifth spot and have qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the fifth spot also and qualified for the semi-finals.
1: जी यहाँ पर शूटिंग की बात कर लेते हैं. हालांकि जो हमारी स्टार शूटर थी, चाहे मनु भाकर की बात हो, ईशा सिंह या सुरुचि, वो पदक की दौड़ से बाहर हुई, लेकिन स्कीट में बड़ी खबर आई. शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल जो ब्रॉन्ज मेडल की खबर आई है, उसमें स्कीट टीम इवेंट में भारतीय निशानबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम कर लिए. सबसे पहले बात महिला स्कीट टीम की करते हैं. राजा ढिल्लों, परिनाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिगड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किए और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया. और इसके बाद पुरुष स्कीट टीम ने भी कमाल कर दिया. ओलंपियन अमरजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भौतिक सिंह ने मिलकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिला दिया.
0: जी और टीटी की दुनिया से भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं कि दोनों ही मिक्स डबल पेयर्स हमारे जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सबसे पहले हरमीत देसाई और यशस्वनी घोरपड़े, उन्होंने हरा दिया 3-1 से हांगकांग के यू क्वान तो और विंग लैम्प को एंड देयर बाय दे हैव बुक्ड अ प्लेस एंड मूव्ड ऑन टू द लास्ट एट. वहीं मनु शाह एंड दिया चिटाले ने भी इन द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में मालदीव के अहमद मूसा और नजीम एशद को हरा कर लास्ट एट में अपनी जगह बना ली टेबल टेनिस में.
1: यहाँ मीराबाई चानू ने जो अपनी पदकों की झोली है, जहां पर एशियाड का कोई मेडल नहीं था, उसको भी उन्होंने भर दिया है. जी हाँ, मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में कुल 98 किलोग्राम, जिसमें 87 किलोग्राम स्नैच और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क का वजन था, उसे उठाकर सिल्वर मेडल जीत लिया और एशियन गेम्स में जो मेडल का सूखा था वो खत्म कर दिया.
0: राइट, और हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे आज मेडल टैली की और किस तरह से भारत का भी दिन रहा है, तो ओवरऑल आपको ये बता दें बिफोर कमिंग टू द मेडल टैली कि सॉफ्ट टेनिस के अंदर भी आज के दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छे नोट पर हुई और शायद एशियन गेम्स 2026 की सबसे अच्छी खबर, वन ऑफ द टॉप 10 खबर ये रहेगी कि जय मीना क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन सॉफ्ट टेनिस इन द एशियन गेम्स. ही वन द ब्रॉन्ज मेडल ऑफकोर्स लूजिंग आउट टू तकुया कुरोसाका 2-4 इन द सेमीफाइनल, लेकिन अपने आप में पहला मेडल भारत को मिला शाहिद इन सॉफ्ट टेनिस एवर इन द एशियन गेम्स, अ वेरी बिग अचीवमेंट बाय द इंडियंस आउट देयर.
1: जी बिल्कुल, बिग अचीवमेंट है, अभी अचीवमेंट और भी आना बाकी है जैसे जैसे एशियन गेम्स बढ़ेगा. लेकिन इस वक्त की अपडेट तक, यानी आज की इस अपडेट के लिए आज तक, अब यहीं पर मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को अनुमति दीजिए. अब से ठीक एक घंटे बाद 5:30 पर आपसे मुलाकात होगी. नमस्कार.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
3: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 के अपडेट्स.

0: पर अपने कदम बढ़ने दो। जी हाँ, कालंदी कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक गर्ल्स कॉलेज है, जिसकी जर्नी 1967 में शुरू हुई थी। आज रिचा हमें वहां की कहानी, वहां की जेंसी गर्ल्स की जुबानी हमें सुना रही हैं। सो ओवर टू यू रिचा।
1: क्या नाम है आपका? माय नेम इज रिया जाम। आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का सोशल। ओके, तो अभी अभी आपके कॉलेज की जर्नी जो है वो शुरू हुई है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका?
2: मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं इस कॉलेज में ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँ, जो मैंने सोच रखा है वो मैं उसके पास जा पाऊँ।
1: ऐसी कोई बदलाव जो आप सोसाइटी में देखना चाहें क्या होगा?
2: अकॉर्डिंग टू मी वुमेन्स को लेके होना चाहिए कि वुमेन्स को पर्दा रखना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, हंस के नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत होता है बिहार में और मेनली विलेजेस में बहुत ज्यादा होता है, तो मैं इस चीज में चेंज लाना चाहती हूँ, सोसाइटी में ये चेंज आए।
1: अगर आपको खुद को एक शब्द में बयां करना हो तो वो एक शब्द आपके लिए क्या होगा?
2: कॉन्फिडेंट।
1: एक लड़की के लिए एजुकेशन कितनी जरूरी है, वो किस तरह उसकी लाइफ को चेंज कर सकती है?
2: एजुकेशन एक लड़की के लिए उसका एक ऐसा बैकबोन है जो उसकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। मतलब एक लेडी जो सिर्फ घर में रह सकती है और सिर्फ अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखती है, और जो दूसरी तरफ एक लेडी है जो अपने साथ साथ फैमिली के साथ साथ अपना भी ध्यान रखती है, वो अपने आप को भी उस सक्सेस तक ले जाती है जहां तक उसे पहुंचना है। तो आई थिंक कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। क्या नाम है आपका?
3: अनु।
1: अनु क्या करते हैं आप?
3: मैम मैं अभी बीए परस्यू कर रही हूँ इस कॉलेज से, और मेरा कोर्स है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स।
1: मैं एक रैपिड फायर खेलूंगी आपके साथ और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। आपके सामने दो ऑप्शंस रखूंगी जिनमें से आपको एक चूज करना होगा।
3: ओके।
1: बुक्स और पॉडकास्ट?
3: पॉडकास्ट।
1: ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस?
3: ऑफलाइन क्लासेस।
1: स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ?
3: स्कूल लाइफ।
1: होममेड फूड या कैंटीन फूड?
3: होममेड।
1: फ्रेंड्स, फैमिली?
3: फैमिली।
1: लेट नाइट स्टडी, अर्ली मॉर्निंग स्टडी?
3: लेट नाइट स्टडीज।
1: माउंटेन और बीचेस?
3: बीचेस।
1: जो अर्बन और ये रूरल जो युवाओं के बीच अपॉर्चुनिटी गैप है, इसे हम कैसे कम कर सकते हैं आपके अनुसार?
2: मैं दिल्ली के लास्ट कोने से आती हूँ, नरेला नाम के, तो मैंने अपनी फैमिली में ये चीज देखी है कि क्योंकि वो लोग ना जाने नहीं देते रेगुलर कॉलेज में, और अपने घर से मैं रेगुलर कॉलेज में आई हूँ, मैं ऐसी पहली लड़की हूँ। चाहे मैंने अपने मौसी के बच्चे देखे, बुआ के देखे, अपने खुद के

0: माय कॉम्बिनेशन इज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, द डिपार्टमेंट इज बीए प्रोग्राम।
1: हर साल जब नए बच्चे आते हैं तो एक मन में उमंग आती है कि जब हम आए थे तो ऐसा था और अब ये आए हैं। अपने जूनियर्स, अभी तो नया सेशन शुरू हो चुका है, अपने जूनियर्स के लिए आपकी क्या सलाह है इस बार?
0: हम जूनियर्स के लिए मेरी ये सलाह हुआ कि कॉलेज को पूरा एंजॉय करें। कॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट द क्लासेस एंड नॉट अबाउट द टीचर्स द लेक्चर्स, बट इट्स अबाउट योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप 3 साल रहते हो कॉलेज में, आप कैसे इम्प्रूव करते हो अपने आप को? अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ।
1: अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आप बर्स्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो क्या ऐसा है सच में?
0: हाँ, अगर सही बताए तो यही चीज रियलिटी है। यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बिकॉज अगर आप किसी भी एक इंसान की डेप्थ जानेंगे, कोई भी एक इंसान अगर आप पहले से उनसे मिल रहे होते हो, फर्स्ट टाइम जो आपका इंप्रेशन होता है वो, अगर वो उस इंसान का फर्स्ट टाइम इंप्रेशन कुछ अलग भी हो सकता है आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो। ह्यूमन नेचर के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि हम किसी एक इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा अच्छा नहीं होता है पढ़ने में भी, बट वो थर्ड ईयर तक आते आते इतना इम्प्रूव हो जाता है कि आपको उसका एक अलग वर्जन दिखता है।
1: तो ये भी हमें बता दीजिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्या ऐसा होता है?
0: डिपेंड करता है, मैं सही बताऊं तो अगर आपको लगता है कि आपको अपना इंप्रेशन किसी एक के सामने बहुत अच्छा रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी, अगर आप फील्ड में कुछ कहीं पे भी जा रहे हो, किसी मीटिंग में जा रहे हो, किसी सोसाइटी में मिल रहे हो, किसी जूनियर से मिल रहे हो, तो आपको हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा रखना चाहिए ताकि वो जूनियर या वो इंसान आपको हमेशा याद रखे कि हाँ ठीक है, मैंने लाइफ में किसी इंसान से मिला, वो बहुत अच्छा है, वो चाहे नेचर वाइज हो या किसी भी वाइज।
1: बहुत अच्छी बात की आपने। आपका करंट फेवरेट सॉन्ग कौन सा है?
0: अपना हर दिन ऐसे जियो,
1: तो थोड़ा सा भूना सकती हैं?
0: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो एक पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
1: थैंक यू सो मच, मैं आपसे बात करती हूँ, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।
2: चलिए, कालिंदी कॉलेज की थर्ड ईयर स्टूडेंट शिखा सिंह ने अभी जो गाना गुनगुनाया, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, तो उसी को सुनते हैं फ्रॉम द फिल्म गोलमाल।

0: कॉलेज की जो हमारी जेन जी गर्ल्स हैं, ये पक्का सोच रही होंगी कि ये दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे और इन्हीं कॉरिडोर्स में कल हम सिर्फ याद ही छोड़ जाएंगे। हर लेक्चर, हर हंसी, हर दोस्ती को दिल से जीना है हमें, है ना? क्योंकि कॉलेज लाइफ का हर पल कहता है अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। चलिए चलते हैं अपनी सहयोगी ऋचा के पास, जो है कालिंदी कॉलेज में और बातें कर रही हैं वहां की जेन जी गर्ल्स से, उनके सपनों के बारे में, उनके पर्सपेक्टिव के बारे में जान रही हैं।
1: एल्फाजन कैंपस कॉलिंग में वेंसडे स्पेशल में आज मैं आई हूँ कालिंदी कॉलेज और मेरे साथ यहाँ की और भी खूबसूरत लड़कियां हैं जिनमें से एक से बात करने जा रही हूँ। क्या नाम है आपका?
2: माई सेल्फ आराध्या सिंह एंड आई एम करेंटली परसुइंग माई बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर।
1: आज का जेन जी सफलता चाहता है, सक्सेस के पीछे भागता है, लेकिन आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सक्सेस और हैप्पीनेस?
2: मैम दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है, बट अल्टीमेटली देखा जाए हैप्पीनेस तभी आएगी व्हेन यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। लाइक आपको जो चीज चाहिए, योर पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ यू एंड यू आर ऑल्सो बीइंग सेटिस्फाइड इन योर लाइफ एंड इट विल ओनली कम व्हेन यू आर सक्सेसफुल। सो दैट्स व्हाई सक्सेस फॉलोज हैप्पीनेस।
1: बहुत सही बात कही आपने। अच्छा तो आपकी सफलता के मायने क्या हैं? आप क्या बनना चाहती हैं?
2: मैम मैं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरा भी एम है, मुझे ACCA करना है एंड फॉर दैट अभी मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड आफ्टर दैट मुझे अब्रॉड शिफ्ट करना है।
1: कभी ऐसा मौका मिले आपको कि आपको किसी एक बहुत फेमस व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना है, वो फेमस व्यक्ति कौन होगा और आप उससे क्या सवाल पूछना चाहेंगी?
2: मैम मेरा चाइल्डहुड इंस्पिरेशन, बिकॉज आई लव वॉचिंग क्रिकेट, तो मेरा एक इंस्पिरेशन है विराट कोहली, उनसे मैं मिलना चाहूंगी बिकॉज मैंने उनका स्टोरी देखा है, मैंने उनका स्ट्रगल देखा है फ्रॉम वेयर ही केम एंड द वे ही हैव कैरीड फॉरवर्ड हिमसेल्फ विद हिज फैमिली इन एवरी परस्पेक्ट, इवन इफ इट इज ऑफ करियर, हिज लव लाइफ, एवरीथिंग। आई जस्ट अडोर हिम। और मेरा ये क्वेश्चन होगा कि सर हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग एंड आपकी जो थिंकिंग है दैट माइंडसेट ये कहाँ से आता है? तो दिस इज इट।
1: आपका सक्सेस मंत्रा क्या है जो आप चाहें कि जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगी?
2: मैम कंसिस्टेंसी, बिकॉज एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, बी इट इवन इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर, इफ यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, व्हाट सो एवर, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, बट व्हाट मेक इट इजियर इज कंसिस्टेंसी। इफ योर डेडिकेशन फॉलोज यू एंड यू आर सो कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर गोल, इट मेक इट इजियर टू अचीव दैट।
1: बहुत सही बात कही आपने, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।
2: थैंक यू मैम।
3: माय नेम इज अनम खादिम एंड आई एम फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टूडेंट एंड फर्स्ट ईयर। तो आप कहाँ से हैं?
4: मैं बिहार से आई हूँ।
1: तो बिहार से यहाँ तक का कैसे सफर आपने तय किया?
4: बिहार से यहाँ तक का सफर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज ये सारी चीजें मैंने खुद से करा। ये दिल्ली के बारे में जब मैं अपना 12th क्लासेस कर रही थी, देन मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे दिल्ली पढ़ना है। देन आई सर्च कि दिल्ली में पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देन मैंने CUT के बारे में सारी चीजें जानी, फिर मैंने CUT का एग्जाम दिया, फिर मैं क्लियर करके सारी चीजें मैंने खुद से करके फिर मैं दिल्ली आई हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं बिहार की मतलब अपने गांव की मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो अपने गांव से निकल के दिल्ली बस पढ़ने के लिए आई है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है
1: और इस अचीवमेंट पे हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। कहते हैं कि जो हम सोचते हैं ना वो हम कर लेते हैं। आपने सोचा कि आपको दिल्ली जाना है, आप यहाँ आ गई हैं। अब यहाँ से कहाँ जाना है आपको?
4: मेरे जो गोल्स है मैं चाहूंगी मैं कंप्लीट कर लूं एंड

0: इस दुनिया को घूमना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, अचीव करना चाहती हूँ, इस दुनिया को देखना चाहती हूँ कैसा है ये नजारा। मैं ट्रैवलिंग करना चाहती हूँ इस पूरी वर्ल्ड को। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको चूज करने का मौका मिले कि आपको कोई थ्री कंट्रीज चूज करनी है जहां आप जाना चाहती हैं, तो वो थ्री कंट्रीज कौन कौन सी होंगी? द फर्स्ट इज है अमेरिका, एंड सेकेंड इज जापान, एंड थर्ड इज अ ग्रीस। तो अगर हम बिहार जाएं तो ऐसी कौन सी थ्री डिशेस हैं जो हमें जरूर वहां की ट्राई करनी चाहिए?
1: बिल्कुल, आपको तो सबसे पहले लिट्टी चोखा आपको ट्राई करना चाहिए वहां का। एंड देन आपको ट्राई करना चाहिए वहां की सबसे फेमस चीज, आप बिरयानी ट्राई कर सकते हो बिहार में। एंड थर्ड इज, ये बहुत ही कल्चरल है त्रिपुरा। हमारे यहाँ जो होता है छठ पूजा, उनमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बनाई जाती है, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। आप वहां जाओगे तो आपको सारी चीजें बस कल्चरल ही मिलेगी। बिहार में बहुत सारी फेस्टिवल्स है, ये बहुत ही धूमधाम से बहुत ही अलग तरीके से मनाया जाता है वहां पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं बिहार के बारे में, कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हम दिल्ली वाले बिल्कुल नहीं जानते, तो वो क्या होगी?
0: बिहार में एक है हिल स्टेशन राजगीर, जहाँ आप सारे दिल्ली वालों को घूमना चाहिए। दिस इज अ वेरी पीसफुल प्लेस, तो आई गेस कि दिल्ली वालों को वहां जाना चाहिए घूमने के लिए।
2: हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल आपकी बातों में वो सच्चाई है, वो मिठास है जो बिहार के लोगों में होती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया आपका भी।
3: तो चलिए कालिंदी कॉलेज की यंग गर्ल्स की यूथफुल एनर्जी और फेयरलेस स्पिरिट के नाम सुनते हैं ये गाना खोलते पर।

0: वाकई ये आई एम श्योर कालिंदी कॉलेज की इन गर्ल्स के लिए खोल दे पर सिर्फ एक सॉन्ग नहीं होगा बल्कि उनकी ड्रीम्स और एस्पिरेशन की आवाज है। तो चलिए हम अपनी सहयोगी ऋचा के पास चलते हैं।
1: इंफोजन कैंपस कॉलिंग के इस कार्यक्रम में आज मैं आई हूँ कालिंदी कॉलेज। इस कॉलेज की एक टीचर मेरे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: मैं डॉक्टर राखी चौहान डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से हूँ और मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग तरह के पेपर्स पढ़ाती हूँ।
1: मैम आप एक विमेन कॉलेज में पढ़ा रही हैं तो विमेन्स के लिए एजुकेशन का क्या रोल है?
2: देखिए ये रोल विमेन और एजुकेशन ये तो कभी किसी समय पे भी ना ये कभी ऐसा था कि नहीं होनी चाहिए और ना ये आज है और ना ये कभी होगी। एजुकेशन इज फॉर ऑल।
1: मैम अक्सर तौर पर जो गर्ल्स हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एजुकेशन के बाद फिर उनकी शादियां होती हैं, फिर उन्हें फैमिलीज देखनी होती है। ऐसे में आपकी भी कई स्टूडेंट्स होंगी जिन्हें आगे जाकर वो फैमिली लाइफ में गई होंगी और ये इम्बैलेंस उन्होंने महसूस किया होगा या आपने भी अपनी जिंदगी में जरूर किया होगा, तो आपने खुद अपनी लाइफ पे इस बैलेंस को आप कैसे लेकर आई जो आप सलाह अपने स्टूडेंट्स को भी देती हैं?
2: देखिए एक ये बैलेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो जिस समय पढ़ते हैं उस समय पढ़िए।

0: ये हर पीढ़ी गुजरती है कभी ना कभी अपने अपने समय में।
1: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, और आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत सीख मिली, और उम्मीद करती हूँ जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: मेरा नाम डॉक्टर शानुजा बेरी है, मैं यहाँ कालंदी कॉलेज में एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी।
1: आपकी जो स्टूडेंट लाइफ थी उससे हम आपके बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, आज हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि वो कितनी इंस्पायरिंग थी और आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ से क्या सीखा है जो आज आप अपनी बच्चियों को देती हैं।
2: मैं कश्मीर से हूँ, श्रीनगर से, एंड फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे दार्जिलिंग जो एक बहुत ही छोटा सा शहर है, मेरी स्कूलिंग वहीं पे थी। तो मुझे याद है उस समय, ये बहुत पुरानी बात है ऑफकोर्स, तो मैं निकल के आई थी कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अपना क्लास 12 खत्म करके दार्जिलिंग में। कुछ भी नहीं पता था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बट यहाँ पहुंच गए थे, एडमिशन मिला मुझे दौलतराम कॉलेज में, हॉस्टल मिला। दिल्ली एक बहुत ही बड़ा शहर था हमारे लिए, नई चीजें थी सब कुछ, बस पढ़ते रहना है क्योंकि सिर्फ एजुकेशन ही आगे ले जा सकती है। मैं बस इन अ वे आगे बढ़ती हूँ, आज मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। इट्स अ बिग अचीवमेंट आई थिंक फॉर मी फ्रॉम वेयर आई कम।
1: एक अलग परिभाषा रही है एक आदर्श स्त्री की, पर अगर मैं कहूँ कि आज के दौर की आदर्श स्त्री की परिभाषा आपके लिए क्या है?
2: आदर्श स्त्री, आई फील सबसे पहले तो वी, हमें ये भूल ही जाना है कि ऐसी स्त्री हो कि हमें कुछ कहीं कुछ हमारे में लैकिंग है या कमी है, ये सोचना ही नहीं है। आप जो भी आपके फैमिली के परिस्थितियां हैं, आप तब भी अपना आगे लाइफ द वे यू वांट, प्रोफेशन यू वांट टू चूज, कोई भी कहीं कोई आपके लिए रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, नथिंग इज यू नो इम्पॉसिबल फॉर यू, यू आर नॉट अ स्त्री, यू आर अ पर्सन, रिमेम्बर दैट।
1: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, और आज की जो जेंजी लड़कियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि आपको रुकना नहीं है, चाहे आपको पहाड़ों पर से आप आती हैं और एक नदी की तरह आप बहते बहते यहाँ दिल्ली में पहुंची, और वो भी यमुना यानी कालिंदी में आकर आप मिली हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा।
1: हमने अब बात करते हैं, एक कॉलेज का नाम कालिंदी है, कालिंदी जो है वो यमुना का दूसरा नाम है,
2: और जब बेटी
1: सूरज की बेटी जब वो निकलती है पहाड़ों से तो रास्ता बनाती हुई निकलती है, और मुझे लगता है जैसे आप निकली हैं भी, मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ से भी कई लड़कियों के लिए रास्ता बना होगा। यू आर सच इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
3: वेल दोस्तों, कालिंदी कॉलेज की टीचर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि यंग माइंड्स को शेप करने की एक जर्नी है। तो चलिए आइए चलते हैं दोबारा हमारी सहयोगी ऋचा के पास।
1: एल्फोजन कैंपस कॉलिंग के आज के एपिसोड में मैं आई हूँ कालिंदी कॉलेज, इस कॉलेज की प्रिंसिपल मैम मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं।
4: नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर मीना चरांदा, कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल, आप सभी का स्वागत करती हूँ।
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे विमेन्स कॉलेजेस हैं, आप जानती ही हैं, और ऐसे में कालिंदी कॉलेज अपनी एक खास जगह कैसे रखता है?
4: कालिंदी कॉलेज की हमेशा से एक खास जगह रही है। मैं टीचिंग में 20 साल पहले आई थी, प्रिंसिपल में अभी 4 साल से हूँ। तो कालिंदी की अपनी एक पहचान है, हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बच्चों के लिए हम एकेडमिक प्रोग्राम्स करते हैं, हम सेमिनार करते हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। स्टूडेंट सेमिनार एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे कॉलेज का अट्रैक्शन है। उसमें क्या है कि हम हर साल बच्चों से पेपर प्रेजेंट कराते हैं, जो हम लोग एमए में एमफिल में करते थे वो बच्चों को हम कॉलेज में कराते हैं।
1: अभी अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, नए नए बच्चों से कॉलेज गुलजार है, तो ऐसे में नए आने वाले बच्चों को इस बार क्या नया देखने को मिलेगा कॉलेज में?
4: देखिए, इस बार हमने पूरी जी जान लगाई है नए बच्चों के लिए। एक हमारी सबसे बड़ी चीज जो है, हमारा हॉस्टल बनने वाला है, ऑलमोस्ट तैयार हो गए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 महीने में हम बच्चों को हॉस्टल दे सकेंगे। बहुत सारे बच्चे पीजी में रहते हैं तो पीजी इतना सेफ नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने बच्चों के लिए प्लान की है। अभी हम जब से कॉलेज खुला है बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते चले जा रहे हैं।
1: मैम, कॉलेजेस आने वाले बच्चे अक्सर तौर पर सोसाइटीज को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उन्हें बड़ा मन होता है कि हमारे कॉलेज में कौन कौन सी सोसाइटीज होंगी जिनमें हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कालिंदी कॉलेज की कौन कौन सोसाइटीज है जो बहुत फेमस है?
4: हमारे यहाँ की देखिए बहुत सारी सोसाइटीज है, हमारे यहाँ स्पीक मेके भी है, उसमें बड़े बड़े कलाकार को बुलाते हैं।

0: चाहते हैं, और वो ज्वाइन करते ही उसमें फैशन करते हैं, और लास्ट में जब हमारा फेस्टिवल होता है तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरे कॉलेज में भी जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे क्लब हैं जो बच्चे इसमें आते हैं, और हम हर वेडनेसडे को, ये हमारे कॉलेज में ही होता है, एक हम एक्टिविटी पीरियड रखते हैं 1 घंटे का, जिसमें हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, नुक्कड़ नाटक हमारे कॉलेज का एक बहुत अच्छा हुआ, जो विनर्स हैं, बहुत सारे बच्चे विन करके आते हैं, बहुत सारे कॉलेज में IIT में जाते हैं हमारे बच्चे, दिल्ली के बाहर भी जाते हैं। मैम आपको पता ही है कि बच्चे हैं जब पढ़ाई करते हैं तो उनको बहुत ही स्ट्रेस होता है, और बहुत सारी चीजें हैं, आज के जेन जीज जो हैं उनको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, और जब जल्दी चाहिए तो मतलब स्ट्रेस भी होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कॉलेज की क्या अप्रोच रहती है? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आज आप किसी भी बच्चे से मिलेंगे वो सब यही कहते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस है, और टीचर्स भी कहते हैं। तो उसके लिए हमारे कॉलेज के अंदर एक काउंसलर है, वो जो काउंसलिंग के लिए आती है, हफ्ते में 3 दिन आती है, वो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बैठती है। अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम होती है काउंसलर से मिलते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम, जब बच्चा स्कूल,
1: ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत गाइस, टेक केयर, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। आज आपने जाना अल्फा जैन में कैंपस कॉलिंग एडिशन में कालंदी।
2: नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। गृह मंत्रालय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थल बनाने के विशेष अभियान का 6ठा चरण चलाएगा। ये अभियान अगले महीने की 2 तारीख से शुरू होकर 31 तारीख तक चलेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे हुए। वर्ष 2023 में शुरू किए गए माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के 4ठे चरण की शुरुआत की। आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि सांकेतिक भाषा संचार, अभिव्यक्ति और समावेशन का एक सशक्त माध्यम है। 11वां आयुर्वेद दिवस आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय और पुरुष महिला स्केट टीमों ने कांस्य पदक जीता। जयमीरा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा, और महिला और पुरुष दोनों टीमों ने निशानेबाजी की स्केट स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। तो ये हैं अब तक के मुख्य समाचार।

0: शिवानी आकाशवाणी।
1: एक और शानदार शाम और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुड़ी सृजन, लेकर आई हूँ प्रोग्राम सिटी लाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी से। ये वो शाम है जो कि अब ढलने को तैयार है और सुबह जो परिंदे अपने घरों से कामों को चले थे वे लौटने की तैयारी में है, और जब वे लौट रहे हैं तो सावधानी से सुरक्षित तरीके से अपने अपनों तक पहुँच जाएं, ऐसी हम सभी उनके लिए विशेष करते हैं शुभकामनाएं देते हैं। शाम की शुरुआत तो शानदार बनती है।

सुन रही हैं आप रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। मैं हूं दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन आपके साथ। प्रोग्राम आपका अपना पसंदीदा सैटेलाइट्स। देखिए ये जो ढलता हुआ सूरज है ना, ये हमें सिखाता है चाहे कितना कितना कितना भी कठिन दिन क्यों ना हो, हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। और आज ये शाम जो ढलने को तैयार है, ये कल फिर नई उम्मीदों के साथ आएगी और नया दिन लेकर आएगी। दिन भर की भागदौड़ के बीच जब शाम का समय आता है ना, तो प्रयास कीजिए अपने लिए आप कम से कम अपने साथ बैठने का समय निकालें। वो समय आप अपने साथ चाय टाइम पर भी निकाल सकते हैं। और उस दौरान क्या करना है आपको, अपनी पावर्स को, अपनी जो आपकी अपनी एनर्जी है, अपनी ताकत है ना, उनको दोबारा एक्सप्लोर करना है और उन्हें नए दिन के लिए तैयार कर देना है। आज के दिन की बात करें तो मौसम का हाल देखिए, मैक्सिमम 36 डिग्री, काफ़ी गर्म दिन रहा। थोड़ी बहुत धूप छाँव होती रही, लेकिन उससे जो टेम्परेचर है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बरकरार रहा गर्मी गर्मी लेकर। और मिनिमम की बात करें तो 26 डिग्री रहने वाला था, और राइट नाउ 5:08 समथिंग सेकेंड्स होने को

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

सुन रहे हैं फिल्म रेनबो, प्रोग्राम है सेटेलाइट्स और मैं हूँ आपके साथ रोजन। चलिए नोट कीजिए कहाँ कहाँ से बच बच कर आपको निकलना है दिल्ली की सड़कों पर। ये वो टाइम है जो पीक आवर है, जब सब अपने ऑफिस से घरों की तरफ चल रहे हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि अभी कुछ कुछ वजह से ट्रैफिक वहां पर मिल सकता है आपको। सो नोट कीजिए एंड्रयूगंज फ्लाईओवर एम्स के पास यानी टूवर्ड्स मूलचंद अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर एक ट्रक खराब हो गया, रिप्लेसमेंट वहां पर चल रही है। सो आपको वो रूट अवॉइड करना है और बहुत स्लो यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। इसके अलावा अंसारी रोड पर भी जो है ट्रैफिक है, क्योंकि वहां पर जो आयरन ब्रिज है अंसारी रोड पर वो थोड़ा सा उसका रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, सो आपको वहां से भी बचकर निकलना है। और अब बात करते हैं दक्षिण दिल्ली में SSN मार्ग की, तो वहां SSN मार्ग और डेरा मंडी रोड पर भी जो है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और ये आने वाले 15 दिनों तक चलने वाला काम है, क्योंकि काफी यहां पर मरम्मत की देखी गई है। तो आप सभी अल्टरनेटिव रूट के तौर पर जो है बंद रोड और सुल्तानपुरी मंडी रोड से जाएं, ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ऐसी सलाह दी जा रही है। सो नोट कीजिए और इन जगहों से थोड़ा हट के थोड़ा बच के निकल जाइए।

कभी ये लाइन आती है ना मेरा वाला डांस, सो हमें याद आ जाता है ना हमारा एक बिल्कुल परफेक्ट वाला स्टेप जो हम हमेशा करते हैं, सो उसे जरा यूज कीजिए और थोड़ी सी कमर हिला लीजिए, नाचिए गाइए, खुश रहिए।

देखिए, ये जिंदगी हमें ये जरूर सिखाती है कि हम हंसते गाते जब इसे व्यतीत करते हैं, इसे बिताते हैं ना, तो ये बहुत आसानी से निकल जाती है। और इस बात को देखिए कि जब परिंदे अपने घरों को लौटते हैं, यानी मेहनत करके जब अपने घरों को लौटते हैं, तो वो मेहनत कभी जाया नहीं जाती। रंग देर से लाती है, लेकिन वो रंग इतना गाढ़ा गूढ़ा होता है ना कि वो हमेशा के लिए रहता है। जब शाम

वो परिंदे घर आते हैं ना, तो ध्यान दीजिए घोंसलों में जाते वक्त उनकी चोंच में वो दाना तिनका होता है जो उनके घर को और पूर्ति करते हुए आगे बढ़ाता है। इन्हीं विचारों के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटेलाइट्स, दिल्ली की सभी बातें करने वाले हैं हम आपकी, और हमारे साथ सुनते रहिए रेनबो।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
7: रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। प्रोग्राम है सिटी लाइट्स और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरेश रजन। और देखिए, शाम की एक फिक्र जो हम सभी को, स्पेशली हम फीमेल्स को अभी से सताने, मतलब रात दिन शुरू होता नहीं है कि सताने लग जाती है क्या बनाएं क्या बनाएं। तो चलिए कुछ चटनी बना लेते हैं। अब चटनी कैसे बनाएं वो हमें इस गाने से पता चल जाएगा। वेल, देखिए सिर्फ चटनी से काम नहीं चलेगा, साथ में पराठे होने चाहिए और कोई ऐसी सब्जी जो कि चटकारे लेकर खाई जा सके। सोचता ना तो पड़ेगा ना कि क्या बनाना है, पर चटनी की रेसिपी फिलहाल।

ऐसे बनी ऐसे बनी और बन ही गई। चलिए अपनी इन चिंता को तो रख दीजिए साइड में कि क्या बनाना है क्या करना है, पर बहुत जरूरी है कि लाइफ में हिट एंड फिट रहा जाए। देखिए हिट भी बनता है पॉपुलर, हिट एंड फिट। फिट रहने के लिए आपको अपनी हेल्थ को तो कंसर्न बना के रखना ही है। अपनी हेल्थ के लिए आप अच्छा खाइए, खुश रहिए और अपने जीवन में योग को जरूर आप सेट कर लीजिए कि ये मेरा जो टाइम है वो 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट जो भी है मॉर्निंग का इवनिंग का वो है योग के नाम। और आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और एक और कदम जो लिया जा सकता है, नोट कीजिए, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा योग पर 6 दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा जिसे CME प्रोग्राम कहा जाता है वो स्टार्ट किया जाएगा। अब ये जो प्रोग्राम है ये होगा 16 से 21 नवंबर तक, जी हाँ 6 दिवसीय। और लेकिन इसकी जो आपको अप्लाई करना है, जो आपको अभी से शुरू कर देना है और कब तक कर सकते हैं वो नोट कीजिए। लास्ट डेट है इस कोर्स के लिए, 6 डेज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने की 30 सितंबर 30 सितंबर है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू डू, इसके लिए विजिट कीजिए www.yogamdniy.nic.in। सो आप भी योग के माध्यम से तो जरूर अपने आप को फिट रख सकते हैं और हिट रखने की तैयारी तो मैंने कर ही रखी है। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सिटी लाइट्स दिल्ली की चाशनी कुरेश रजन के साथ।

0: और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हुए मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ साक्षी मांडवाल हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका। बात सबसे पहले आज करेंगे हॉकी की, जहां भारतीय महिला टीम जीत के रथ पर सवार है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 20-1 से करारी शिकस्त दे दी। पूल बी के मुकाबले में भारत की लगातार तीसरी जीत है। मुकाबले की बात करें तो सबसे बड़ी स्टार दीपिका सहरावत रही, जिन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक के जरिए अकेले 9 गोल दागे और एक बड़े जिस तरह से भारत की जो बड़ी जीत थी उसमें एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। सर्वाधिक किसी एक मुकाबले में गोल करने का जो एक रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है।
3: जी, एंड द नेक्स्ट अपडेट वी ब्रिंग टू यू इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस, वेयर बोथ द इंडियन मिक्स्ड डबल्स पेयर्स वन देयर रिस्पेक्टेड राउंड्स एंड ऑल्सो एडवांस टू द लास्ट स्टेज। सबसे पहले बात करते हैं हरमीत देसाई और यशस्वनी घोरपड़े की, जिन्होंने मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में 3-1 से जीत हासिल करी हांगकांग के यू क्वान तो और विंग लैम के ऊपर एंड देयर बाय द एडवांस टू द लास्ट स्टेज। उसके बाद मनु शाह एंड दिया चितले स्टॉर्म्ड इन टू द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स विद द डोमिनेंट स्ट्रेट गेम्स victory over the Maldives Ahmed Musa and Nazim Eshhat. Iske saath hi this was a very commanding performance for them to now move on into the last eight, where they will be facing Lin Shidong and Kuai Man of China, which is going to be faced by Harmeet and Yashaswini, while Dia and Manish will be facing Wong Chung and Duhai of Chinese Taipei.
2: श्रोताओं, शूटिंग के बारे में बता देता हूं। हालांकि आज के दिन की शुरुआत भारत के लिए कोई बहुत खास नहीं रही, निराशाजनक रही। परिनाज धारीवाल, महेश्वरी चौहान और रायजान ढिल्लो ने महिला स्की टीम स्पर्धा में उसके बाद शानदार प्रदर्शन किया और पदक जीता। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, वहां मनु भाकर 579 अंकों के साथ व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचने वाली एकलौती भारतीय रही, लेकिन वो भी फाइनल में पोडियम फिनिश नहीं कर पाई। मनु भाकर वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में मेडल जीतने से चूक गई और 181.1 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर ही भारतीय तिकड़ी परिनाज धालीवाल, महेश्वरी चौहान और रायजा ढिल्लो ने महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक भारत की झोली में डाला। वहीं अगर बात करें परिणाज की तो और रायजा ढिल्लोन की, जो 125 में से 111 अंक जुटाए, जबकि महेश्वरी चौहान ने 109 अंक अपने नाम किए। कुल भारत ने 331 अंक जुटाते हुए कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा बात करें ओलंपियन अनंत जीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भोगेश सिंह ने मिलकर कुल 346 अंक हासिल किया और पुरुषों का स्कीट का जो टीम इवेंट का कांस्य पदक भारत की झोली में डाला।
3: जी, एंड नाउ वील मूव ऑन टू कनू स्प्रिंट, वे इंडियाज मेन कयाक्स 4-500 मीटर टीम फिनिश थर्ड इन द हीट्स एंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ए। मेघा प्रदीप फिनिश्ड फिफ्थ इन द वुमेन्स कनू सिंगल 200 मीटर्स हीट विद द टाइमिंग ऑफ 49.675 सेकेंड्स एंड क्वालिफाइड फॉर द सेमी फाइनल। सोनिया देवी एंड पार्वती गीता एंडेड सिक्स्थ इन द वुमेन्स कयाक डबल 500 मीटर्स हीट्स विद 2 मिनट्स 2.538 सेकेंड्स। दे हैव ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द सेमी फाइनल्स। इन मेन्स कयाक डबल 500 मीटर हीट्स चैंपा देल, सत्य प्रकाश, प्रसन्ना कुमार एंड प्रोहित बरोय फिनिश्ड ऑन द फिफ्थ स्पॉट विद द टाइमिंग ऑफ 1 मिनट 41.141 सेकेंड्स एंड क्वालिफाइड फॉर द सेमीज। इन वुमेन्स कनू डबल 500 मीटर हीट्स मेघा प्रदीप एंड नेहा देवी फिनिश्ड ऑन द फिफ्थ स्पॉट एंड ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स।
2: स्क्वैश की बात कर लेते हैं, भारत की शानदार यहां पर शुरुआत हुई है। स्क्वैश सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ जो अपना अभियान शुरू किया, वीर चोटरानी ने पुरुष सिंगल्स में राउंड ऑफ 32 मुकाबले में श्रीलंका के वकील को 3-0 से हराया। उन्होंने मुकाबला 11-8, 11-3, 11-3 से अपने नाम किया, जबकि तन्वी खन्ना ने महिला सिंगल्स में राउंड ऑफ 32 का जो मुकाबला था वहां दक्षिण कोरिया की किम दामी को सीधे गेमों में 3-0 से मात दी। स्कोर रहा 11-5, 11-7, 11-5। वहीं अभय सिंह ने भी अपने शुरुआती मुकाबलों में जीत कर जो जीत उनकी रही उसके बाद अगले दौर में जगह बना ली है।
3: Right, and now bringing in the big news from the world of Wushu, where all the fans of Roshibana Devi will be

0: expecting to see her performance tomorrow, which is of course going to be in the 60 kg final category. Ji haan, Roshi Banna Devi secured a place in the women's 60 kg final after beating Indonesia's Thania Kusumanangityas 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final, which is on the 23rd September. और इसके साथ ही आपको ये भी बता दे कि वुशु में अब भारत को एक मेडल भी अश्योर हो चुका है. वो कौन सा होने वाला है, शायद सिल्वर या फिर गोल्ड, ये तो हम सबको कल ही पता चलेगा.
1: जी बिल्कुल, कल पता चलेगा. लेकिन आज जिस तरह से मीराबाई चानू ने तहलका मचा, वो सबने देखा. हालांकि गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंची. सिल्वर मेडल जीता जरूर लेकिन एक अपसेट भी देखने को मिला, एक निराशा देखने को मिला. ज्ञानेश्वरी देवी 8वें स्थान पर रही, 195 किलोग्राम का वजन उठाया. महिलाओं की जो 53 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता थी उसमें 8वां स्थान उन्हें हासिल हुआ. उत्तर कोरिया की होंग योंग कॉन्ग ने 223 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता. इसके बाद चीन की जिंगलांग झाओ का नंबर आता है, उन्होंने कांस्य पदक अपनी झोली में डाला.
0: राइट, एंड डू वी हैव सम अपडेट्स?

0: गिफ्ट फ्रॉम वेट लिफ्टिंग, बिकॉज अभी तो आप मीराबाई चानू की बात कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम थोड़े और अपडेट्स भी देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं. वेल, बट आई विल एट द एंड ऑफ द डे टेल ऑल आवर व्यूअर्स की वेट लिफ्टिंग में सबसे बड़ी खबर तो मीराबाई चानू की थी, लेकिन एक और अपडेट आ सकता है, वो है ज्ञानेश्वरी यादव के लिए भी. जी हाँ, लेकिन वहां से कोई खुशखबरी नहीं आने वाली है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी यादव फेल टू लिफ्ट 105 kilograms in a first attempt in the clean and jerk round and later went on to successfully lift in her second attempt in the women's 53 kilogram category. So overall it was not a good day because she went out of the race for a top 3 finish. But iske sath hi quickly leaving our viewers with Bharat ki is samay ank talika pe standing kya hai. 13th position pe hai India with a total of 12 medals, which has one gold, and of course we have 4 from shooting, which is sin silver, one weight lifting, and then we have a total, okay, wrapping it up with 12 medals, which includes the one gold, hoping that India climbs up the position shayad once again back up.
1: जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे इसी तरह भारत का जो कारवां बढ़ता रहेगा. फिलहाल अब आपसे मुलाकात हमारी होगी ठीक 6:30 तक, 30 मिनट पर. उससे पहले मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को अनुमति दीजिए. नमस्कार.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे.

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
3: इस बुधवार 23 सितंबर को शाम 5:45 से 6 बजे तक,
2: और जानिए SOL के स्किल कोर्सेज के बारे में।
4: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटेलाइट्स 102.6 मेगाहर्ट्ज से। मैं हूं सृजन आपके साथ। अगली बात करते हैं प्रोग्राम में दक्षिण दिल्ली के BRT कॉरिडोर पर बनी डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर पर। यहां पर जो कार्य होने जा रहा है वो वाकई ही बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। यहां पर नॉइज बैरियर लगाए जा रहे हैं क्योंकि आसपास की कॉलोनियों में काफी जो है शोर, चाहे जितने भी व्हीकल्स दिन में रात में निकलते हैं बहुत शोर रहता है। ये फ्लाईओवर करीब 600 मीटर लंबा है और इसके एक तरफ जंगपुरा एक्सटेंशन और लाजपत नगर सी ब्लॉक पड़ता है, दूसरी तरफ डिफेंस कॉलोनी डी ब्लॉक। दिन भर ये रूट इतना बिजी रहता है कि आसपास रहने वाले कॉलोनीज में रहने वाले लोगों की दिन और रात की नींद जो है ऑन्स के चलते काफी डिस्टर्ब रहती है। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि यहां पर जल्द ही नॉइस बैरियर्स जो है वो लगा दिए जाएंगे। सुनते रहिए रेनबो।

यह इशारा मिल गया है चंद्राणी को भी, और आपकी चांद अब आपके लिए लेकर आएंगी 6 बजे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, और रेनबो पर अगला प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। जी हाँ, ये प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक आ रहेगा कांचा मिश्रा के साथ, और म्यूजिक मस्ती चांद के साथ सुनते रहिएगा। आपकी याद आती रही, टाइम है 9 बजे का, प्रियंका त्रिपाठी आपके साथ होंगी। एक बार फिर 10 बजे वेस्टर्न म्यूजिक आ रहेगा रेनबो क्लासिक्स लेकर, आकांक्षा आपके साथ बनी रहेंगी, और रंगे महफिल जरूर सुनिएगा 11 बजे से 0 आवर तक प्रियंका त्रिपाठी के साथ।

बस अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में प्रायोजित कार्यक्रम SOL, और यहाँ अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी गुरी सृजन को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेनबो दिल से दिल तक। अपना और अपनों का रखिए बहुत बहुत ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ विद्या
1: और मैं हूँ कुशाग्र और हम स्वागत करते हैं आप सभी का दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के आज के इस कार्यक्रम में,
0: जिसमें होगी युवाओं की एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा। भारत में अगर स्किल्स के बारे में बात करें तो आज की डेट में हर युवा ये चाहता है कि उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी स्किल विकसित हो जाए जो एक साथी की तरह उसका साथ दे,
1: जिसका उपयोग वो कभी भी कहीं भी किसी भी परेशानी में कर सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। यानी अगर प्लान ए किसी वजह से फेल हो जाए तो वो प्लान बी की तरफ बेहिचक मूव कर सके।
0: और इसी समझ को अपॉर्चुनिटीज में बदलने के लिए हम आपको ले चलते हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग,
1: जहां पर ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर के जरिए कई सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं।
0: कई सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में आते जाते रहते हैं जिनको लेकर उन्हें जानकारी की जरूरत होती है, और इसी जानकारी को लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं
1: ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मिस्टर दीक्षांत अवस्थी।
0: दीक्षांत सर नमस्कार।
2: नमस्कार
1: दीक्षांत सर, कौन कौन से ऐसे स्किल कोर्सेज हैं जो ओएलडीसी के पास हैं अभी?
2: इन कोर्सेज के बारे में मैं सभी छात्रों को बताना चाहूंगा। जो हमारे स्किल कोर्सेज हैं अंडर ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर, वो मोर देन 25 हैं। कुछ कोर्सेज को मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, सर्टिफिकेट कोर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक टू एडवांस, सर्टिफिकेट कोर्स इन फोटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन ग्राफिक डिजाइन एंड डीटीपी, सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक रोबोटिक्स एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन मीडिया स्टडीज एंड जर्नलिज्म, सर्टिफिकेट कोर्स इन लैब टेक्नोलॉजी एंड लैब मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी, सर्टिफिकेट कोर्स इन ब्यूटी एंड हेयर लैब, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफलाइन, बोथ द मोड्स आर अवेलेबल फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन नेल आर्ट्स ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन एसी रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन काउंसलिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन मोटर ड्राइविंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन आरओ रिपेयरिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड जीएसटी, सर्टिफिकेट कोर्स इन एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। इनका ड्यूरेशन एज पर देयर सिलेबस हमने तय किया है और किस तरीके का सर्टिफिकेट मार्केट में रिक्वायर्ड है, इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है उनको रोजगार देने के लिए, उससे हम उनका ड्यूरेशन तय करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को से मेरा कहना रहेगा कि आप लोग अगर इन कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप oldcdu.ac.in हमारे वेब लिंक पर जाएं और वहां से पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी रहती है तो आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं। हमारे डेडिकेटेड कॉल सेंटर्स एक्टिव जोन में हैं। वहां हमारा फोन नंबर रहेगा 0116521303। दूसरा नंबर है 0113566347।
1: सर स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए आप एक बार नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए।
2: 0116521303। दूसरा नंबर है 0113566347। कोर्सेज अभी विदिन 2-3 डेज भी लॉन्च होने जा रहे हैं, तो मैं सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि ओएलडीसी पोर्टल पर जाएं। अगर ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर की वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर हमारे CISBC सेंटर फॉर इनोवेटिव जॉब रेडी कोर्सेज हेड के अंतर्गत ये सारे कोर्सेज उनको देखने के लिए मिलेंगे। इनके पूरा इनका ब्रोशर वहां पर अवेलेबल है, इनके डिटेल्स, इनके टाइम ड्यूरेशन, शुल्क क्या है, इनका फी क्या है, वो वहां पर दिया।

0: गया है और कब कब हम इनके एडमिशंस कर रहे हैं, इन सभी के बारे में जानकारी वो SOL की वेबसाइट और OLDC की वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं।
1: क्या हुआ अश्विनी, इतने उदास कैसे लग रहे हो?
2: बच्चों की पढ़ाई के खर्चे और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, मगर इस जॉब में फाइनेंशियल ग्रोथ ही रुक गई है। कहते हैं MBA किया होता तो ग्रोथ मिलती, काम बढ़ रहा है लेकिन सैलरी नहीं।
1: तो MBA की डिग्री ले लो।
2: किस यूनिवर्सिटी से करूं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भारी भरकम फीस कहां से लाऊंगा और जॉब के बिना खाऊंगा क्या?
1: प्राइवेट यूनिवर्सिटी से क्यों? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉम्पिटिटिव फी में जॉब के साथ साथ MBA की डिग्री ले लो।
2: जी हाँ, स्टूडेंट्स का भरोसा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जहाँ हर साल MBA में तकरीबन 3,500 स्टूडेंट्स एडमिशन लेकर अपने करियर को देते हैं एक नई दिशा।
3: सर प्लीज बताइएगा कि आज का युवा कौन कौन से स्किल बेस्ड कोर्सेज सीखना चाहता है और OLDC इन कोर्सेज को कैसे करवा रहा है?
0: इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वो स्टूडेंट सेंट्रिक हैं। हमने हमेशा एक कोर्सेज को लॉन्च करने से पहले बैकग्राउंड में मार्केट स्टडी किया और ये पाया कि किन कोर्सेज की सबसे ज्यादा डिमांड हो सकती है, उन्हीं कोर्सेज को हमने सबसे पहले लॉन्च किया है। ठीक है, और भी कोर्सेज हम पाइपलाइंड हैं और हम कंटिन्यूअसली इस पर काम कर रहे हैं। स्किल का एक युवा के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा एक रोल होता है और इसमें केवल प्लान बी की तरह ना कह के हम कहेंगे कि ये जीवन की आवश्यकता है। अगर आप कभी देखें आपकी जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू डूइंग साइंस। आप विज्ञान करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिकता से भरा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आपको परिपक्व बनाता है। उसी तरह से अगर आपके पास कई सारी विधाओं में स्किल है तो अपने जीवन को सुचारू रूप से जिया जा सकता है, आप एक वेल अवेयर्ड नागरिक की तरह होते हैं। अब इस सिचुएशन में सबसे पहले रोजगार की बहुत बड़ी एक आवश्यकता है, लेकिन स्किल होने पर आप उस रोजगार को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। तो जो हमारे युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा रोजगार की जो चैलेंजेस थे उनको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए हमने मार्केट को सर्वे किया। जैसे बहुत सारे स्किल्स ऐसी थी जिनके मार्केट में अच्छी खासी डिमांड थी, बच्चे अपना काम जस्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स शुरू कर सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए 6 months, 3 months, 1 month, even 10 days and 16 hours कोर्सेस हमने लॉन्च करे हुए हैं। इन कोर्सेज के साथ युवा जैसे ही हमारे स्टूडेंट्स इन कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं, दे कैन ओपन देयर ओन सम वेंचर जहां पे जाके वो आउटलेट पे अपना एक कुछ शुरू कर सकते हैं और वो अपने आप को मार्केट की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं।
3: दीक्षांत सर, मुझे ये बात बहुत हैरान करती है कि 16 घंटे का समय देकर कोई भी युवा स्किल सीख सकता है, उसको विकसित कर सकता है और बाहर जाकर उस स्किल के जरिए रोजगार पा सकता है। दीक्षांत सर प्लीज हमें बताइए और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो युवा 16 घंटे के अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
0: मैं आपको इन कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। 16 आवर्स के जो हमने डिफाइन किया है डिलीवरी को, वो पहला कोर्स जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड GST है। GST फाइलिंग इज एन स्किल, आप किस तरीके से एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको स्टडी करना है, देन यू शुड लर्न हाउ टू फाइल इंडिविजुअल्स GST ओवर देयर, GST नॉर्म्स क्या है, द पर्सन हैज टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन। सो इसको 16 आवर्स हमारे एक्सपर्ट्स कैटर करते हैं। इट कैन बी फिनिश्ड इन लाइक इन 2 इंटरेक्शंस और 3 इंटरेक्शंस, इसलिए हमने और बेसिस पे डिफाइन किया है। इसी में और भी है, हमारा सेकंड कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स इन एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस कोर्स कैन आल्सो बी एज पर इट्स सिलेबस कैन बी फिनिश्ड इन विद इन 16 आवर्स एंड वी कैन हैव मॉडरेशंस लाइक विद इन 2 डेज और 3 डेज वी कैन फिनिश दिस। जो अन्य हमारे स्किल कोर्सेज हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो हमारे स्किल कोर्सेज 3 महीने के हैं और जिसमें कि ब्यूटी एंड हेयर लैब, आप ब्यूटी ब्यूटिशियन का कोर्स ये करने के बाद आप बाहर जाके अपना आउटलेट ओपन कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में 3 months में अवेलेबल है, जिसमें प्राइमरी लेवल इंग्लिश स्पीकिंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है, उसके बाद आप इसे एडवांस कोर्सेज के लिए आप रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से 3 months के भी कोर्सेज हैं और 6 months वाले में हमारे जिनमें बहुत ज्यादा सिलेबस है, थोड़ा सा ज्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, इसमें लैब बेस्ड कोर्सेज भी हैं। तो लैब बेस्ड कोर्सेज हैं वो हमारे कोल केशवपुरम सेंटर में चल रहे हैं और कोल केशवपुरम में वहां हमारी वेल एस्टैब्लिश लैब है। बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी का जो कोर्स है, कुकीज बनाना, जो कि आजकल मार्केट की बहुत त्योहारों का दिन आ रहे हैं तो बहुत सारे मार्केट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वहां पर अपनी सर्विसेज आप दे सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये कोर्स फिनिश होता है आप रेडी टू

0: टेंथ करके आ रहे होते हैं तो उसी से ट्यून रहे। तो इसमें हमने बहुत सारे पाठ्यक्रमों में जो आपको टेंथ पास ही आपकी एलिजिबिलिटी है और बहुत सारे कोर्सेज में आपको ट्वेल्थ पास होना जरूरी है। टेंथ एंड इलेवेंथ दोनों पास आउट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर स्किल कोर्सेज अवेलेबल है। छात्र अपने योग्यता के अनुसार वेबसाइट पर जाकर oldcdu.ac.in पर जाकर देखें और वहां से अपनी योग्यता अनुसार अपने कोर्स का चुनाव करें।
1: घर की परिस्थितियां आपको आगे पढ़ने से रोक रही हैं और कमाने का दबाव बना रही हैं, तो पढ़ाई रोकिए नहीं, तरीका बदलिए।
2: स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ अपने हायर एजुकेशन के सपने को कीजिए साकार।
1: स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कई बार स्टूडेंट्स इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्किल कोर्स करना चाहिए, इस बारे में आप कोई सुझाव देना चाहेंगे?
0: मैं छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप स्किल कोर्सेज के पोर्टल पर जब जाएंगे, वेबसाइट पर जब जाएंगे तो oldcdu.ac.in पर आप देखेंगे वहां पर एक हमने हर कोर्स पेज पर एक उसका इंफॉर्मेशन वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें स्किल कोर्स के एक्सपर्ट जो हमारे हैं वो उस विषय के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं। उससे किस तरीके से आप सीखेंगे, क्या क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है और किस तरीके से ये आपको इंडस्ट्री में जाने के लिए मदद करेगा, पूरा एक चर्चा की गई है। लेकिन फिर भी अगर छात्र कहीं ना कहीं असंतुष्ट है और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो फोन नंबर्स हमने बताए हैं उस पर बैठे एजेंट से अगर आप बात करेंगे वो हमारे एजेंट्स आपको पूरी जानकारी देंगे।
1: दीक्षांत सर, चलते चलते आप कोई मैसेज या संदेश हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे?
0: सभी विद्यार्थियों का सबसे पहले अपने इन स्किल कोर्सेज में स्वागत और आह्वान दोनों करना चाहूंगा। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनका स्वागत और जो ज्वाइन करें उसके लिए मैं आह्वान करना चाहूंगा। स्किल आपकी बेसिक जरूरत है, बेसिक नीड है। इसके सहारे आप अपने जीवन यापन से लेकर और अपने आप को बहुत ही सक्षम पाते हैं और ये सक्षम आपकी मानसिक शक्ति और सभी से जुड़ा हुआ है। आप कभी डिप्रेस नहीं फील कर सकते हैं। आपका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में आप जो रेगुलर पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेकर अपनी डिग्री पूरी कर रहे हैं उनमें भी अपनी इस स्किल की जो व्यवहारिकता है वो आप देख सकते हैं। एक बार आप स्किल्ड हो गए कभी भी लाइफ में आपको अपने आप को कम नहीं आंक पाएंगे। तो मेरी आप लोगों को से यही अनुरोध रहेगा, अपने आप को स्किलफुल बनाएं, साथ ही साथ में अपना रेगुलर डिग्री सर्टिफिकेशन जो आप करना चाह रहे हैं वो भी करें। रोजगार एक बहुत जीवन की एक प्राथमिक आवश्यकता है, उससे भी आप कहीं ना कहीं स्किल के थ्रू लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: दीक्षांत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगी कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी आज स्किल कोर्सेज के लिए जरूर मिल गई होगी। उसी के आधार पर आप सोचें, विचारें और इन स्किल बेस्ड कोर्सेज पर जल्दी से जल्दी एडमिशन जरूर ले लें।
1: इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
3: हमारी ईमेल आईडी है podcast.query@sol.oldcdu.ac.in।
1: हम आपको एक बार फिर से बता दें, हमारी ईमेल आईडी है podcast.query@sol.oldcdu.ac.in।
3: अपने अगले कार्यक्रम में हम आप सभी को अपने स्किल बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपकी पढ़ाई आपका भविष्य, अब आपकी रफ्तार में।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने विश्व नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति परियोजना की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। गृह मंत्रालय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थल बनाने के विशेष अभियान का 6ठा चरण चलाएगा। यह अभियान अगले महीने की 2 तारीख से शुरू होकर 31 तारीख तक चलेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे हुए। वर्ष 2023 में शुरू किए गए माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में राज्य रानी एक्सप्रेस दुर्घटना में 4 इंटरमीडिएट विद्यार्थियों की मौत और 1 अन्य घायल हुआ। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने लद्दाख में आकाशवाणी कारगिल एकांश का दौरा किया और स्टेशन के समग्र कामकाज की समीक्षा की। दिल्ली सरकार ने त्योहारों के मौसम में मिलावटी खोया, पनीर और छेना के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली सरकार ने गणपति विसर्जन के लिए राजधानी में 81 कृत्रिम विसर्जन कुंडों की व्यवस्था की है। 11वां आयुर्वेदिक दिवस आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला स्कीम टीमों को कांस्य पदक जीता। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार और आप सुनते रहिए रेनबो हमारे साथ लगातार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हमें पता है बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, और आज आपकी चांद आपके साथ आ चुकी है आज की शाम। और मैसेज मसाला मिक्स है प्रोग्राम का नाम, और आज का हमारा सवाल थोड़ा स्वादिष्ट है, क्योंकि बात हो रही है खाने की। जी हाँ, अब कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनके सामने जो कुछ मिल जाए वो बड़े ही प्यार से खा लेते हैं। दाल है तो दाल सही, सब्जी है तो सब्जी सही, और कुछ लोग उनकी प्लेट तक खाना पहुंचने से पहले ही पूरी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। नमक कितना है, मिर्च कितनी है, तेल ज्यादा तो नहीं, सब्जी ठीक से बनी है या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, आज खाने में मेरी पसंद का क्या है। तो आज मिसेज मसाला मिक्स में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको जो भी खाने के लिए मिल जाए, क्या आप उसे चुपचाप खा लेते हैं, या खाने को लेकर इतने चूजी हैं कि आपकी पसंद नापसंद से सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके घर वालों और आसपास के लोगों की भी परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। 9868107070 9868107070
2: मेरे जैसा बेबी यहाँ कोई नहीं, मुझे पता है तू कल सोई नहीं, सबको पता है तुझे हो गया लव, सच्ची बता दे हो गया कब, और कहती

0: दोस्तों कहते हैं ना, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, मूड भी बनाता है। किसी का दिन गर्मा गर्म पराठे से बन जाता है, किसी को चाय के साथ कुछ मीठा चाहिए, और किसी का मूड तब तक ठीक नहीं होता जब तक उसकी प्लेट में उसकी पसंद की चीज ना आ जाए। लेकिन क्या खाने में पसंद होना और खाने को लेकर नखरे करना दो अलग अलग बातें हैं। आप कहाँ खड़े हैं? जो मिला प्यार से खा लिया, या फिर ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगी, या वो नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगी वाली कैटेगरी में? अपना जवाब, अपना आंसर, अपना टॉपिक पर अपनी अपने बात आप रख सकते हैं 9868107070 पर, 9868107070 पर। अभी हम लेंगे ब्रेक और उसके बाद हाजिर होंगे आपके मैसेजेस के साथ।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: दोस्तों हमने कहा था कि ब्रेक के बाद हम हाजिर हो जाएंगे आपके मैसेजेस के साथ, तो जनाब हम हाजिर हो गए। पहला मैसेज हमारे पास आया है पंकज जी का, अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स। आरजे मैडम, मैं तो खाने की थाली में जो भी मिले चुपचाप खाने वाले इंसान की कैटेगरी में आता हूँ। जो भी मिले प्यार से खाता हूँ, और मुझे खाने में तीखा और मीठा दोनों प्रकार का खाना खाना अच्छा लगता है, और मेरी तरह मेरे परिवार के सभी सदस्य चुपचाप खाना खाना पसंद करते हैं। जो भी खाना थाली में मिलता है उससे कभी भी कंप्लेन नहीं की है। बहुत बहुत अच्छी आदत है आपकी और बहुत अच्छी बात है ये। और आप दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, सच बताइए, क्योंकि आज जो भी बोलेगा सच बोलेगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से बोलते हैं, गुड इवनिंग शुभ संध्या। और ये आगे तारीफ करते हैं हमारी, उसके बाद ये लिखते हैं कि हम तो जो कुछ भी मिलता है वही खा लेते हैं चुपचाप, वरना उधर से माता जी की फ्लाइंग हवाई चप्पल आती है और घरवाली का फ्लाइंग बेलन आता है। अरे बाप रे बाप, बड़ी ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं आप। अच्छी मतलब अच्छी इसलिए है क्योंकि इससे आप काबू में रहेंगे, आप हमेशा वो कुछ भी नहीं डिमांड करेंगे, जो मिल जाएगा वो चुपचाप खा लेंगे, ऐसा मतलब होता है, ये भी एक लाइफ है। आज ये चांद साहिबा की आदाब सुन रहे हैं, आवाज पहचान ली थी, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फरहाज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा। जनाब आप हमेशा अटेंडेंस लगाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप टॉपिक के ऊपर भी कुछ कहते तो हमें और अच्छा लगता, लेकिन मैसेज करने के लिए आपका शुक्रिया। विजेंद्र गहलोत जी आलोक अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग चांद, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में मेरी बीवी दीदी में जो बोलता हूँ वही, अच्छा मेरी बेबी और उनकी वाइफ और उनकी बहन जो भी बोलता हूँ वो सब्जी बनाती हैं, कभी कभी उनके हिसाब से भी अपने हिसाब से भी करते हैं, और आप चीज़ों में एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अनिल वर्मा जी हमारे वरिष्ठ श्रोता जो है वो सरिता विहार से लिखते हैं, जो खाने में मिल जाता है वही खा लेता हूँ, मगर लहसुन वाली सब्जी मुझे पसंद नहीं इसलिए छोड़ देता हूँ। वैसे वरिष्ठ उम्र कमज़ोर पाचन शक्ति की वजह से तली तेज मसालेदार खाना पसंद नहीं करता, मजबूरी में शादी ब्याह में खाना पड़ जाता है। क्या बात है, आप शादी विवाह में खा लेते हैं अनिल शर्मा जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि खाने को लेकर आपके कितने नखरे हैं, कितने नखरे नहीं है, जो मिल जाता है चुपचाप खा लेते हैं। लेकिन आपको बताया अनिल शर्मा जी, आप तो शादी ब्याह में खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो शादी ब्याह में जाने के बावजूद घर में आके खाना बनवाते हैं और कहते हैं मैं वहां का वो वाला नहीं खाऊंगा, मुझे घर का बना हुआ ही खाना चाहिए। कुछ के नखरे ऐसे भी होते हैं। आप कैसे हैं दोस्तों, आप बता सकते हैं 9868107070 पर। चांद है आपके साथ और शाम का वक्त है हमारी तरफ से आपके लिए।

0: के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: और दोस्तों, आज हमने आपसे जानना चाहा है कि खाने में लेकर आपको किस तरह का खाना पसंद है, या खाने को लेकर आपके नखरे हैं या नहीं है, या जो चुपचाप मिल जाए वो आप खा लेते हैं। 9868107070 पर आप बता सकते हैं। चांद आपके साथ है। आज की शाम में कभी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, जो घर में बनता है मैं वो खुशी खुशी खा लेता हूँ। हाँ, कभी कभार जब घर वाले अपनी पसंद पूछते हैं तब अपनी ख्वाहिश उनके सामने रखता हूँ। भेरूलाल वागतरिया धाकर जी उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं। क्या बात है बिरला जी, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, कभी कभी अपनी पसंद बता देते हैं। हाई गुड इवनिंग डियर जान, कैसी हैं आप? एंड मैं तो आज के टॉपिक पर ये कहना चाहूंगी कि मैम, जब बात खाने की आती है तो खाने में हमें तो कोई सब्जी पसंद ना हो तो हम दूसरी सब्जी बना कर खा लेते हैं एंड ज्यादा नौटंकी नहीं करते, बाकी तो टाइम पर अवेलेबल होता है खा लेते हैं, ज्यादा कमियां नहीं निकालते खाने में, क्योंकि हम तो खुद ही बनाते हैं तो किसी और से क्या ही शिकायत करेंगे। आप मंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ यूपी से। ये बात आपकी सही है, जब इंसान खुद ही बनाता है तो उसमें क्या ही कमी निकालेगा जो बनाते हैं। ये तो कोई हमारे दिल से इस दर्द को पूछे कि ये इस दर्द का बयान हम ही कर सकते हैं। अगला मैसेज प्रवीण चौहान जी का आया है, खरगोन मध्य प्रदेश से, लिखते हैं कि मैं कुछ भी खा लेता हूँ जो मम्मी बनाती है वेज फूड। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अभी तक किसी ने ये नहीं लिखा कि वो बाहर के चाट पकौड़ी खाना पसंद करते हैं, बाहर जाके कचौड़ियाँ खाते हैं, बाहर में जो वो ठेले लगे रहते हैं उनमें बताशे खाते हैं, मोमोज खाते हैं, जबकि हम जब अपने घर जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ के आसपास जितने भी, रात को हम भले ही 10 बजे पहुंचे 11 बजे पहुंचे, लेकिन हर ठेले में लोग खड़े रहते हैं, भीड़ लगी रहती है, मोमोज खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं लिखा। सबने लिखा घर में जो भी बनता है चुपचाप खा लेते हैं, यानी सब कुछ ना कुछ कहीं तो गड़बड़ है। चलिए अगले मैसेज पे आ जाते हैं। लिखते हैं, हाय मैम, हम प्रगति राज पटना से हैं और मैं खाने के समय बहुत नखरे करती हूँ कि मुझे ये नहीं खाना है, मैं वो खाऊंगी। जब तक मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं मिल जाता तब तक मैं भाई रूट भी जाती हूँ। अच्छा, अरे वाह, रूट भी जाती हूँ बहुत बार, और मैं नखरे बहुत करती हूँ खाना खाने में। क्या नाम है आपका? प्रगति जी। चलिए, ये नखरे तभी तक चलते जब घर में हम होते हैं, जब हम बाहर निकले ना तब हमें पता चला कि मम्मा के हाथ के खाने का क्या ज्यादा स्वाद होता है। गुड शुभ संध्या चांद, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुनगाओ, हम तो इसी गीत को चरितार्थ करते हैं। जब भूख लगती है तो सब अच्छा लगता है, नखरे नहीं दिखाते, आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। देहरादून से आलोक पवार और मिनी जी ऐसा लिखते हैं। क्या बात है मिनी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दाल रोटी खाने को अगर मिल जाए साफ सुथरी तो उससे बढ़िया तो कोई खाना ही नहीं हो सकता, हमें ऐसा लगता है। अगला मैसेज हमारे पास आया है नवाब अहमद भारती जी का, बल्ली मारा से। मैडम जी, हमें तो जो मिल जाता है ऊपर वाले के आसन एहसान मानकर खा लेता हूँ, क्योंकि ये भी नहीं मिलता, उनके बारे में सोचते हैं कि उनको क्या होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही है, लेकिन जब जबान की बात आती है ये तो जब इंसान अकेला रहता है ना तो ये तो आ ही जाती है दिमाग में बात, कि पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाने में कितनी मुश्किल होती है, उनको थोड़ा सा भी खाना मिल जाता होगा तो वो कितने खुश होते हैं, लेकिन ऐसे में हम लोग नखरे दिखाते, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अभी भी है हमारा कुछ बाकी, लेकिन धीरे धीरे ऊपर वालों ने चाहा तो वो भी खत्म हो जाएगा। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। आज के टॉपिक में हम यही कहना चाहेंगे कि हमें खाने में कुछ भी मिलता है हम उसे प्रभु का आशीर्वाद समझ कर खा लेते हैं और भजन करते हैं। नाइस प्रेजेंटेशन केशन वंजानी, नीलम स्वाति और कृष्णु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिखते हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप जी, बहुत अच्छा, और शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मेरी वाइफ खाना अच्छा नहीं बना पाती लिखते हैं। ओ, सचिन जी ने लिखा है उज्जैन यूपी से, लिखते हैं मेरी वाइफ खाना अच्छा नहीं बना पाती है, इसलिए मेरा मूड चिड़चिड़ा हो जाता है और

0: मुझे स्वादिष्ट खाना खाने की आदत डाल रखी थी मेरी मम्मी ने। बाप रे बाप, सचिन जी ऐसे मत कहिए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, वो और चीजें तो अच्छी करती होंगी ना, उससे आप एडजस्ट कर लीजिए, बैलेंस बैलेंस बैलेंस बनाइए। गुड्डू धाकड़ जी का मैसेज आया हमारे पास, बेड़ा बन गाओ, माँ बाप का कमाया खाते थे तो नखरे खरते थे, खुद कमाने लगे हैं तो जो भी थाली में सामने आता है प्रेम से खा लेते हैं। जी गुड्डू धाकड़ जी, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है। और अगला मैसेज हमारे पास आया, घर से खाने के ही जाते हैं, घर घर का खाने के ही जाते हैं, शादी पार्टी के वापस आकर थोड़ा सा कुछ लाइट ले लेते हैं, ट्राई टू अवॉइड ईटिंग आउटसाइड। शैलजा फ्रॉम निमराना से लिखती है ऐसा, किनो घर का ही खाना पसंद है और कुछ ना कुछ खाते ही है घर में आके। और एक सैनिक जम्मू कश्मीर से, एक सैनिक ने नाम नहीं बताया अपना, हम सैनिकों को तो सबसे अच्छा खाना मिलता है, कभी इडली, कभी हलवा, कभी उपमा, कभी नॉर्थ इंडियन तो कभी साउथ इंडियन, बट अब से आता तो अच्छा है शाम को आपको खाने में मिलता है, ज़रूर मिलता है, और चॉइस आपकी है कि आप पनीर खाएंगे या चिकन। वाओ क्या बात है, आपने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन चलिए एक गाना सुनते ही, ये गाना हमें बहुत पसंद है।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की,

0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: स्वागत है दोस्तों, आप सबका। घड़ी की सुई में ठीक 6:30 हो गए हैं।

0: इंडियन गेम्स पर अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मुक्केबाजी की। मुकाबला एक ही था लेकिन भारत को वहां जीत मिली। जी हां, भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम का जो मुकाबला था फाइनल में, जो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्ष के राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा वेंगे को अंतिम जिस तरह से मुकाबला था 16 में से जो अंतिम जो 16 का मुकाबला था उसमें 5-0 से जीत दर्ज की, यानी 5-0 से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने के एक कदम दूर हैं, यानी वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमोव से भिड़ेंगे।
1: जी शुक्रिया शाहिद। और आगे बढ़ेंगे, वुशु की बात करते हैं दोस्तों। द बिग न्यूज दैट वी हैड ऑल बीन वेटिंग फॉर इज दैट रोशिबिना देवी हैज सिक्योर्ड हर प्लेस इन द वुमेन 60 किलोग्राम फाइनल आफ्टर बीटिंग इंडोनेशिया स्थानिया 2-0 इन द सेमीफाइनल। ये मुकाबला आज घटित हुआ और अब इसके बाद कल हम सब रोशिबिना देवी को देख सकते हैं फाइनल्स के मुकाबले में, एंड होपिंग That she gets us the coveted gold. Well, ये तो समय ही बताएगा कल कि भारत के नाम कल वुशु में सिल्वर आ रहा है या गोल्ड, लेकिन रोशिबिना देवी को हर भारतीय की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ बिग गेम टुमारो।
0: रोइंग की बात करते हैं साक्षी। रोइंग से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर आ रही है। एशियन गेम्स में भारतीय रोवर्स ने 4 स्पर्धाओं में फाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6:52.84 के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6:15.63 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में जगह बना ली, यानी पहुंच चुकी है। लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह हासिल कर ली है। वहीं पर क्वार्टरपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलेंद्र सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने भी फाइनल में जगह बना ली है। अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं। डबल स्कल्स की जो मुकाबला है यानी फाइनल मैच जो है 24 सितंबर यानी कल खेला जाएगा।
1: राइट, और अब बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। उम्मीद तो वैसे हमारे शटलर्स से आज बहुत ज्यादा लगाई गई थी क्योंकि मेंस टीम सेमीफाइनल्स आज घटित हुए हैं, लेकिन इट वाज आई वुड सी अ मिक्स्ड फिनिश बाय आवर शटलर्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी फिनिश्ड विद द ब्रॉन्ज मेडल। यस, इंडिया लॉस्ट 1-3 टू चाइना इन द मेंस टीम सेमीफाइनल एंड द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 एंड हैड टू सेटल इन फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। ऑल्सो दिस इज इंडियाज ये जो ब्रॉन्ज मेडल है ये भारत का सेकेंड एवर एशियन गेम्स मेडल है मेंस टीम बैडमिंटन के अंदर। लेट्स मूव ऑन टू ऑल्सो गिविंग यू slight details on how the all the matches went. सबसे पहला मैच हुआ था शी यू कुई के और लक्ष्य सेन के बीच में, जिसमें शी यू कुई डिफीटेड लक्ष्य सेन इन स्ट्रेट गेम्स विनिंग 21-16, 21-18। बाद में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने नेक्स्ट मैच के अंदर एक कमबैक जरूर करवाया भारत को अगेंस्ट चाइनाज लियांग विकिंग एंड वैंग चैंग बाय डिफीटिंग देम इन स्ट्रेट गेम्स 2-0, बट दैट वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ बिकॉज ली शेफेंग देन लेटर बीट आयुष शेट्टी 21-19, 21-13 और इसके साथ ही चाइना ने 2-1 से अपनी बढ़त भी मना ली इन द मेंस टीम सेमीफाइनल। एंड द फोर्थ मैच जो हुआ था अर्जुन और हरिहरन के बीच में, उसमें वंस अगेन दे वेंट डाउन 21-16, 17-21, 21-9, दे जस्ट वर नो फाइट टू देयर चाइनीज अपोनेंट्स एंड एज अ रिजल्ट चाइना डिफीटेड इंडिया 3-1 इन द मेंस टीम सेमीफाइनल्स।
0: जी चीन की बात की तो चीन के बारे में बता दें, मेडल टेबल पर चीन अभी भी सबसे ऊपर बना हुआ 48 गोल्ड 20 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज समेत कुल 78 पदक जीतकर सबसे ऊपर बना है, जबकि जापान जो मेजबान है इस एशियन गेम्स का 15 गोल्ड 25 सिल्वर 37 ब्रॉन्ज समेत 67 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर। वहीं दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं, 8 गोल्ड 8 सिल्वर 25 ब्रॉन्ज समेत 41 पदक जीतकर तीसरे पायदान पर है।
1: जी, और अब एक नजर भारत के ऊपर भी डाल लेते हैं कि वेयर एग्जैक्टली इज इंडिया स्टैंडिंग इन द मेडल टेबल। भारत की पोजीशन इस समय है 13th। कुल मिलाकर भारत के पास हैं 12 मेडल्स जिसमें से एक गोल्ड आया है क्रिकेट की दुनिया से, द वुमेन्स क्रिकेट गेटिंग अस दैट गोल्ड यस्टरडे। 5 सिल्वर मेडल्स हैं जिसमें 4 शूटिंग से आए, 1 वेटलिफ्टिंग से। 6 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं जिसमें से 3 शूटिंग में आए, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट में आया है, 1 सॉफ्ट टेनिस में आया है और 1 बैडमिंटन में। हियर इज होपिंग दैट इंडिया गोज ऑन टू एड मेडल्स स्पेशली द कोवेटेड गोल्ड टू देयर किटी मोर एंड मोर इन द कमिंग डेज। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास इस अपडेट में शाम 6:30 आप सबके लिए बस इतना ही था। आपसे एक बार दोबारा जुड़ेंगे दोस्तों शाम को 7:30 विद ऑल द रैप अप of the entire day update and also giving you a preview of the events lined up tomorrow. For the moment, it's me.

0: Akshi Mandwal and Shahid Azmi saying goodbye.
1: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.
2: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: दोस्तों जरा उनकी बात कर लेते हैं जो घर में अकेले नहीं रहते, क्योंकि उनकी खाने की पसंद का असर पूरी फैमिली पर पड़ता है। घर में सबके लिए खाना बन गया, लेकिन साहब या मैडम की प्लेट देखकर घोषणा होती है कि ये तो मैं नहीं खाऊंगा, फिर दूसरा खाना बनाओ। दूसरा बन गया तो इसमें तो मिर्च है, मिर्च कम कर दी तो इसमें स्वाद ही नहीं है। और आखिर घर वाले सोच में पड़ जाते हैं, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, किसी 5-5 स्टार होटल का किचन में एक बात हो रही है। तो दोस्तों आप कैसे हैं, आपका कैसा स्वभाव है खाने के मामले में, कितने नखरे हैं आपके खाने के मामले में, आप हमें बता सकते हैं 9868107070 पर। चांद है आपके साथ आकाशवाणी रेनबो पर। और दोस्तों आपको एक सच्ची बात बताएं, मैं आलू बिल्कुल पसंद नहीं है।

0: बड़ी है
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेज मसाला मिक्स में आज हमने आपसे जानना चाहा है कि खाने में आप नखरा करते हैं या चुपचाप जो मिलता है खा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने के मामले में बिल्कुल सरल होते हैं, जो बना है वही खा लेंगे। जैसे कितने लोगों ने हमें मैसेज भी किया, ना कोई शिकायत ना कोई फरमाइश, लेकिन इनके साथ भी एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि घर वालों को कभी पता नहीं चलता कि आखिर इन्हें पसंद क्या है। पूछो क्या खाओगे, जवाब है कुछ भी। फिर पूछो दाल चावल खाओगे, नहीं। रोटी सब्जी खानी है, नहीं। तो फिर कुछ भी। अरे भाई, कुछ भी आखिर होता क्या है। और अगर आप बताना चाहते हो कि आपके खाने के मामले में कैसा है टेस्ट, तो आप हमें बता सकते हो 9868107070। टेस्ट नहीं, आपके नखरे बता सकते हो आप हमें। और दिनेश नाहर सिंह दिल्ली गोकल पुरी अमर कॉलोनी से लिखते हैं, चांद हम एडजस्ट कर लेते हैं, आज मैंने आपको दिल से याद किया था, आने के लिए थैंक्स। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आप दिल से कुछ भी करते हो जाता है तो सबके लिए अच्छा अच्छा बोला करिए आप। आज का सब्जेक्ट बहुत चटपटा है। मैं औरंगाबाद बिहार से आलोक मिश्रा हूँ। मुझे घर का खाना बना खाना बेहद पसंद है। उसमें जो प्यार का एहसास होता है ना, ओ हो, बाहर के खाने में संतुष्टि नहीं होती। वैसे अभी मेरे यहाँ बारिश हो रही है, आप जानते हैं मैं भी क्या खा रहा हो सकता हूँ। खाइए सामने तो आपने कपलेट बना के खा नहीं, पिए। बंगाली लोग ही खाते हैं हर चीज, बाकी तो पी जाती है चीजें। हेलो मैम, आई एम भुवनेश्वर फ्रॉम आलोक अशोक विहार दिल्ली। हाउ आर यू ऑन टुडेज टॉपिक? आई वुड लाइक टू से दैट आई ऑलवेज ईट एवरीथिंग, व्हाट एवर आई मेड इज मेड एट होम, बिकॉज व्हाट एवर इज मेड एट होम इज मिक्सड विद द मदर्स ट्रू लव। आई ऑल्सो लाइक टू ट्राई न्यू डिशेज मेड बाय माई सिस्टर। सम डेज बैक शी हैड मेड बनाना कुकीज फॉर अस, दे वर वेरी डिलीशियस। डेफिनेटली बनाना कुकीज, आई लव बनाना कुकीज, लेकिन हमने कभी घर का नहीं खाया, हमने बाजार का ही खाया हमेशा। अगले मैसेज पे आ जाते हैं। आई एम नेहा फ्रॉम गाजियाबाद। अरे जी जरूर, आपने लिखा नहीं है कुछ भी नेहा जी, चलिए आपने मैसेज कर दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से आया है। लिखते हैं कि सादा भोज सबसे दादा भोजन होता है, सबका सबसे बड़ा भोजन इन्होंने लिखना चाहोगा, लेकिन डी बी की जगह इन्होंने डी लिख दिया है। सादा भोजन करो, रखो उच्च विचार, हो जाएगा बड़ा बेड़ा पार। दाल रोटी खाओ, प्रभु जी के गुण गाओ, आन देवता है, अन्य पूज्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, आप खाए ना खाए, कुछ करे ना करे, लेकिन अन्य जो लोग कुछ फेंकते हैं ना, उनसे हमें थोड़ा सा आपत्ति है, हमें उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ और अपने माता पिता को भी खिलाता हूँ। मुझे बॉयल्ड वेजिटेबल्स, उबली हुई सब्जियाँ, उबले अंडे यानी उबला हुआ खाना पसंद है। मैं शादी ब्याह में बाहर होटल में जाकर खाना नहीं खाता हूँ, पहले बहुत खाया, उसी कारण से मुझे एसिडिटी हो गई थी, इसलिए अब केवल उबला हुआ खाता हूँ। रुबल राणा चंडीगढ़ से लिखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। उबला खाना भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इससे एक तो आपका फैट नहीं आता, दूसरा आपको इसमें किसी तरह की टेंशन नहीं होती, अच्छा इसके बाद कौन सा मसाला पड़ेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जोया मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से जो हमारी रेगुलर श्रोता हैं हमें भेजती हैं, उन्होंने ये मैसेज लिखा है कि मैं खाना खुद बनाती हूँ तो नखरे किससे करूँ, जब मम्मी खाना बनाती थी तो वो बहुत लजीज होता था तो नखरे करने का कोई कारण ही नहीं होता था। अच्छा जी, लेकिन ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मम्मी बनाती तो खाना ज़रूर लजीज बनता है, जिनको नखरे लेकिन करने होते हैं ना वो ज़रूर करते हैं, जैसे कि हम। गोरख मजाल्टा से जम्मू कश्मीर से लिखते हैं, हम तो अपनी पसंद का ही खाते हैं, खाने के मामले में भाया नो कॉम्प्रोमाइज़। और गोरखा जी ने लिखा है हमें ये मैसेज, क्या बात है, अपने टशन में रहते हैं लोग। गुड इवनिंग चांद, नॉन वेज को छोड़कर ज़्यादातर जो बनाती हूँ खा लेती हूँ, बल्कि मैं ने किसी के नखरों से परेशान हूँ, बल्कि मैं ही किसी के नखरों से परेशान हूँ। अच्छा, ये जो बनाती है चुपचाप खा लेती है, किसी के नखरों से परेशान हूँ। कश्मीर जाऊँगी आइसक्रीम खाऊंगी, क्या कश्मीर में आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी मिल जी ये गाना हमें इसलिए बजाए क्योंकि आइसक्रीम हमें बहुत पसंद है। मैं सच में नखरे नहीं करता, करेला भी बड़े चाव से खाता हूँ। प्रवीण चौहान जी ऐसा लिखते हैं, इन्होंने पहले भी हमें मैसेज किया। अभी अगला मैसेज हमारे पास आया है, मेरा नाम सुरेश पाल है और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, दिल्ली सुल्तानपुर से खाना सुल्तानपुरी से खाना बनता ही नहीं है क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ तो मैं होटल दिखाना अच्छा होटल से खाना लाता हूँ और होटल पर जो मिल जाता है वही खा लेता हूँ। कोई बात नहीं सुरेश जी, देखिए खाना तो खाना, अन्न तो अन्न है ना, जो भी अन्न मिल जाए उसको प्रभु का, काफ़ी लोगों ने कहा कि वो प्रभु का प्रसाद समझ के उसे खा लेते हैं, और जिस चीज़ को आप प्रसाद समझ के खा लेते हैं ना तो वो चीज़ अपने आप ही स्वादिष्ट हो जाती है और उसमें पौष्टिकता भी आ जाती है। किसी अच्छी चीज़ को आप सोच के खाए, अरे मन नहीं कर रहा कैसे खाऊं, तो वो चीज़ वैसे भी आपकी हेल्थ को नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती उसको आप सोचें, वाओ क्या प्यारा भोजन मिला है, कितना स्वादिष्ट है, क्या स्वाद है, कितना अच्छी बात है जो मुझे ये भोजन मिला है, उसको समझ के अगर आप खाएंगे तो वो खाना ना सिर्फ आपके मुंह की स्वाद ग्रंथियों को अच्छा लगेगा बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी वो बहुत अच्छा बन जाएगा। सच्ची सच्ची उपदेश नहीं दे रहे हैं ऐसा ही होता है।

0: वाजी वाह तो है दोस्तों, लेकिन लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर हो जाएंगे वाजी वाह करने के लिए आकाशवाणी रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से

हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

और दोस्तों इश्क का मजा भी तभी है जब हम सब मिलजुल कर अपने घर में, अपने आसपास, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ मिलकर रहे। फिलहाल अगला मैसेज हमारे पास ब्रजेश सिंह दीपू जी का इटहुआ कैसरगंज बहराइच यूपी से आया है। लिखते हैं कि मैं आपकी आवाज बहुत पसंद करता हूँ, हम खाने में कोई कंप्लेन नहीं करते, कुछ भी हो सब खा लेते हैं। क्या आवाज है ब्रजेश जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। हिरन मगरी सेक्टर 4 से उदयपुर राजस्थान से सुशील यादव रेणु यादव लिखते हैं, सुबह शाम का एक महत्वपूर्ण सवाल, सब्जी क्या बनाऊं? इसका सही जवाब जो आपको ठीक लगे, क्योंकि सारी सब्जियां खाने के लिए ही तो लाई जाती है। फिर सिलेक्शन तो गृहिणी का ही होना चाहिए, क्योंकि परिवार की जरूरत वो बेहतर समझती हैं, ऐसा कहना है सुशील यादव जी का। जी बिल्कुल सही कहा। कपिल हेयर फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए, आई लव भिंडी एंड आलू गोभी। क्या बात है, आपकी हमारी पसंद बहुत मिलती है, भिंडी हमें भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगला मैसेज हमारे पास आया है आलोक गौर भोपाल, मुझे बिल्कुल भी अचानक नहीं है, मतलब अच्छा अहंकार नहीं है ऐसा लिख रहा है, जो मिलता है खा लेता हूँ, आप भी बहुत अच्छे लगते हो मुझे, लेकिन मैं आपको नहीं कहा अब हमें खाने की क्या बात है भाई। नमस्ते चांद, मैं पहले बहुत नखरे करती थी, लेकिन जब नौकरी के सिलसिले में पीजी में रहना पड़ा तब अकल आ गई, और शादी के बाद अब खुद खाना बनाना पड़ा तो सारे नखरे छू हो गए। हालांकि मैं अब भी धनिया खाना पसंद नहीं करती हूँ, अब बेटी होने के बाद नखरे का डिपार्टमेंट उसे ट्रांसफर कर दिया है। अरे जी क्या बात है, नाम तो बताया नहीं आपने, क्या नाम बताया आपने अपना नाम? नाम नेहा, नेहा जी ने लिखा है गाजियाबाद से। दोस्तों मोस्ट मैसेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब हमारे पास जो नहीं है वो है टाइम। और दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज की हमारी खाने वाली बातचीत यही तक थी। याद रखिएगा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं बनता, उसमें थोड़ा प्यार, थोड़ी यादें, थोड़ी साथ बैठकर खाने वालों की हंसी और बाकी सब कुछ होता है। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी पसंद की वजह से रसोई में किसी की ड्यूटी डबल ना हो जाए। और चांद को दीजिए इजाजत, मैसेज मसाला मिक्स, अब आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तो अभी एक घंटे के बाद फिर से आपसे मिलने के लिए हम आकाशवाणी रेनबो पर आएंगे, तब तक आप सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो।

0: Welcome back after the lively track. And for now, it's time for us to take a short break. And please promise me that you'll not touch the dial. And we will be right back.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
9: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
10: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहे

0: Welcome back, and it's time for the Asian Games 2026 update.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
2: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट के साथ। आज की ये अंतिम अपडेट है। बात करेंगे आज जो दिन भर में उठा पटक हुई, कहीं अच्छा हुआ, कहीं लगा कि कुछ अच्छा और होना चाहिए था, कहीं उम्मीद बनी, कहीं उम्मीद टूटी, इसी पे बात करेंगे। आज क्या कुछ भारत के हाथ लगा। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का जहां मान बढ़ाया, वहीं शूटिंग में भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, वहीं महिला स्की टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सॉफ्ट टेनिस में पुरुष सिंगल्स में जय मीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा। यह सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला एशियन गेम्स पदक है। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस तरह वेटलिफ्टिंग, शूटिंग, सॉफ्ट टेनिस, बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों ने

0: भारत की पदक की संख्या जो है उसमें इजाफा किया। वहीं कल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कई बड़े इवेंट होने वाले, कई पदक दांव पे लगे हैं। जी हाँ, एशियन गेम्स में 24 सितंबर को भारत की नजरें कई अहम मुकाबलों और पदक स्पर्धाओं पर रहेंगी। रोइंग में बलराज पवार सिंगल स्कल्स फाइनल में उतरेंगे, सतनाम सिंह और सलमान खान डबल स्कल्स फाइनल में चुनौती देंगे, महिला फोर लाइट वेट डबल स्कल और क्वाड्रपल स्कल्स में भी भारतीय नाविक पदक की दौड़ में बने रहेंगे। उशु में रोशिबिना देवी महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में चीन की झांग शाओ के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी। शूटिंग में आकाश भारद्वाज, कमलजीत, केदारलिंग, बालकृष्ण 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की चुनौती पेश करेंगे। वहीं स्कीट मिस टीम में परिणाम धालीवाल और आनंदजीत सिंह नरुका भी उतरेंगे, यानी पदक के लिए उनकी जोड़ी भी मध्य मुकाबिल होगी। कैनो स्प्रिंट में पुरुष कयाक पोर और कैनो डबल 500 मीटर के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए उतरेंगे। टीम स्पर्धा में पुरुष कबड्डी का मुकाबला चीनी ताइपे से और महिला कबड्डी टीम का मुकाबला जापान से होगा। वहीं पुरुष हॉकी टीम कल दक्षिण कोरिया से जोर आजमाइश करेगी, या यूं कहें कि वहां जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। मुक्केबाजी की बात करें तो पुरुष 70 किलोग्राम में प्री क्वार्टर फाइनल में सुमित का मुकाबला अली कासिम हमदान अल सर्रे से होगा। वहीं मुक्केबाजी की महिला वर्ग में 51 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 में साक्षी रिंग में उतरेंगी, उनका सामना कजाकिस्तान की अलुआ बालिकबेवा से होगा। भारत की परवीन हुड्डा 65 किलोग्राम में उज्बेकिस्तान की मलिका नोजिमोवा से भिड़ेंगी। एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में आशा इलंगो और निहारिका वशिष्ठ ट्रिपल जंप फाइनल में उतरेंगी। 100 मीटर में अनिमेश कुजूर और गुरिंदर सिंह भारतीय चुनौती पेश करेंगे, जबकि महिला 10,000 मीटर फाइनल में सीमा पर भी सभी की निगाहें बनी होंगी। कुल मिलाकर 24 सितंबर भारत के लिए कई खेलों में पदक की उम्मीदों से भरा होगा। कई खेलों में भारत की पदक पर निगाहें होंगी। खासकर अगर बात करें तो एथलेटिक्स में जो कल से मुकाबले शुरू हो रहे हैं, भारत के कई वहां पर जो खिलाड़ी उतरेंगे, साथ ही साथ कबड्डी, शूटिंग या हॉकी, कई जगहों पे पदक होंगे, यानी सभी की निगाहें इन खेलों पे लगी होगी। देखना होगा भारत कहां तक पहुंचता है, यानी भारत की जो चुनौती है वो कहां तक आती है, किन किन खिलाड़ियों को पदक मिलता है। लेकिन हाँ, आज का जो दिन था शूटिंग में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत खास नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की जो बड़ी खिलाड़ी हैं, बड़े जो नाम हैं, चाहे हम बात करें मनु भाकर की बात करें, सुरुचि सिंह की बात करें या ईशा सिंह की बात करें, वो सभी यहाँ पर नाकाम फिलहाल नजर आए। हालांकि 25 मीटर में अभी भी मनु भाकर को पदक जीतने की उम्मीद है। अगर पदक तालिका पर देखें तो सबसे ऊपर चीन 48 गोल्ड, 20 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज सहित 78 पदक जीतकर है, जबकि जापान 15 गोल्ड, 25 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज समेत 67 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर कोरिया है, यानी दक्षिण कोरिया 8 गोल्ड, 8 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज समेत 41 पदक के साथ तीसरे स्थान पर, जबकि भारत की बात करें, भारत पदक तालिका पर तीसरे स्थान 13वें स्थान पर है, 1 गोल्ड, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज समेत कुल भारत के खाते में 12 पदक हैं। कल यकीनन भारत की जो पदक की संख्या उसमें इजाफा होगा, और उम्मीद है कि जो तालिका पदक की है उसमें भी भारत की जो तालिका में जो स्थान है उसमें भी उछाल होगा, जो 13वें से उम्मीद है कि और ऊपर भारत जाएगा। फिलहाल आज की इस अंतिम अपडेट के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: You were listening to the Asian Games 2026 update. Stay tuned to the station of the nation.

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की, महीने के

0: आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। गृह मंत्रालय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थल बनाने के विशेष अभियान का 6ठा चरण चलाएगा। यह अभियान अगले महीने की 2 तारीख से शुरू होकर 31 तारीख तक चलेगा। वर्ष 2023 में शुरू किए गए माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने त्योहारों के मौसम में मिलावटी खोया, पनीर और छेना के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली सरकार ने गणपति विसर्जन के लिए राजधानी में 81 कृत्रिम विसर्जन कुंडों की व्यवस्था की है। महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षित परिवहन के लिए आज दिल्ली मंत्रिमंडल ने अपलिफ्टमेंट और रोजगार फॉर वुमेन और ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो दुर्गा योजना को स्वीकृति दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन

गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला स्कीट टीमों को कांस्य पदक जीता। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार और आप सुनते रहिए रेनबो हमारे साथ लगातार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: म्यूजिक मस्ती आकाशवाणी रेनबो पर आज की शाम चांद मुखर्जी के साथ।

0: आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आप लगातार चांद के साथ बने हुए हैं।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: साथियों, आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहां तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने रखें।

है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप हैं आकाशवाणी रेनबो पर, सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती और आपके साथ है चांद।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मागिले तुम मत मागिले, तुम मत मागिले, तुम मत मागिले, तुम मत।

0: रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

0: दोस्तों ये सच है कि पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हेल्थ अच्छी रहे। और हेल्थ अच्छी रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप फिट रहो, और फिट रहने के लिए क्या जरूरी है
1: जी? डांस डांस और डांस।

0: उम्मीद है कि आप
1: तारीफ के लिए शुक्रिया।
0: तारीफ तो उसी की जाती है जो उसके लायक होता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। जाहिर सी बात है प्रोग्राम भी बहुत ब्यूटीफुल करने वाली हैं। तो चांद की आपसे मुलाकात होगी फिर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रेनबो के ही किसी न किसी प्रोग्राम में। तो क्या आपका चांद जाए। बाय।

भारत ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के संबंध में अमेरिका के साथ अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा है कि इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपये से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। गृह मंत्रालय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थल बनाने के विशेष अभियान का छठा चरण चलाएगा। यह अभियान अगले महीने की 2 तारीख से शुरू होकर 31 तारीख तक चलेगा। वर्ष 2023 में शुरू किए गए माय भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। राजधानी के शहरी निकायों के लिए दिल्ली सरकार ने 1,850 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी कर दी है। ये किश्त वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में कल से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षित परिवहन के लिए आज दिल्ली मंत्रिमंडल ने अपलिफ्टमेंट और रोजगार फॉर वुमेन और ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो दुर्गा योजना को स्वीकृति दी। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते हैं। AIRFM रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

ये सर प्रोग्राम आपका चल रहा है, आपकी याद आती रही। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और 90s के गानों के साथ ये जो एक घंटा है ना, वो इसी तरीके से चलता रहेगा। 10 बजे तक हम और आप यहीं रहेंगे साथ साथ, और 90s के गानों के साथ ढेर सारी बातें भी होंगी आपके साथ।

सात को ज्यादा ही हो गया, थोड़ा एडिट कर देते हैं इसको, राइट. पर यहाँ एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो 90s के गाने और 90s की मूवीज, 90s की बातें, ऑल आर अमेजिंग, राइट. जिन्होंने 90s जिया है वो तो अच्छे से जानते हैं, और जिन्होंने नहीं जिया है तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जब बताते हैं कि भाई 90s में ये था, ये था, वो था, ये था, ये था, वो था, तो कहते ओके फाइन, योर 90s बेस्ट. लेकिन हमारा जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, ये भी किसी से कम नहीं है. फिर 90s वाले कहते हैं, अरे जाओ तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम क्या जानो. लेकिन अभी जो 90s के गानों की अगर बात करें ना, तो दिस इज द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी परदेस एंड दिस वन कुमार शानू आवाज, माइंड ब्लोइंग. एंजॉय दिस वन, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

ये जो फिल्म है ना, जिस फिल्म का सॉन्ग है, ये फिल्म है हासिल, और बहुत ही डिफरेंट मूवी थी, एक अलग कॉलेज पॉलिटिक्स जो होती है ना उसके ऊपर बनी हुई फिल्म थी, और लोगों को बड़ी पसंद आई थी। ऐसा नहीं कि लोग पसंद नहीं आया, सबको सबको पसंद आई। सॉन्ग है स्पेशली दिस, इस फिल्म का बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ था। अच्छा, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट जैसे 90s की फिल्में आती है ना, एक तो ये थी जैसे कॉलेज पॉलिटिक्स पे बेस्ड थी, उसी तरीके से अगर आपको याद हो जख्म थी अजय देवगन की फिल्म, पूजा भट्ट भी थी उसके अंदर, और इट्स अ टोटली डिफरेंट मूवी थी वो, और उसमें भी जो सॉन्ग थे ना, मतलब म्यूजिकली टोटली ऑल मूवी इज हिट, नो डाउट। और उसमें से एक जो ये सॉन्ग है ना अलका याग्निक की आवाज़ में, ये तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्टिल अभी भी लोग इसको सुनते हैं, अभी भी इस गाने को लोग इन्जॉय करते हैं, और मुझे पूरे यकीन है कि जैसे मैं एक सॉन्ग प्ले करूँगी ना आपके लिए, आप भी गुनगुनाना शुरू कर दोगे, करेक्ट? इन्जॉय द सॉन्ग, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना, जिसका नाम है आपकी याद आती रही, और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर। तुम मेरे सामने से गुजरते रहो और मैं तुम्हें हसरतों से देखा करूं। बाबा तुम मेरे सामने से गुजरते रहो और मैं तुम्हें हसरतों से देखा करूं। तुम समझते रहो मुझे एक अजनबी, तुम समझते रहो मुझको एक अजनबी, और अजनबी राह मंजिल पर चलता रहे। इश्क में जिंदगी का यही है मजा, इश्क में जिंदगी का यही है मजा, आशिके जार पहलू बदलता रहे। यूं ही घड़ियां शबे गम की कटती रहे, यूं ही घड़ियां शबे गम की कटती रहे, याद आते रहो तुम दिल बहलता रहे। वाओ, मेरी लाइंस नहीं है वैसे, ये चोरी की लाइंस है, लेकिन मुझे लाइंस बड़ी अच्छी लगी। बड़े दिनों बाद में एक अच्छी गजल सुनने को मिली और उसमें इतनी डीप लाइंस थी, दिस इज सो गुड। हालांकि जब मैं सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ ना, वैसे थोड़ा डिफरेंट है, 90s का ना, इसलिए एंजॉय दिस वन। आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर, और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, और सॉन्ग लता जी और उदित नारायण जी की आवाज में। एंजॉय दिस आपके अपने रेडियो स्टेशन पर। प्रोग्राम आपको पता ही है, आपकी याद दे रही, और मैं कौन हूँ, प्रियंका।

एंड नाउ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक टाइम. ब्रेक टाइम मीन्स ये नहीं हुआ कि आपको कमर्शियल में सुनवाने वाले हो, नॉट एट ऑल. मैं आपके लिए ब्रेक लेकर आई हूँ, मतलब थोड़ा सा हम 90s से हटके ना 80s में चलते हैं, 70s का रुख करते हैं, 60s का रुख करते हैं, मतलब वहां से कुछ निकाल के ना छान बीन करके कुछ लेकर आते हैं. और मैंने जब ढूंढा, मैंने जब तलाशा तो मुझे कुछ मिला विच इज वेरी इंटरेस्टिंग सीरियसली. और मतलब उस टाइम पर अगर हम थोड़ा पीछे के दौर की बात करते हैं, जब 90s की बात करते हैं, तो उस दौरान बहुत सारे सुपर ड्यूपर हिट सॉन्ग्स हैं और उसमें आवाजें ओ माय गॉड लवली. यस, लता जी की बात कर लीजिए, आशा जी की बात कर लीजिए, मोहम्मद रफी साहब की बात कर लीजिए, किशोर दा की बात कर लीजिए, दे ऑल आर फैबुलस वॉइसेस सीरियसली. और उसमें मोहम्मद रफी साहब की तो खैर बात ही अलग है. आपको मूवी याद है वो शमी कपूर और उनकी थी नाम शर्मिला टैगोर, यस, एन इवनिंग इन पेरिस. This is the song, yes, from this movie. जो song मैं लेकर आई हूँ ना आपके पास, बड़े लंबा अरसा हो गया है इसे सुने हुए. Enjoy this one. आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर song सुनेंगे ना, सीधे सैर हो जाइए आसमान की. Enjoy one.

0: कहाँ है
1: कहाँ प्यार है तुमसे, वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे।
0: हाँ हाँ,
2: और जैसा कि होता है हर सॉन्ग के एंड में हीरोइन मान जाती है, यस। और ये मतलब अगर देखा जाए तो 80s और जो 70s में या फिर 60s में बात कर लीजिए, तो सॉन्ग शुरू होता था नाराजगी से, एंड आते आते आते आते हीरोइन मान जाती है, यानी हसीना मान जाती है। मूवी याद है आपको, ये हसीना मान जाएगी, यस दिस इज द सॉन्ग। लेकिन ये मैं प्ले नहीं करने वाली हूँ आपके लिए, प्ले मैं आपके लिए करूंगी ताल फिल्म का जो सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग। दिस इज द ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंजॉय दिस वन। आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेडियो पर।
3: तुम तनक दुन तनक दुन तुम तनक दुन

ये तो ताल फिल्म का सॉन्ग सुना ना आपने। अब सॉन्ग जो मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ ना 90s का, ये फिल्म आपको याद होगी, बिच्छू, रानी मुखर्जी और बॉबी देओल। और उस दौरान जो सबसे हिट चीज थी ना, मतलब जिस फिल्म में भी बॉबी देओल होते थे तो लोग उनके सिर्फ जो सर के बालों का स्टाइल था ना वो देखने के लिए आते थे। क्या मतलब लुक के तो वाह। और इस फिल्म में तो खास तौर और इस सॉन्ग में तो माय गॉड, एंजॉय द सॉन्ग। आवाज यहाँ पे हरी की है और जसविंदर जी की। एंजॉय द सॉन्ग।

और अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी, जैसे कि हमारे आकाशवाणी पर यस रेनबो पर सॉन्ग्स की जो लिस्ट है ना वो कभी खत्म नहीं होती, एक के बाद एक सॉन्ग्स आते रहते हैं। तो आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो। मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत, 11 बजे फिर से मिलूंगी आपसे रंगे महफिल में। छोड़े जा रही हूँ आपको अखियों से गोली मारे।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Intensity, integrity, and intelligence. These are the three I's which the Indian contingent needs at the Asian Games, and they have been displaying these attributes with their tremendous performances. Hello and welcome to the Asian Games Aichi Nagoya 2026 report on Akashvani. My name is Abhinav Punchi, and I'll be taking you through all the action from the Asian Games today. And here are the headlines. It was another exciting day as our nation won 5 medals. Mirabai Chanu starring with the silver, ending her Asiad medal drought. While 4 bronzes came from Jayameena in soft tennis, the men's badminton team, the women's skeet shooting team and the men's skeet shooting team. There was disappointment though as the star-studded 10-meter women's air pistol contingent ended medalless. However, Wushu athlete Roshabina Devi meanwhile is on the cusp of history as she looks to convert her 2023 Asiad silver to gold tomorrow after winning her semi-final today. In Kabaddi, there were wins for both the men's and women's teams. While the Indian women's hockey team continued their goal-scoring spree by thrashing Thailand. The best moment for India came from the weightlifting arena. So let's hear what Vijeta Chaturvedi had to say.
2: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मीराबाई चानू ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किलोग्राम रहा। गोल्ड मेडल नॉर्थ कोरिया की री सॉन्ग गुम ने जीता। उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम। लेकिन भारत के नजरिए से मीराबाई का ये सिल्वर मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगझाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ

0: भारत की वेट लिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
1: We also had great news from Wushu and Sakshi Manwal has a report.
2: Roshivana Devi secured her place in the women's 60 kg final after beating Indonesia's Thania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
1: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jaimina won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Meena's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarterfinal to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Meena's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He's speaking exclusively on Akashvani.
3: बिल्कुल भरोसा था, और सबसे बड़ी चीज कि हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी हारे, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स हारे, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में जीता मैच हारे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी हम जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना, सर ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी से जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वॉज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने, तो सुदेश सर और हमारा सपना था सर, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: Time now to head to the shooting range, where Shahid Azmi has a report from a mixed day for the Indian contingent.
4: शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल ब्रॉन्ज की खबर सामने आई है। स्कीट टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीमी स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात महिला स्कीट टीम की, राजा ढिल्लों, परिणाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्कीट टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अनंतजीत सिंह नारुका, मेराज अहमद खान और भौतिक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया। वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में राजा ढिल्लों भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही। यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राजा ढिल्लों, अनंतजीत सिंह नरुका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा। निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आपको बता दें, ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए। भारत को शूटिंग से अब तक कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे।
1: The Indian women's team was in action in hockey, and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Namneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in a hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena, courtesy Shahid Azmi.

0: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमेव से खेलेंगे।
1: Time now for all the action from the Indian contingent from table tennis. Sakshi Manwal has a report.
2: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Kuan Tho and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last eight. Manush Shah and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last eight. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Huai Man of China, while Dia and Manish will face Wang Chun and Du Hui of Chinese Taipei.
1: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
3: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल। इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्विंटम सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्ट्योम से हुआ। यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए। इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया। वहीं बात करें महिलाओं के व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की तो मीना देवी नौरेम और आशिता स्टेलिनराज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गई।
1: द इंडियन मेन बैडमिंटन टीम वर ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे. Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
2: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yu Kui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16, 21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final. Later, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Chang, defeating them in straight games 2-0, 21-11, 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19, 21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India war in action in the kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
3: भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से हुआ और भारतीय टीम ने ये मैच 37-23 के अंतर से अपने नाम कर लिया। मुकाबले के पहले हाफ में भारत 19-15 से आगे था। दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने डिफेंडिंग और रेडिंग दोनों में बेहतर तालमेल दिखाया और बढ़त को लगातार मजबूत किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने ग्रुप स्टेज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की। पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया। पहले हाफ में ही भारत ने 29-9 की मजबूत बढ़त बना ली थी। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा। वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी। इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है।
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Manwal has a report.
2: Sajan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictine Beniston had finished fourth in the heats with a timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heat.

0: marks. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijeta Chaturvedi has more.
2: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया. भारत की ओर से फोआद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे. इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं. यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है. हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया.
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Manwal will tell us how they fared.
0: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, Aichi, Nagoya 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami, cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5, 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
1: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
3: Rowing से भारत के लिए अच्छी खबर है. Asian Games में भारतीय rowers ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है. पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6 मिनट 52.84 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6 मिनट 15.63 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची. लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई. क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई. अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं. डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा.
1: फॉर इंडिया टू स्टे इन कैनो कॉम्पिटिशन दे हैड टू डू वेल टुडे. साक्षी मानवाल टेल्स अस हाउ द इंडियन कंटिंजेंट फेयर्ड.
0: India's men's kayak 4-500-meter team finished third in the heats and qualified for the final A. Arun Singh, Harshvardhan Singh Shaktawat, Varinder Singh, Nucha Singh Oynam combined for a timing of 1 minute 29.447 seconds in the heats. Megha Pradeep finished fifth in the women's canoe single 200 meters heats with a timing of 49.675 seconds and qualified for the semi-final. Sonia Devi and Parvati Geeta ended 6th in the women's kayak double 500 meter heats with 2 minutes 02.538 seconds. They have qualified for the semi-finals. In the men's kayak double 500 meter heats, Chempadale, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished on the 5th spot with the timing of 1 minute 41.141 seconds and qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the 5th spot with a timing of 2 minutes 8.713 seconds and qualified for the semi-finals.
1: The Indian contingent is really trying their best to make an impact in Sepak Takraw. Let's hear what Vijeta Chaturvedi has for us in her report.
2: फुर्ती, संतुलन और किक के खेल सेपक टैक्रो में आज भारतीय अभियान में भारत के पुरुष टीम रेगु का मुकाबला फिलीपींस से हुआ. भारत के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था. भारत ने खेल का आगाज शानदार अंदाज में किया. पहले मुकाबले में भारत ने फिलीपींस को 2-0 से शिकस्त दी. उसके बाद दूसरे मैच में भी भारत ने कड़ा मुकाबला करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया. लेकिन तीसरे और निर्णायक रेगु में भारत को झटका लगा. फिलीपींस ने वापसी करते हुए तीसरा रेगु 2-0 से जीत लिया. इस तरह भारत ने मुकाबला तो 2-1 से जीत लिया, लेकिन अपने पहले मुकाबलों में भारत जापान और मलेशिया से हार के चलते सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया. भारत का टीम रेगु अभियान यहीं समाप्त हो गया, लेकिन सेपक टैक्रो के अन्य इवेंट्स में अभी संभावनाएं बाकी हैं.
1: Well, you have heard all the special reports. So, where is India in the medal standing? Well, Vijeta Chaturvedi will just tell us.
2: भारत ने अब तक एक स्वर्ण

0: हाय,
1: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Okay, welcome back, and I promise that this is the first and the last break of the show. So yes, for the next 20 minutes until 11 p.m., no breaks, just music and some conversations. And yes, the program's name is called Rainbow Classics, and you are listening this on the station of the nation, 102.6 megahertz Akashwani FM Rainbow. And the next song that we've queued up for you, well, the song's name is called Moonlight Gamer, and the track is sung by Frankie Lane. And do you know that the track was released in the year 1956, and it reached number 3 on the US pop chart and number 13 on the UK singles in the year 1957. And the track is very much famously known for its lyrics, and let's talk about the lyrics, but first of all, listen to the track. Enjoy.

और अब पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमेरिकी कानून पर अपने हित और चिंताएं दोहराई हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को भारत ने खारिज किया, कहा कि इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज MB केप टाउ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। भाजपा ने सभी 36 राज्यों केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते हैं। AIR FM रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

जी प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रंगे महफिल, मैं हूं आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रूडी स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और 12 बजे तक आप जानते ही हैं रंगे महफिल अगर चल रहा है तो गजलों का सिलसिला होगा, कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिसमें कुछ बात होगी, कुछ खास का जिक्र होगा और शायद कुछ बातें दूर तलक जाए। लेकिन अभी ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, अभी खैर हर किसी की अपनी उम्र के हिसाब से है और अपनी अपनी उम्र के हिसाब से आप वो दिन याद कर लीजिएगा जब कभी बेफिक्री हुआ करती थी। हाँ, एग्ज़ाम की टेंशन तो होती थी लेकिन उसके अलावा किसी और चीज़ की नहीं। जानते हैं ना किस दौर की बात हो रही है, समझ गए आप। जगजीत साहब की आवाज़ में खूबसूरत गज़ल आपके लिए है।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तेरे वादों पे कहां मेरा दिल फरेब खाए है, तेरे वादों पे कहां मेरा दिल फरेब खाए। कोई ऐसा कर बहाना, कोई ऐसा कर बहाना कि मेरी आस टूट जाए।

इजाज़त फिल्म की गज़ल है आशा जी की आवाज़ में, और आशा जी की आवाज़ में जो गज़लें थीं जब वो आनी शुरू हुई तो लोगों ने कहा क्या इस आवाज़ में ऐसा भी कुछ हो सकता है, और सच में हुआ, दैट्स कॉल्ड मैजिक। चलिए आज थोड़ा गज़लों के मामले में रुख ज़रा और पीछे का करते हैं, 70s से भी थोड़ा पीछे चलते हैं, और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गज़ल सुनते हैं गुमराह फिल्म से। बेहद खूबसूरत गज़ल है, इतनी खूबसूरत कि हर अल्फाज में, हर एक लाइन में बहुत कुछ है।

ये तो महेंद्र कपूर की आवाज़ में गज़ल थी, और उसी दौर में एक और बड़े खूबसूरत गज़ल आई थी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म जंगली में ये गज़ल है। और तो वे मतलब जिस तरीके से रफ़ी साहब ने ये गज़ल गाई है, इट्स जस्ट टोटली डिफरेंट।

मतलब हर एक अल्फाज में इतना ठहराव है जिसे आप न सिर्फ सुनते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं. एंड दिस इज अल्टीमेट. ये जो गजल है मोहम्मद रफी साहब के पास में है.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

ये गजल अर्थ फिल्म की है और आवाज़ तो आपने पहचान ही ली होगी, जगजीत साहब की है। और बॉलीवुड में गज़लों का जो सिलसिला है वैसा नहीं है कि 70s या 80s में आया हो या मतलब उससे पहले का, काफ़ी पुराना है। और अगर आप छानने चलेंगे, ढूंढने चलेंगे, तो आपको एक से बढ़कर एक नायाब हीरे मिलेंगे बॉलीवुड में, बॉलीवुड फिल्मों में, फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में बनी उसमें। और वहीं कहीं जब ढूंढ रहे थे तो एक फिल्म मिली, अनपढ़, याद होगी आपको, माला सिन्हा और धर्मेंद्र की फिल्म है अनपढ़। फिल्म एक लड़की के ना पढ़ने पर किस तरीके से फैमिली में क्या क्या इश्यूज़ हुए उसके ऊपर आधारित थी ये। दरअसल तब जो सिनेमा था वो आपको कहते हैं ना हिंदी सिनेमा या फिर सिनेमा वो समाज का आईना होता है, तो सही मायनों में ये चीज़ तब सार्थक होती थी। तो अनपढ़ फिल्म का एक ये गज़ल है लता जी की आवाज़ में, दिस इज़ लवली, ब्यूटीफुल। मतलब आज भी अगर ये गज़ल सुनेंगे आप, जिनको गज़लें पसंद हैं, जिन्हें गज़लों के अल्फाज समझ में आते हैं, तो वो दे कैन फील कि क्या है इसके अंदर। प्रोग्राम चल रहा रंगे महफिल, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, प्रोग्राम इसी तरीके से चल रहा है आपका, जिसका नाम है रंगे महफिल, और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन AIR फ्रॉम रेनबो पर। जिस गज़ल का जिक्र अब मैं करने जा रही हूँ, ये फिल्म बनने में बड़ा वक्त लगा, लेकिन जब बनी ये तो बहुत, तो मैं सिंपल अल्फाजों में यही कहा कि भाई जो भी बनी है कमाल बनी है। मीना कुमारी इस फिल्म में और राजकुमार, और ख़ास तौर पे जो इस फिल्म की ये जो गज़ल है ये भी बड़ी खूबसूरत सी है, और मतलब लता जी की आवाज़ में जो भी अल्फाज घुल जाए वो अपने आप ही कुछ और ही बन जाता है, एक जादू एक मैजिक तैयार हो जाता है। दिस गज़ल फ्रॉम द मूवी पाकिज़ा।

किस्सा कुछ इस तरीके का जिसे सुनना मुश्किल कहना मुश्किल लेकिन फिर भी बयां होता है, और कुछ इसी तरीके से फिराक गोरखपुरी साहब ने लिखा है कि किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब मगर फिर भी।

चलिए अब इजाज़त लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी छोड़े जाने एक और खूबसूरत गज़ल के साथ, लेकिन यह गज़ल में आवाज़ है शान साहब की। तो ख्याल रखिए अपना और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हित और चिंताएं दोहराई हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को भारत ने खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी कैप टाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। जहाज पर सवार 20 भारतीय नागरिकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्घटनापूर्ण मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। कहा दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपये से अधिक का अनुबंध किया है। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी लंबी अवधि वाले डेरिवेटिव उत्पादों के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य वायदा एवं विकल्प खंड में जोखिम प्रबंधन और वित्तीय क्षमता अनुसार तथा दीर्घकालिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान के जोधपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिसे बुझाने के प्रयासों के दौरान विस्फोट में 13 अग्निशमन कर्मी घायल हो गए हैं। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक, 12 पदक जीते हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

एक बार स्वागत है आपका फिर से। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, तो जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही। और समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम का, जीरो आवर शो, और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

मध्यरात्रि एक बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हित और चिंताएं दोहराई हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को भारत ने खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी केप डाउ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बेप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। कहा दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुषों की निशानेबाजी स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर अनंतजीत सिंह नरूका, भगवत तेग सिंह गिल और मेराज अहमद खान को बधाई दी है। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते हैं। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 7। समय हुआ है रात्रि के 1:03 और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप फिल्म गाने कार्यक्रम सुहानी रात में, जिसमें कुछ आप 90s के गीतों का भी मजा लेंगे और कुछ नए गानों का भी आप सुन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नॉनस्टॉप गानों की लड़ी और शुरुआत करते हैं अबीर की आवाज में इस गाने के साथ।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के।

सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी कैप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। कहा, दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुषों की निशानेबाजी स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल और मेराज अहमद खान को बधाई दी है। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 12 पदक जीते हैं। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ और अब समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम भुलाए ना पने का। तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800

1-1-7-8-0-0 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1-9-2-2 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

मध्यरात्रि 3 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हित और चिंताएं दोहराई हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को भारत ने खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं।

बैठक की सह अध्यक्षता की। कहा, दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुषों की निशानेबाजी की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल और मेराज अहमद खान को बधाई दी है। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई है। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते हैं। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 3:03 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप गाने मिडनाइट मेलोडीज शो में। और शुरुआत करते हैं आकाश चोपड़ा की आवाज के साथ इस सॉफ्ट से गाने के साथ। तो ऐसे ही नॉनस्टॉप गानों की लड़ी शुरू होती है अब।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अंक

0: होगी विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ, प्रातः के 4 बजे हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हित और चिंताएं दोहराई हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को भारत ने खारिज करते हुए कहा है कि इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज MV कैप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्पा

मंत्री कृषक समृद्धि योजना आरंभ की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी लंबी अवधि वाले डेरिवेटिव उत्पादों के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिसंबर में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि मौजूदा चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त होने तक बोर्ड के पास पर्याप्त समय है और इसके बाद ही पद को लेकर कोई फैसला होगा। और भारतीय खिलाड़ी जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के 5वें दिन आज कई खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। रोइंग, वुशु, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और कैनो स्प्रिंट सहित विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते हैं। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे कामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो।

पर मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

सुबह के 5 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हित और चिंताएं दोहराई हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को भारत ने खारिज करते हुए कहा है कि इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी केप डाउ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना आरंभ की है।

पद को लेकर कोई फैसला होगा। भारतीय खिलाड़ी जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के पांचवें दिन आज कई खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। रोइंग, वुशु, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और कैनो स्प्रिंट सहित विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते हैं। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुबह के 5:03 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब शुरू होता है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप भजन। शुरुआत करते हैं देवर्षि जोशी की आवाज में गणेश चालीसा से।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: हिमालय की गोद से लेकर
6: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
5: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
6: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
5: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
6: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
5: तो सुनना ना भूलें
6: रेनबो डेस्टिनेशंस
5: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
7: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।